2026। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और इस सुनहरी सुबह में लेकर आई हूं आपके लिए एक नई उमंग, नई ऊर्जा और ढेर सारी सकारात्मकता का संदेश। तो आइए आज की इस शुरुआत को बनाते हैं खास, क्योंकि जिंदगी का हर पल है कुछ नया, हर अंदाज है कुछ अलग और यही है हमारे साथ का एहसास। तो चलिए इस सुहानी सुबह की पहली किरण के साथ बढ़ते हैं नमस्कार लखनऊ के आज के सफर में आगे। लेकिन सबसे पहले वक्त हो चला है देश और दुनिया की हलचल से रूबरू होने का। प्रातः के 6 बजने को है, आइए जान लेते हैं क्या कुछ हुआ देश विदेश में समाचारों के माध्यम से।

0: चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नमस्कार, लखनऊ में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी जानकारी दे रहे हैं। मिट्टी

0: स्वास्थ्य परीक्षण हेतु नमूना कैसे लें, इस विषय पर आइए सुने।
1: शुभ प्रभात। मिट्टी के प्रतिनिधि नमूना लेने के लिए फसल का समान व्यवहार, एक समान उर्वरक प्रयोग और समतल जमीन होने पर पूरे खेत से ही संयुक्त या प्रतिनिधि नमूना लेना चाहिए। इसके विपरीत यदि खेत में अलग अलग फसल ली गई हो, भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग उर्वरक की मात्रा डाली गई हो, फसल की बढ़वार कहीं कम कहीं ज्यादा रही हो, जमीन समतल न होकर ढालू हो, इन परिस्थितियों में खेत को समान गुणों वाली संभव इकाइयों में बांटकर हर इकाई से अलग अलग प्रतिनिधि नमूना लेना चाहिए। नमूना सामान्य तथा फसल बोने के एक माह पहले लेकर जांच के लिए भेजना चाहिए, ताकि समय पर मृदा जांच का जो परिणाम है वह हमें प्राप्त हो सके और जो उसकी संस्तुति है उसके अनुसार उर्वरक उपयोग करने में हम लग सकें। नमूना इकट्ठा करने के लिए खुरपी, फावड़ा, ट्यूब वर्मा, स्क्रू वर्मा, बाल्टी या ट्रे, कपड़े एवं प्लास्टिक की थैलियां, पेन, धागा, सूचना पत्रक, कार्ड, ये सब कुछ जो जरूरी चीजें हैं उसे पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए, तब फिर शुरुआत करनी चाहिए। अन्यथा ये नहीं कि हम उसे लें और फिर रख दें दो चार दिन तो फिर स्थिति बदलती है। इसलिए पहले से इतनी तैयारी करनी चाहिए, साथ ही साथ जो इसके लिए निर्धारित मानक हैं उस मानक का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अनाज, सब्जी, फूलों की खेती के लिए नमूना 15 सेंटीमीटर की गहराई, गहरी जड़ वाली फसल जैसे कि गन्ना के लिए 30 सेंटीमीटर तथा चारागाह, घास के मैदान के लिए नमूना 10 सेंटीमीटर की गहराई तक लेना चाहिए। जिस खेत का नमूना लेना हो उसमें 8 से 10 स्थान पर कहीं भी एक रैंडमली जिसे कहते हैं जिगजैग, यानी जहां मन हो वहां से भी आप पूरे खेत को देखते हुए जगह जगह से इस प्रकार घूमकर निशान लगा लें, जिससे खेत के सभी हिस्से में शामिल नमूना लिया जा सके। प्रत्येक निशान लगाए गए स्थान के ऊपरी सतह से घास फूस, कंकड़ पत्थर आदि को साफ कर लें। निर्धारित स्थान पर फावड़े और खुरपी की सहायता से वी आकार, अंग्रेजी का जो होता है, जो इशारा करते हैं अपनी दो अंगुलियों के माध्यम से जो अंग्रेजी का वी बनता है, उस आकार का 15 सेंटीमीटर गड्ढा खोदना है चाहिए। गड्ढे से फालतू मिट्टी निकालकर खुरपी की सहायता से गड्ढे की दीवार की ओर से मिट्टी की 2 से 3 सेंटीमीटर पतली 15 सेंटीमीटर गहराई तक खुरपी से निकाल लें। इस मिट्टी को साफ सुथरे ट्रे या तसले या फिर बोरी पर इकट्ठा कर लें। इस प्रकार खेत से निकाली गई मिट्टी के नमूनों को एक में अच्छी तरह मिलाकर एक बड़ा नमूना बना लिया जाता है। यदि मिट्टी नम हो तो इसे छाये में सुखा लेना चाहिए और मिट्टी में मिले कंकड़ पत्थर, जो भी अवांछित चीजें अन्य हैं, उन सबको बाहर निकाल लें। साफ मिट्टी को तसले या फिर बोरी पर मोटी तह में फैला दें और फैलाई गई मिट्टी को 4 बराबर भागों में बांटकर आमने सामने के 2 भागों की मिट्टी लेकर शेष 2 भाग हटा दें। यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक आधा किलोग्राम मिट्टी का नमूना शेष न रह जाए। जहां उसरीली जमीन है वहां पर कुछ अलग तरह से लेने की आवश्यकता होगी। क्षार या लवण की मात्रा मौसम के अनुसार भूमि की सतह पर घटने बढ़ने के कारण मिट्टी का नमूना 15 सेंटीमीटर के अंतर पर 1 मीटर की गहराई तक लिया जाता है यदि बागों की स्थिति होती है तो, अन्यथा जो 10 से 15 सेंटीमीटर की बात है फसलोत्पादन के लिए उसे उतने तक सीमित रखें। नमूना लेने के लिए भूमि की सतह पर जमी जो लवण है यानी नमक है या क्षार जिसे हम कह लेते हैं, उसकी पपड़ी को खुरच कर अलग कर दें, हटा दें, फिर उसके बाद वी आकार का गड्ढा बनाएं। लगभग 500 ग्राम का 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर और 60 से 100 सेंटीमीटर गहराई से अलग अलग 4 नमूना लें, जिससे कि संपूर्ण जांच एक बार में हो जाए। नमूनों के परीक्षण के लिए भेजते समय सूचना पत्रक के साथ उस स्थान का भूजल स्तर, सिंचाई जल का स्रोत और जो भी जानकारी संबंधित है उसे भरना चाहिए। तैयार किए गए मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके साफ प्लास्टिक या कपड़े की थैली में भर लें। नमूने के साथ खेत की संख्या यानी खसरा नंबर, कृषक का नाम, साथ ही साथ पता और अन्य जानकारी सूचना पत्रक पर लिखकर प्लास्टिक की थैली के अंदर तथा एक कपड़े की थैली के बाहर बांधकर मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजते हैं। इसका पत्रक भी होता है, जहां आप नमूना देने जाते हैं छपा छपा एक पत्रक मिलता है, वहीं पर आप इसको भर देंगे तो फिर उसके अनुसार इसकी जांच

0: रिपोर्ट आपको प्राप्त हो जाएगी।
1: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से जानकारी, मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण हेतु नमूना कैसे लें। इस जानकारी के साथ ही अब आज का कृषि चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार, लखनऊ का सफर चल रहा है और आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। श्रोताओं, समय है आज के सुविचार का। आज का विषय है संस्कार, आइए सुने।
2: प्रातः का मनोरम जागरण भास्कर अपनी चैतन्य अरुणिमा बिखेर पाए थे कि अचानक रुक से गए। मेरे साथ वो भी ये दृश्य देखने लगे। पैरों की गति बंद हो गई और आंखों का हिलना भी। एक पुत्र वृद्ध पिता को पीट रहा था खूब, मानव की ये अनिति देखकर सूर्य रहा था डूब। मैं सोचने लगा, सूर्य तो अभी उग ही रहा है लेकिन युवा पीढ़ी डूब रही है। तभी एक पड़ोसी ने मेरा कंधा झकझोरा, अपने दरवाजे पर ही तो मार रहा है, वो भी अपने माँ बाप को। ये तो रोज का काम है, प्रातः उठकर शराब का कोल्ला करता है, आप जाइए इस चक्कर में मत पड़िए, और स्वयं अपने काम में लग गया। ये संसार है, वो बड़बड़ा रहा था। मैं भी एक अपराधी की भांति चल पड़ा, मेरे पैर घर की ओर लेकिन मन वहीं कुरुक्षेत्र पर, जहां अन्याय के हाथों न्याय पिट रहा था। मानवता सिसक रही थी, स्वार्थ खिलखिलाकर हंस रहा था। मुझे मजबूरी वश चिंतन में डूबना पड़ा। हे माँ, ये है तुम्हारी युवा संतान, भविष्य के भारत का नींव का पत्थर, राम कृष्ण की संस्कृति की ध्वजा, युवा अर्थात उमंग उत्साह साहस की मूर्ति, आकाश के तारे तोड़ने में समर्थ, हिमालय और आल्पस को झुकाने की शक्ति, हवा की दिशा मोड़ने में समर्थ, असंभव को संभव कर दिखाने की सामर्थ, रंगों में खौलता गर्म खून, अन्याय को मिटाने में सक्षम, मस्तिष्क ठंडा, सेवा शिष्टाचार नम्रता, निर्बलों का सहारा कर्तव्य भावना जिसके रंग रंग में समाई हो, नए इतिहास रचने की क्षमता, यह है भारत की युवा पीढ़ी। कर्तव्य की बात ने चिंतन को एक नया मोड़ दिया, मन विस्मरण की परतों को चीर कर ले आया अपने अनुकूल साक्ष्य प्रमाण। लगभग 20 वर्ष पहले की घटना है, मेरे मित्र के पिता स्विट्जरलैंड यात्रा से लौटे थे। विदेश की चमक न जाने किसने मेरी आंखों में भर दी थी। मैं भी मिलने पहुंच गया, एक प्रश्न पूछ लिया, कृपया वहां का कोई प्रसंग सुनाइए जो आप भूल ना पा रहे हो। मेरे इस प्रश्न ने उन्हें सोचने पर विवश कर दिया और बोले, मैं जिस लड़की का मेहमान था वो मुझे एक दिन अपनी गाड़ी से घुमाने ले गई। हम फूलों के बीच वाली सड़कों से गुजर रहे थे, तभी उसने मुझे खाने को टॉफी दी। मैंने टॉफी का रैपर गाड़ी से बाहर फेंक दिया और टॉफी खाने लगा। उस लड़की ने मुझे छिलका फेंकते हुए जैसे ही देखा, उसने गाड़ी पीछे करके छिलके को उठाते हुए मुझे डांटते हुए बोली, मिस्टर, दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज स्विट्जरलैंड, वी आर सिटीजन ऑफ अवर कंट्री एंड दिस इज अवर ड्यूटी दैट वी क्लीन अवर कंट्री। मैं चुपचाप सुनता रहा, सुनकर कर भी क्या सकता था, विदेश की चकाचौंध थी। मैं पुनः चिंतन में डूब गया। जगत गुरु भारत की संतानें, जिनके चरणों में बैठकर विश्व कर्तव्य की व्याख्या सीखा करता था, साधना और शांति की भीख मांगता था, जहां से निकलकर शांति की गंगा सारे विश्व को सींचती थी, वही मातृभूमि क्या ऐसी संतानें जन्म दे सकती हैं जो कागजी तस्वीरों की पूजा करके अपना चरित्र एवं वर्चस्व खो डाले। आज ये हम सबका प्रश्न है और इसका उत्तर स्वयं ही ढूंढना है। अपनी संतानों को विदेशी चमक से कैसे बाहर लाएं, नशा एवं फिल्मी चकाचौंध से कैसे छुड़ाएं, काफी चिंतन के बाद उत्तर मिलेगा। इसके लिए अपने आप को सुधारना होगा, मन को संस्कारित कर दुर्व्यसनों को उखाड़ फेंकना होगा। मन में पीड़ा होगी तो सहना पड़ेगी, तभी युवा संतानें वापस आएंगी। सारा वातावरण आनंद से भर जाएगा। आज दीवारों से दीवारें मिली हैं, फिर दिल से दिल मिल जाएंगे। संतानें कर्तव्य निभाएंगी और हम आनंदमग्न हो जाएंगे।
1: संस्कार, अभी आप सुन रहे थे आज का ये सुविचार। वाचन स्वर था राकेश खरे का।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ और मंगलमय प्रभात के साथ आराधना कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के स्मरण के बिना अधूरी मानी जाती है। तो आइए विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की वंदना करते हैं इस भजन के साथ और आरंभ करते हैं आज की आराधना।

बड़ा सहारा बनता है। प्रभु के वंदन से हृदय में शांति और विश्वास का संचार होता है। आइए हम भी नारायण वंदन के इस मधुर भजन में स्वयं को समर्पित करें।

भजबन नारायण, नारायण सबका कल्याण करे। श्रोताओं, संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्तों के

कष्ट को दूर करने वाले माने जाते हैं। उनकी भक्ति शक्ति, साहस और समर्पण की प्रेरणा देती है। तो आइए हम भी पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित ये भक्तिमय प्रस्तुति सुनें।

प्रभु और भक्त का अद्भुत रिश्ता है हनुमान जी और श्री राम जी में। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। कहते हैं कि मर्यादा, प्रेम, सत्य और आदर्श जीवन की प्रेरणा देते हैं प्रभु श्री राम हम सबको। राम नाम का स्मरण मन को नई ऊर्जा और आत्मिक शांति प्रदान करता है, और हनुमान जी का नाम हो और प्रभु श्री राम को याद ना किया जाए, ये अच्छा नहीं, और ये तो हनुमान जी को भी अच्छा नहीं लगता। तो आइए हम भी चलते हैं प्रभु श्री राम की शरण में, क्योंकि कहते हैं ना, राम जी के नाम से तो पाथर भी तारे जाते हैं।

भगवान श्री कृष्ण का नाम मन को शांति और जीवन को मधुरता से भर देता है। श्री राम के चरणों में नमन करने के बाद आइए बढ़ चलें भगवान श्री कृष्ण की ओर। उनकी भक्ति में प्रेम है, करुणा है और जीवन का सुंदर संदेश भी है। तो आइए श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए सुने ये पावन भजन।

आइए प्रभु आइए, हम सबके कष्टों का समाधान कीजिए। हम सभी प्राणियों पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ अब आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातःकाल की इस भक्तिमय पावन बेला में आइए अब नमस्कार लखनऊ के आज के सफर में आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 185। आज का प्रसंग है राजा दशरथ के स्वर्गवास से दुखी भरत का माता कैकेयी की भर्त्सना करने का प्रसंग।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे। शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए

इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे श्रीकांत परगांवकर और वाणी जयराम एवं संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: समन्वयेन मापनयोग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् एकपञ्चाशत्तमे प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयन्त्राणि सहैव गोवर्धन संयन्त्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबन्धन सम्बद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां 7 महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुम्, ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं, गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वं राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य 3वं राज्यम् अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः, सुदृढ अनुशासनस्य, राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तन्त्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटलीय सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः, भ्रमात्मकः, तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्ध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000-2,000 वर्षस्य बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्त मासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्यसर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षिप्रमुखाणां कृते सञ्चेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44,200 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96,100 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में। श्रोताओं, समय है कि स्वास्थ्य के बारे में कुछ बात की जाए। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज की चर्चा में नीना सुनकर जानकारी दे रही है सेहत के लिए तरबूज के विषय में। आइए सुने।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, गर्मियों के आते ही शरीर को ठंडक पहुँचाने वाले फलों की तलाश शुरू हो जाती है। तेज धूप, पसीना और गर्म हवाओं से राहत देने के लिए कुछ ऐसे फल होते हैं जो न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट करते हैं बल्कि उसमें आवश्यक पोषक तत्व भी भरते हैं। ऐसा ही एक फल है तरबूज। हरा बाहर से और लाल अंदर से, ये फल जितना सुंदर दिखता है उतना ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। गर्मी के मौसम में इसकी मिठास और ठंडक दोनों शरीर के लिए वरदान साबित होती है। तरबूज लगभग 92% पानी से भरपूर होता है जिससे ये शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड बनाए रखने में मदद करता है। जब बाहर का तापमान बढ़ जाता है और शरीर से ज्यादा मात्रा में पसीना निकलने लगता है तब पानी की कमी महसूस होती है। ऐसे में तरबूज का सेवन शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखता है और डिहाइड्रेशन से बचाने का काम करता है। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग जिन्हें गर्मी ज्यादा सताती है उनके लिए ये फल बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन तरबूज सिर्फ पानी देने वाला फल नहीं है बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व इसे सेहत के लिहाज से और भी खास बना देते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं और कई बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। खासकर विटामिन सी जो इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। इससे शरीर को संक्रमण और मौसमी बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। अगर दिल की सेहत की बात करें तो तरबूज इसमें भी बेहद फायदेमंद साबित होता है। इसमें एक ऐसा अमीनो एसिड पाया जाता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ये रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए ये एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय हो सकता है। तरबूज में मौजूद लाइकोपीन नामक तत्व इसे और भी खास बनाता है। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है और त्वचा को चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। जो लोग झुर्रियों और समय से पहले वृद्धावस्था के लक्षणों से बचना चाहते हैं उनके लिए तरबूज किसी सौंदर्य टॉनिक से कम नहीं है। गर्मियों में इसे खाने से त्वचा न सिर्फ हाइड्रेट रहती है बल्कि ये अंदर से ग्लो भी करने लगती है। इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि ये पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक फाइबर आंतों की सफाई करता है और पाचन को सुचारू बनाए रखता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है उनके लिए तरबूज एक प्राकृतिक उपाय हो सकता है। इसके साथ ही ये शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायक होता है जिससे लीवर और किडनी स्वस्थ रहते हैं। जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी तरबूज एक आदर्श फल हो सकता है। इसमें बहुत कम कैलोरी होती है लेकिन ये पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। जब भी भूख लगे तले भुने खाद्य पदार्थों की बजाय तरबूज के कुछ टुकड़े खा लेना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ये मेटाबॉलिज्म को तेज करने में भी मदद करता है जिससे शरीर तेजी से कैलोरी बर्न कर पाता है। गर्मियों में कई बार शरीर में पानी की कमी के कारण गर्मी से होने वाली थकान, सिरदर्द और हीट स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। ऐसे में तरबूज एक प्राकृतिक उपाय बन सकता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर को ठंडक देते हैं और शरीर का तापमान संतुलित रखते हैं। इसलिए जो लोग धूप में ज्यादा समय बिताते हैं उनके लिए ये फल बहुत लाभदायक हो सकता है। तरबूज को खाने के कई तरीके हैं। इसे ऐसे ही काटकर खाया जा सकता है, जूस के रूप में लिया जा सकता है या फिर इसे सलाद में मिलाकर स्वादिष्ट तरीके से इसका आनंद लिया जा सकता है। तरबूज का जूस गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है और पेट को हल्का रखता है। साथ ही इसमें नींबू और पुदीना डालकर इसका स्वाद और सेहतमंद बनाया जा सकता है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि तरबूज को खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं क्योंकि इससे पाचन क्रिया पर असर पड़ सकता है और एसिडिटी या अपच की समस्या हो सकती है। इसे दोपहर के भोजन के बाद खाने का सबसे अच्छा समय माना जा सकता है। कल फिर मिलेंगे। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: सेहत के लिए तरबूज। आज की स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुनी नीना सोनकर से ये जानकारी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम और लीजिए अब सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं आज प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में सुनिएगा बागपत और फतेहपुर जिलों की हलचल। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समाप्त फरमाइएगा ईद उल अजहा पर मबनी। प्रातः 7:31 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा पंडित राम नारायण के सारंगी वादन का। लोक रंग और लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे राम सूरत तिवारी के गाए अवधी लोकगीत। लोक रंग कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9:50 से और लोक माधुरी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा दिन में 2:45 पर। बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन दिन में 1:15 से। 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा सफलता की कहानी कृषि विविधीकरण। इस विषय पर अनिल कुमार सिंह से बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5:00 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 से। शाम 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। श्रोताओं आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता, विषय होगा गांव में वैकल्पिक ऊर्जा के बढ़ते स्रोत। वार्ताकार होंगे प्रखर कुमार श्रीवास्तव। शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती किसानी। कार्यक्रम में आज डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता सुनिएगा। बातचीत का विषय रहेगा जलवायु परिवर्तन और बागवानी प्रबंधन। शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा खेल जगत। कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी दौरे और संभावनाएं, इस विषय पर विशेषज्ञ प्रदीप शुक्ला से सुभाष खन्ना की भेंट वार्ता आज आप सुन सकेंगे। आज रात 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित की वार्ता सुनिएगा। विषय होगा प्रेमचंद और लखनऊ। वाचन संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का होगा। रात्रि 8:10 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे महुआ राज त्रिपाठी की गाई गजलें। रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। और रात्रि 10:30 से शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम में आज उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन आप सुन सकेंगे। इसके साथ ही समय समय पर श्रोता फिल्म संगीत और प्रायोजित कार्यक्रम का आनंद भी ले सकेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। आज का विषय है भारत के वीर सपूत वीडी सावरकर।

हम स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनका जीवन साहस, संघर्ष, देशभक्ति और अद्भुत आत्मबल का प्रतीक था। एक ऐसा नाम जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विचारों और अपने संकल्प को कभी कमजोर नहीं होने दिया। हम बात कर रहे हैं भारत माता के वीर सपूत विनायक दामोदर सावरकर की, जिन्हें देश श्रद्धा से वीर सावरकर के नाम से जानता है। श्रोताओं, इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि उन लोगों की अमर गाथा भी होता है जिन्होंने अपने समय से आगे बढ़कर समाज और राष्ट्र के लिए कुछ असाधारण किया। वीर सावरकर उन्हीं महान व्यक्तित्वों में से एक थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में देश प्रेम और आत्मविश्वास हो तो व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर बचपन से ही बहुत तेजस्वी और जिज्ञासु थे। उनके भीतर बचपन से ही मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम था। उन दिनों भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। देश के लोगों के मन में स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा थी। युवा सावरकर ने भी यही संकल्प लिया कि वे अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि वे केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक प्रभावशाली लेखक, कवि और वक्ता भी थे। उनके शब्दों में ऐसी ऊर्जा थी कि सुनने वालों के भीतर देशभक्ति की भावना स्वतः ही जाग उठती थी। जब वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड पहुंचे, तब भी उनके मन में केवल एक ही ध्येय था, भारत की स्वतंत्रता। वहां रहते हुए उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों को संगठित किया और देशभक्ति की अलख जताई।

सभी श्रोताओं को रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में। दोस्तों, आज अपने सफर में

उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर ने लोगों के भीतर नई चेतना जगाई। उस समय अंग्रेज सरकार 1857 की क्रांति को केवल एक विद्रोह बताती थी, लेकिन सावरकर ने उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। ये विचार उस समय अत्यंत साहसिक माना गया। उनकी लेखनी में केवल शब्द नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम की ज्वाला धधकती थी। लेकिन श्रोताओं, देशभक्ति का मार्ग कभी आसान नहीं होता। वीर सावरकर को भी बहुत सारी कठिनाइयों और यातनाओं का सामना करना पड़ा। उनके जीवन का सबसे कठिन अध्याय तब शुरू हुआ जब उन्हें काला पानी की सजा देकर अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। जरा कल्पना कीजिए, समुद्र के बीचों बीच स्थित जेल, चारों ओर सन्नाटा, कठोर श्रम और अमानवीय यातनाएं, लेकिन इन सब के बीच भी सावरकर का मन नहीं टूटा। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर आशा की लौ जलाए रखी। वीर सावरकर ने इन यातनाओं को अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने दिया। कहते हैं वे जेल की दीवारों पर कविताएं लिखते, उन्हें याद करते और साथी कैदियों को सुनाते थे। ये केवल एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था बल्कि उस आत्मबल की कहानी थी जो किसी भी परिस्थिति में हार मानना नहीं जानता। दोस्तों, वीर सावरकर समाज सुधार के पक्षधर भी थे।

0: का मानना था कि समाज तभी मजबूत बनेगा जब उसमें समानता और एकता होगी। उनके व्यक्तित्व की एक और विशेषता थी, अनुशासन और आत्मनिर्भरता। वीर सावरकर केवल संघर्ष का नाम नहीं बल्कि साहस का दूसरा रूप थे। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आईं, उन्होंने अपने विचारों और अपने उद्देश्यों को कभी नहीं छोड़ा। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित ही रहा। वे जानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी उतनी ही आवश्यक है। आज जब हम स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांस लेते हैं, तब हमें उन महान सेनानियों को याद रखना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन का हर सुख त्याग कर देश के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन हमें यही संदेश देता है कि केवल राष्ट्रप्रेम शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखाई देना चाहिए। दोस्तों, समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन कुछ नाम इतिहास में सदैव अमर रहते हैं। वीर दामोदर सावरकर उन्हीं अमर नामों में से एक है। उनका साहस, उनका संघर्ष और उनका आत्मबल आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। आज आवश्यकता है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें, अपने देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को जीवित रखें। इसी संदेश के साथ अपने रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को आज के कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। एक बार फिर भारत माता के इस वीर सपूत को शत शत नमन। नमस्कार।
1: बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला मेरा रंग दे।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार,

0: समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्थक पीडीएस योजना को जारी रखने की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सावधानी बरतने की दी सलाह। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में 42 से 45 डिग्री के बीच रहा तापमान। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के एसआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा एसआईआर आयोग का अधिकार। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का पर्व, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स है, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य एआई, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वो भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। कई जिलों में कल तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि कल से लू से राहत की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले तीन दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। श्री योगी ने आगरा लखनऊ पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण जून माह तक पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश

0: डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनाओं की भी समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास SIR कराने का अधिकार है।
1: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है SIR कराने का। उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
0: नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें चलाने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: 15 जून से जेयर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 30 रुपए होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक SP सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह UP रोडवेज निगम से MOU की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: प्रदेश भर में आज बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। एक रिपोर्ट।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई की शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। बांदा जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्थक PDS योजना को जारी रखने की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सावधानी बरतने के लिए सलाह। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में 42 से 45 डिग्री के बीच रहा तापमान। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा SIR आयोग का अधिकार। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का पर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह।

0: शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आपका नमस्कार लखनऊ में। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं पंडित राम नारायण का सारंगी वादन। राग है भटियार।

अभी आप सुन रहे थे पंडित राम नारायण का सारंगी वादन, राग था भटियार। इसी के साथ अब शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, अब नमस्कार लखनऊ से मुझे यानी अपनी दोस्त रिंकी शर्मा को दीजिए अनुमति। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने

0: सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
1: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए, जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी।

0: राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमरीका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: .4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और समय है कार्यक्रम आपकी पसंद का। समय है कार्यक्रम नमस्ते बरेली का। तो चलिए सुनते हैं नमस्ते बरेली।

तो आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते बरेली में। तो चलिए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 8:15 इस समय स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते बरेली में। उम्मीद है कि आपकी सुबह अच्छी होगी और बरेली की बेहतरीन हसीन और ताजगी भरी शुरुआत करते हैं चाय की चुस्की के साथ और ये दिन आप सभी के लिए बेहतर हो ये कामना करते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले त्यौहार ईद उल अजहा की मुबारकबाद।

0: आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते बरेली में। और इसी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी परवेश जी। आपका नमस्ते बरेली में बहुत बहुत स्वागत है और सभी श्रोताओं की तरफ से आपको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद।
1: जी नीतू त्रिपाठी जी, आपको भी ईद उल अजहा की बहुत बहुत पुरखलोस मुबारकबाद, और साथ साथ हमारे जितने भी लिसनर्स
0: जी
1: इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको भी ईद उल जुहा या ईद उल अजहा कहें हम, इसकी बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद।
0: जी, तो आज पाक त्योहार मनाया जा रहा है जो कि त्याग, समर्पण और अल्लाह की राह में कुर्बानी का प्रतीक भी माना जाता है। तो हमारे जो भी श्रोता इस समय आकाशवाणी बरेली सुन रहे हैं, आप इस दिन के मुख्य महत्व और इसके पीछे के संदेश के बारे में बताइए।
1: जी नीतू त्रिपाठी जी,
0: जी
1: ईद उल अजहा का जो ये त्योहार है ये इस्लामी कैलेंडर का जो आखिरी महीना होता है उसकी 10 तारीख को मनाया जाता है, जिसे हम जिलहिज्जा का महीना कहते हैं। बड़ा ही पाक और पवित्र महीना है ये, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद में मक्का शरीफ में पूरी दुनिया से मुसलमान जो है वहाँ हज करने के लिए जाते हैं।
0: जी
1: 9 तारीख को अराफात के मैदान में वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस त्योहार की अगर तफसील की अगर हम बात करें तो ये त्योहार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है,
0: जी
1: क्योंकि अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह ने आपको ख्वाब में आया कि आप अपने सबसे अजीज चीज की कुर्बानी करें।
0: जी
1: तो पहले दिन जब आपको ख्वाब आया तो आप सोचते रहे, सोच विचार में पूरा दिन निकल गया, जिसको हम यौम तरविया के रूप में जानते हैं। दूसरे दिन 9 तारीख को 9 जिलहिज्जा को फिर आपको ख्वाब आया। जब आपको ख्वाब आया तो आपने ये समझ लिया कि ये अल्लाह का ही पैगाम है, जिसे हम यौम अरफा के रूप में जानते हैं। और 10 तारीख को फिर आपको ख्वाब आया, तब आपने पक्का मन कर लिया कि अब मुझे कुर्बानी करना है। तो आपने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहि सलाम से इसके बारे में मशवरा किया, तो हजरत इस्माइल अलैहि सलाम ने कहा कि ये अल्लाह का हुक्म है तो आप उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। आप अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की कुर्बानी करने के लिए आपने उनको तैयार कर लिया और उनकी कुर्बानी करने के लिए आप घर से लेकर उनको निकल पड़े।
0: जी
1: तो जब आप उनको कुर्बान करने के लिए ले जा रहे थे तो हजरत इस्माइल अलैहि सलाम ने आपसे कहा कि बाबा जान, जब आप मुझको ज़िबा करें तो आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। तो आपने ऐसा ही किया कि आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, और जैसे ही आपने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहि सलाम को ज़िबा करना चाहा तो जिस छुरी से आप ज़िबा कर रहे थे तो वो छुरी चली ही नहीं।
0: जी
1: तो आपने उस छुरी को फिर से तैयार करने की कोशिश की, उसको धार देने की कोशिश की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को जन्नत से जुम्बर ला करके आपके नीचे डाल दिया। तो जब आपने उस छुरी को चलाया तो वो छुरी चल गई। जब आपने आँख खोल करके देखा तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बराबर में ही खड़े मुस्कुरा रहे थे, और आपने जब ये मंजर देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक तरफ अल्लाह से जो आपने वादा किया था उस वादे को पूरा किया, तभी से ये जो कुर्बानी होती है जिसको हम ईद उल अजहा के रूप में या बकरा ईद के रूप में मनाते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान हजरत इब्राहिम

दोस्तों आज तारीख है 28 मई। तारीखें सिर्फ कैलेंडर बदलने के लिए नहीं होती बल्कि बहुत सी ऐसी जरूरी बातों के लिए भी होती हैं, हम सभी को याद दिलाने के लिए भी होती हैं। तो आज का दिन दुनिया भर में विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे के तौर पर भी मनाया जाता है और इसका जो मकसद है वो दुनिया भर में भुखमरी और कुपोषण से पीड़ित लोगों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। हम सभी जानते हैं और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्न को देवता। तो आज के दिन आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम उतना ही भोजन लेंगे जितना हम खा सकें और अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होने देंगे।

और आज का दिन कई मायनों में खास है, क्योंकि आज देश के महान स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक वीर सावरकर की पावन जयंती भी है। देश की आजादी में उनके योगदान को आकाशवाणी बरेली कोटि कोटि नमन करता है।

और अब चलिए रुक करते हैं हमारे अपने शहर बरेली की ताजा तरीन खबरों की ओर। उपलब्धियों और विकास भरी खबर की बात करते हैं। बरेली के वालों के लिए हाल ही में एक बेहद गर्व की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड यानी कि सीएम डैशबोर्ड की ताजा रैंकिंग में बरेली जनपद को पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। ये है ना एक बड़ी खबर और बड़ी उपलब्धि। साथ ही विकास और राजस्व के मामलों में जबरदस्त तेजी दिखाते हुए बरेली ने 10 में से 9.41 अंक हासिल किए हैं और ये सभी बरेली वासियों और स्थानीय प्रशासन की एक बड़ी उपलब्धि है।

और अगर हम विकास की बात करें तो बरेली विकास प्राधिकरण की इंडस्ट्रियल सिटी अब तेजी से स्मार्ट बरेली को एक नई पहचान देने के लिए तैयार हो रही है। इसके तहत करीब 3,300 करोड़ रुपए की लागत से न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जा रही है, जिससे हमारे बरेली के युवाओं को रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे और हमारा झुमका शहर अब विकास की नई उड़ान भी लगातार भर रहा है। और हाँ, आज एक खास दिन और भी है। महिलाओं की सेहत के नाम आज विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है और ये दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। समाज आज भी इन विषयों पर बात करने में कतराता है, लेकिन सेहत और स्वच्छता के लिए इस झिझक को तोड़ना जरूरी है। तो हर महिला की सेहत का ख्याल रखने का वादा खुद से करें।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर और आप बरेली के कुछ और खास खबरों की ओर नजर डालेंगे। बरेली में चारों जिलों में 19 पुलों का निर्माण कराने के लिए शासन ने 27.21 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसमें बरेली के 3, पीलीभीत के 10, शाहजहांपुर के 4 और बदायूं के 2 पुल शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम के अभियंताओं को निर्देशित भी किया गया है कि पूरी गुणवत्ता अपनाएं और इस काम को समय से पहले पूरा कराएं। हम जैसा सभी जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है और हाईवे पर ज्यादा गति से वाहन संचालन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग काफी सख्त हो गया है और ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध टोल आधारित समय विश्लेषण प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रहा है और साथ ही ओवर स्पीडिंग पर टोल रिकॉर्ड से चालान भी अब काटा जाएगा। और अब ये ट्रेनों से जुड़ी एक खास खबर है रेलवे की ओर से। रेलवे ने पूर्व से चलाई जा रही 09075 09076 मुंबई सेंट्रल काठगोदाम मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट साप्ताहिक विशेष गाड़ी को नियमित कर 21907 21908 मुंबई सेंट्रल काठगोदाम मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस के तौर पर कर दिया है। इससे लोगों को किराया भी कम देना होगा। वहीं 21907 मुंबई सेंट्रल काठगोदाम सुपरफास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल जो कि अब 27 मई को नियमित बनकर चली और ट्रेन प्रत्येक बुधवार को चलेगी। और मौसम की खबर की बात करें तो भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से बेहाल शहरवासी हो चुके हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलने और तापमान में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। दरअसल 28 मई से यानी कि आज से मौसम में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

0: वाह, और बरेली के लिए भी एक अच्छी खबर है कि कुछ दिनों में अब मौसम बदल जाएगा, यानी कि शुरुआत आज से ही हो जाएगी। और अगर आज के वेदर की हम बात करें तो दोस्तों, मई का महीना है और सूरज देवता पूरी तरह मेहरबान है। बरेली में मुख्य रूप से साफ और मौसम शुष्क रहेगा। सुबह सुबह तो हल्की राहत है, लेकिन दोपहर होते होते जो टेम्परेचर है ना, वो 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो दोपहर में आप जब भी घर से जाएं, प्लानिंग कर रहे हैं निकलने की, तो पानी की बॉटल, साथ में अम्ब्रेला और सन ग्लासेस रखना ना भूलें। सूती कपड़े पहने और खुद को हाइड्रेटेड रखें।
1: शादी कर सकते हैं।
2: Queen Victoria.

ಇವತ್ತು ನಮಸ್ತೆ ಬರೀಲಿ ಯಹಿತ. अभी आप सुन रहे थे नमस्ते बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर और अब समय है लोकगीत का, तो चलिए सुनते हैं ये लोकगीत. और इस लोकगीत में आवाज दी है आभा रानी वर्मा ने.

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत 100.4 FM पर, और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें रिले किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे स्निग्धो जीत भौमिक की आवाज में छिपकली फिल्म का गाना, गीतकार सोहम मजूमदार और संगीतकार मीमो। लीजिए अब सुनिए भूत बंगला फिल्म का गाना, विशाल मिश्रा, नकश अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, कुमार के बोल और प्रीतम की है तर्ज।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए, शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: यसिर देसाई और पवनी पांडे की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार थे अमजद नदीम। आइए सुनते हैं यह संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक, ये कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सोहेल सेन, रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजों में डबल एक्सएल फिल्म का गाना। गीतकार हैं मुदस्सर अजीज और संगीतकार हैं सोहेल सेन।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए हिमेश रेशमिया और शालमली खोलगड़े की आवाजों में समीर अंजान का लिखा हुआ और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम एक्शन जैक्सन।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: और आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश ड्रीम गर्ल 2 फिल्म से मीत ब्रदर्स और नेहा कक्कड़ की आवाजें, कुमार के बोल और मीत ब्रदर्स की है तर्ज़।

100.4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, और आप लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एसआर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर बीसलपुर रोड बरेली।
1: एसआर हॉस्पिटल बीसलपुर रोड बरेली से करवाएं समस्त स्त्री रोगों का इलाज। प्रमुख स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या गंगवार।
2: एसआर हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन के साथ बच्चेदानी और बांझपन के इलाज की पूरी व्यवस्था।
3: डॉक्टर रतन गंगवार से कराएं जहर खाए, दिमागी बुखार, एक्सीडेंटल, सांस रोग जैसे मरीज अपना सफल इलाज या ऑपरेशन।
2: ICU और वेंटिलेटर की सुविधा के साथ एसआर हॉस्पिटल बीसलपुर रोड बरेली।
4: मुस्कुराहट रखो क्योंकि ये सबसे बड़ी ताकत है, दर्द को छुपाने की और दूसरों को हिम्मत देने की।
5: मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र मिश्रा, नमस्कार। जान है तो जहान है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं डॉक्टर रतन गंगवार जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत।
6: धन्यवाद रविंद्र जी।
5: अक्सर आज जो विषय है हार्ट अटैक क्या है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? पहले
6: कि वैसे तो सभी लोगों ने हार्ट अटैक के बारे में सुन रखा होगा
5: जी।
6: इसमें हार्ट अटैक नहीं, हम कहें कि हार्ट को जो खून की नलियां सप्लाई करती हैं, उन नलियों में खून का थक्का चला जाए, उस वजह से उसकी कुछ मांसपेशियों को दौड़ान नहीं मिले और उतनी मांसपेशियां काम करना बंद कर दें। चूंकि एकदम से होता है इसलिए इसको अटैक बोल दिया जाता है। बेसिकली ये हार्ट अटैक ये होता है।

0: हार्ट के दिल के कार्य क्या क्या हैं?
1: हमारे खून में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाना होता है पूरा, ग्लूकोज है
0: जी,
1: और दूसरे प्राणवायु ऑक्सीजन होती है
0: जी,
1: ऑक्सीजन को खाने को
0: जी
1: ब्रेन तक ले जाना
0: जी,
1: सभी ऊतकों तक, सभी टिश्यूज को ले जाना, चाहे वो गुर्दे हो, चाहे वो लिवर हो, सभी जितने अंग हैं इंक्लूडिंग हर खाल बाल हर चीज के लिए, खाने को ले जाने के लिए कोई तो माध्यम चाहिए, और वो माध्यम होता है खून
0: जी।
1: खून को वहां पहुंचने के लिए उन पे बहाव चाहिए, बहाव दिल से होता है, दिल जैसे ही सिकुड़ता है हमारा खून आगे खून की बड़ी नली, बड़ी से छोटी, उससे छोटी नलियों से होता हुआ ऊतकों तक पहुंचता है। तो बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल ये पंप की तरह काम करता है, तो हार्ट भी एक पंप है जो कि खून को पंप करता है।
0: हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं, अगर किसी को होना होता है उससे पहले पता चलता है कुछ, आप लोग कैसे जांच करते हैं?
1: देखिए, पता तो ऐसे नहीं चल सकता है, हार्ट अटैक जिसको होना होता है तो वो खून का थक्का या तो वहां पे पहले से बना हुआ होता है, वो फट जाता है
0: जी।
1: जो खून की नलियां अंदर होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जिन जो आर्टरीज हैं वो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उनमें अगर खून का थक्का चला जाता है, बाहर चला जाए, या वहीं पे कोई थक्का प्लाक जिसको बोलते हैं बना है, फट गया, फट के पूरे उस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, यानी हृदय को ही खून नहीं मिला, ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक होता है। और जितने हिस्से को खून नहीं मिलेगा वो हिस्सा काम करना बंद करेगा, दूसरे, जब भी कभी आपने देखा हो हाथ को दबा दो तो हाथ में दर्द होने लगता है, आगे पूरा झंझनाने लगता है, काला पड़ने लगता है, ऐसी हृदय को भी है, हृदय वहां पे खून नहीं मिलेगा तो उसमें दर्द होगा, वो दर्द महसूस होता है, प्लस हार्ट काम नहीं करेगा तो खून नहीं पहुंचेगा हमारे लंग्स के लिए, नहीं पहुंचेगा, सांस फूलेगी। अगर हम कहें इसमें लक्षणों के लिए, तो एक तो सीने के आगे बाईं तरफ दर्द हो सकता है, दाहिनी तरफ भी दर्द हो सकता है, या हम मोटे मोटे कहें तो नाभि से ऊपर और जबड़े के नीचे और दोनों हाथों की तरफ, चाहे एक या दोनों हाथों की तरफ, कहीं भी ये दर्द जा सकता है। और ये दर्द एक खिंचाव की तरह महसूस हो सकता है, दबाव महसूस हो सकता है सीने में, या कभी कभी ऐसे सुइयां से चुभ रही, ये भी महसूस हो सकता है। दर्द एक तो लक्षण हो गया, मरीज की सांस फूल सकती है, बहुत सीवियर हो जाए, हृदय काम करना बंद कर दे, फेफड़ों में पानी भरने लगता है, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कहते हैं, उसमें सांस फूलने लगती है, और मरीज अचेतावस्था में भी जा सकता है, ऐसी स्थिति में बिल्कुल खून का दौरान रुक जाए तो अचेतावस्था में भी जा सकता है, बेहोशी भी आ सकती है, घबराहट बहुत ज्यादा होती, पसीना आने लगता है।
0: कारण क्या, फिर मरीज सीरियस भी हो सकता है क्या?
1: जी बिल्कुल, जो अभी हमने बोला है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर LVF, जिसमें कि हृदय फेल होने लगता है, फेफड़ों में पानी भरने लगता है, फेफड़े काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में मरीज को वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़ती है, बहुत सीरियस होता है। कभी कभी खून की नली पूरी तरह से बंद होती, सडनली हर्ट रुकता है, मरीज का हृदय रुक जाता है, हृदय रुकने का मतलब मृत्यु, तो मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन अगर समय से उन्हें हम रिससिटेट करें, उन्हें हम CPR दें, जिसमें सीने को दबाना, मुंह से सांस देना, ये प्रक्रिया अगर हम करें तो ये मरीज दोबारा जीवित हो जाते हैं, लेकिन ये उसी समय के लिए जीवित होते हैं, बाकी आगे हमें इनमें और इलाज की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें ICU भर्ती करना होता है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना होता है, और जो भी दवाइयां उस नस को खोलने की हैं, जो कि हृदय की खून की नली बंद हुई है उसको खोलने की दवाइयां हैं, वो शुरू करनी पड़ती है।
0: इसकी जांचें भी होती है, मशीन होती है, या खुद ही आप जांच कर सकते?
1: जब भी कभी हमारे पास कोई मरीज आता है लक्षण लेकर के कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे पसीना आ रहा है, मेरी सांस फूल रही है, मुझे चलने में सांस फूलती है, ऐसे मरीजों का सबसे पहले तो हम ब्लड प्रेशर देखते हैं, फिर उनका ECG देखते हैं। ECG में लगभग 70% मरीजों में हमें दिख जाता है, 50-70% मरीजों में हमें पता लग जाता है कि हाँ हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें ECG नॉर्मल आता है, तो वो एक जांच हो गई। दूसरा जांच हम इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, जिसमें दिल का अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में खून के हृदय के जिस हिस्से की खून की नली बंद हुई है वो हिस्सा हृदय का कम काम करता है, यानी हाइपोकाइनेटिक हो जाता है, चलना कम हो जाता है उसका। तो एक तो ECG हो गया, दूसरा इकोकार्डियोग्राफी हो गया, तीसरा एंजियोग्राफी, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट नीचे से या तो हाथ से या पैर की जांघ के पास की नली में एक तार डाल के वहां से दवाई हृदय में डाल के और हृदय की नलियों को देख लेते हैं। मशीन होती कैथ लैब, उसमें दिख जाता है कि हृदय की नली कौन सी बंद है।
0: प्राथमिक उपचार भी होता है शुरुआत में, मरीज क्या करे?
1: सबसे पहला है कि लोगों को अपने रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए कि किन्हें हार्ट अटैक हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स में ओल्ड एज, दूसरा ब्लड प्रेशर का मरीज होना, तीसरा डायबिटीज का मरीज होना, चौथा मोटापा होना, और ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा नमक खाते हैं, ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत तली चीजें खाते हैं, ऐसे मरीज रिस्क में होते हैं। इस तरह के मरीजों में अगर छाती में दर्द कोई बताता है तो हार्ट अटैक हो सकता है। तुरंत ही ऐसे मरीज को हवादार जगह पर लिटाएं, और अगर हृदय रुक गया है तो CPR शुरू करें, अगर मशीन है पता

0: लग जाए, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, तो ब्लड प्रेशर की जो भी उस मरीज की दवाइयाँ चल रही हो वो दवाइयाँ उसको दे दें और जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाएं, क्योंकि इसमें समय ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मरीज हमारा 30 मिनट के अंदर अंदर अस्पताल पहुंच जाता है और उसकी नली खोल दी जाती, चाहे वो दवाइयों के द्वारा खोली जाए या ऑपरेशन करके एंजियोप्लास्टी के द्वारा खोली जाए, जिसमें थक्का निकाल लेते हैं हम, छल्ला डाल दिया जाता
1: है। सीपीआर क्या होता है?
0: जी बिल्कुल, सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन या जीवन रक्षा प्रणाली होती है। इसमें ऐसे मरीजों को की जाती है जिन मरीजों का हृदय भी रुक जाए, सांस भी रुक जाए, आम भाषा में मरीज की मृत्यु हो जाए। अगर मरीज की मृत्यु के 3 मिनट के अंदर अंदर ये प्रणाली शुरू कर दी जाती है तो मरीज दोबारा जीवित हो जाता है। इसमें हम सबसे पहले तो यही पता करेंगे मरीज के कंधे पे थपथपा के कि भाई अगर मरीज होश में है या नहीं है। मरीज नहीं बोल रहा है, हमें नब्ज नहीं भी देखनी आ रही, तब भी अगर मरीज सांस नहीं ले रहा है, बोल नहीं रहा है और हाथ पैर नहीं हिला रहा है, इसका मतलब मरीज की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हम मरीज की छाती के बीचों बीच में, जिसमें अगर हम नीचे कहें कौड़ी है, पेट और छाती के बीच में एक डिप्रेशन होता है जिसको कौड़ी बोलते हैं या जिफाइड प्रोसेस बोलते हैं अंग्रेजी में, उससे 2 अंगुल ऊपर अपने हाथ की हथेली को रखें, हाथों को सीधा रखें, हाथों को रखें और छाती को दबाएं, लगभग 5 सेंटीमीटर दबाएं और 1 मिनट में 100 से 110 बार लगभग दबानी होगी छाती। अगर आप जानते हैं सांस देना, सांस दीजिए, नहीं जानते कोई बात नहीं, आप सिर्फ छाती दबाते रहिए, वो भी प्रक्रिया काफी हो जाएगी और आपका मरीज दोबारा जीवित हो सकता है। ये सीपीआर की प्रक्रिया कहलाती है।
1: कोई ऑपरेशन भी होता है हार्ट अटैक के लिए?
0: सबसे अच्छा तो इसमें एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी होती है, लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी संभव नहीं होती है। या तो डायबिटीज वाले होते हैं, या हमारे हृदय में 3 तरह की नलियां सप्लाई करती हैं, एंटीरियर कोरोनरी आर्टरी होती है, पोस्टीरियर कोरोनरी आर्टरी होती है, और तो ये एंटीरियर वाली 2 में डिवाइड हो जाती है कोरोनरी आर्टरी। अगर ये तीनों नलियां बंद हो जाएं तो ऐसी स्थिति में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होना संभव नहीं, मरीज बहुत सीरियस होगा। या ऐसे ही मरीज के फेफड़े में पानी उतर आया है तो उस मरीज को भी पहले हमें ठीक करना होगा, तो दवाइयां देनी होंगी। और लेकिन जिनमें ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो सकती है, यानी अंदर तार डाल के उसके अंदर थक्का निकाल के उसमें एक स्टेंट डालना, छल्ला टाइप का डालना और खून की नली को खोल देना, ये संभव है तो वो किया जाता है। दूसरा, इसमें बाईपास सर्जरी की जाती है जिसमें हम किसी दूसरे खून की नली से खून का दौरान हृदय की नली को पहुंचा देते हैं। तो ये 2 प्रकार के लगभग ऑपरेशन किए जाते हैं इसमें।
1: अब बात आती है कि अगर डायबिटीज का मरीज है, शुगर का मरीज है, तो उससे कोई अलग से लक्षण होते हैं?
0: रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। शुगर के मरीजों में जो हमारी तंत्रिका से आने वाली नसें हैं, जो पेन को महसूस करने वाली नसें हैं, वो खराब हो जाती हैं। और पहले वाले को हम, जिसमें तंत्रिका नसें खराब होती हैं, उनको न्यूरोपैथी कहते हैं। तो एक डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है और एक एंजियोपैथी हो जाती है, और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी भी होती है जिसमें कि ये खून पेन सेंसेशन ले ही नहीं जाते हैं, अटैक हो जाएगा, दर्द को ले जाने वाला रास्ता ही खत्म हो जाएगा, दिमाग तक दर्द का सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा, दिमाग दर्द ही नहीं महसूस करता है। तो ऐसे मरीज दर्द ही महसूस नहीं करते हैं, बस सिर्फ कहते हैं मुझे घबराहट हो रही, मुझे कुछ बेचैनी हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी सांस फूल रही है, मुझे ले चलो, इस तरह के मरीज ऐसे लक्षण बताते हैं। या कहते हैं मेरे छाती के पीछे ऐसे लग रहा है कोई दबा रहा हो, गला घोंट रहा हो मेरे, इस तरह के लक्षण बताते हैं।
1: दिल बेचारा, कवियों ने दिल की अलग गणना की है, लेकिन हमारा जो संगीत है आकाशवाणी से, संगीत जो बजता है, तो आज आपको कौन सा गीत सुनवाए जो हमारे श्रोताओं को भी पसंद आए और आपको भी?
0: रविंद्र जी आप सुना दीजिए।
2: प्रेम शब्दों की सीमाओं में नहीं बनता, ये वो मौन एहसास है जिसे सिर्फ रूह से महसूस किया जा सकता है। जब देने में कोई स्वार्थ न हो और पाने की कोई अपेक्षा न रहे, तब प्रेम अपने सबसे पवित्र और सुंदर रूप में निखरता है। निस्वार्थ समर्पण ही प्रेम की असली पराकाष्ठा है। दिल के झरोखे में जब किसी अपने को देखते हैं, तब ये गीत होंठों पर अनायास आ ही जाता है।

0: और अब इसी गीत के साथ ही जान है तो जहान है कार्यक्रम समाप्त होता है। और अब अपने दोस्त रविंद्र मिश्रा को आगे दीजिए। श्रोताओं नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
1: SR इंस्टीट्यूशन मैकपुर भुता बरेली।
0: SR इंस्टीट्यूशंस मैकपुर भुता बरेली से करें
1: ITI में इलेक्ट्रीशियन,
0: कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट,
1: रेडियोलॉजी टेक्नीशियन
0: और हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर। SR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से करें डी फार्मा और बी फार्मा। SR पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से करें
1: BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी।
0: SR इंस्टीट्यूशंस मैकपुर भुता बरेली के चेयरमैन हैं डॉक्टर रतन गंगवार
1: और वाइस चेयरमैन डॉक्टर संध्या गंगवार।
0: संपर्क करें 9720456885।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
2: समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया, शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत, महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

104 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और समय है आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद का। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद।

और आपके पसंद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को आज ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी पसंद। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सफर। ये हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोयल, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल और इनके परिवार के सदस्य। साथ ही ये हैं हमारे श्रोता जो कि गुजरात पाटन से धीरज वी रबारी और इनके परिवार के सदस्य, मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वानिया, इंदिरा कॉटेज, तलीताल, नैनीताल से हैं। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु, तासु अर्णव और सत्यम, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। साथ ही नंदी कुमार ठाकुर, प्रमिला, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति, ग्राम चौरदा बार, नवापारा अभ्यारण्य, जिला बालादौर बाजार छत्तीसगढ़ से, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और विद्या कुमारी, और मणिनाथ बरेली से डॉक्टर अद्भुत कुमार हैं, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सुपान ताइडे, आशीष मोहरकर, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा टिल्लू नायक और मधु नायक, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानुप्रकाश, गीतिका खोरवाल, और मध्य प्रदेश जिला भिंड बुद्ध रेडियो लिसनर्स क्लब से हैं अनामदर्शी विश्वमीत राजकुमारी, सिद्धार्थ और इनके परिवार के सदस्य। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत कौशिकी, दीपाली युवान और आर के राजा।

ज्योतिनगर से हमारे श्रोता राजस्थान से हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भागर, बाबू गौरी, हसन सिक्का, जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन रिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस रिकेस्ट्रो, डॉक्टर अनुन चंद्र शर्मा, रेणुका देवी शर्मा विराटनगर नेपाल से हैं, बेड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार और सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह प्रखर, कुशल नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टॉगिश नेपानगर से हैं, गांव लोडेड़ा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन मोहन, सुधीर, भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी और इनके परिवार के सदस्य, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू।

और प्रोग्राम में आप सभी ने यहाँ पर हमें कमेंट के माध्यम से गाने सुनने की बात कही है। साधु श्री राजस्थान से रामकुमार रिवाड़, चंद्रकला और इनके परिवार के सदस्य, विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौर, सुवेश आशीष, तन्मय और अपूर्वा, तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश ग्राम महेशपुर खेम मुरादाबाद से हैं। और ये हैं आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते, गांवगढ़ी कोटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से सिराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद अक्सा, आयशा, उमर अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य।

देव नेगी की आवाज में फिल्म का नाम केदार, ये गाना आपने सुना प्रोग्राम आपकी पसंद में। और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद और बारी है अगले गाने की। लेकिन उससे पहले आप सभी के नाम भी शामिल करना भी तो जरूरी है। तो ये है जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, धोता जोड़ा अष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। बैंक सेंटर चनेटी बरेली से हैं हमारे श्रोता रागिनी मुस्कान और विनेश कुमारी। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशी शाहू। गांव हिंगड़ी से जगदीश धायकर, नायमा रंजूबाई, युवराज और शिवांगी। उज्जैन एमपी से भेरूलाल वक्तरिया, भोला वक्तरिया, प्रवीण रियांश और प्रतीक। चोट डोगरी पिपरिया जिला छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम, अजय, जयकिशन, कुमारी साहू, इंद्राणी, माया साहू और इनके परिवार के सदस्य। नमता ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, शकुनारुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंगेल। शीशगढ़ बरेली से इलास इद्रीसी, नाजरा इद्रीसी, नईम इद्रीसी और इनके परिवार के सदस्य। ये है सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा, अभिषेक और हर्षित। वीरपुर पोस्ट बिलसर तहसील अलीगंज एटा यूपी से विपिन कुमार, सपना, रविंद्र, राजेश मिस्त्री, रमेश चंद्र, राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ, सुजाता, संगमित्रा, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा और उनके मम्मी पापा। साथ ही ये हैं वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम खान, गुड़िया, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा, सेक्टर 24 कुंडेलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, अभय गुजराती, नागपुर महाराष्ट्र से कमल स्वानी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कर, रामकर कैन झारखंड से निप्पी स्वानी, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश, गंज टिंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, दुलापुर यूपी मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार और नरगिस खातून। ग्रामर पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शारू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील मोइन, तस्लीम, डीजे प्रधान। और ये है सब्जी मंडी बरेली से हमारे श्रोता रजापुर ग्राम सुल्तान, रजा इकबाल, रजा जीशान, अफजल, मोनिश, सादिक और इनके मम्मी पापा। ये हैं हमारे श्रोता अपार ढिंगिया बागपत उत्तर प्रदेश से संजय और नमन। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल, संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत, भरत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। और ये है जिला पटियाला पंजाब नाभा से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज कालका से हैं। बहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखन, सावित्री बाई देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से ही ये सभी श्रोता। और मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू अर्चना, कल्पना, मुन्नी चांदनी और नंदिनी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, कपिल, किरण और कुणाल मेहरा। साथ ही ये हैं नंद कुमार, प्रमिला, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति, चौरदावार, नवापारा अभ्यारण्य जिला बालादौर छत्तीसगढ़ से।

मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या तलीताल नैनीताल से, मोतला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, विद्या कुमारी और उनके परिवार के सदस्य, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशार, निलेश, नीरज, अंजलि, रोशनी सारवा, नलकेश्वर नगर महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, प्रमिला, निर्मला, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान और आशीष, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा टिल्लू नायक और मधु नायक। और अब सुनते हैं आप सभी की पसंद का गाना, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम सरगम।

इस समय आपने ट्यून इन किया है 100.4 FM प्रोग्राम का नाम आपकी पसंद और 10:17 अड़तीस

सेकंड हो चुके हैं। जल्दी से आपके गाने और आपके नामों को भी शामिल करते हैं। ये हमारे श्रोता मोतला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और विद्या कुमारी, मनबघेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा शाह और नीरज अंजलि, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, निर्मला विशाल मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान और आशीष मोहरकर, पहाड़गंज मुलानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा टिल्लू नायक और मधु नायक, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल ईशान, पूजा परिहार, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना आशीष चैतन्य और मेघा मस्कीन, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु रधान और तुलसी मस्कीन, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ एमपी से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा सोनाली सोनम और आशीष, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित और खुशी, रजौनी जिला महुआ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान जय हिंद, दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश दिव्यांश और इनका पूरा परिवार, पीपरपारा पलचुवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवारकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन और वंशिका, पीपरपारा पालचुवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा परमेश्वरी भानु नितिन वंशिका और योगिता, अश्विन चुक गोविंद टोनी दीवान लब दीवान राधे भाविक ढिंगरा आशुचुक पंचकुला सेक्टर 9 से हैं। ये हैं रामचंद मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, स्वाति और महेश कुकरेजा छत्तीसगढ़ धमतरी से, और रितेश कुमार, राजेश्वरी उत्कर्ष, शिव कुमार, संक्रांति बाबाकुटी रायगढ़ से हैं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी, दिवेंद्र प्रताप, नेहा मिलिंद, प्रणय रुद्रांश इनके परिवार के सदस्य, जुनबानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत रमेश, तारा विद्या जितेंद्र सुनीता रिसीवन लाल चंद्रहास, हिरेंद्र कुमार लोक त्रिलोक कुमार रंजीत साहू और इनके परिवार के सदस्य। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत और चुलबुल रानी, बीपी गौतम, सरिता, एम कलीम जख्मी, डीएच बच्चन, एटा रोड गंज डिडवारा उत्तर प्रदेश से, परवेज अहमद शुकुलपुरा बनारस से हैं, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा, सुभाष विमला जो कि हैं गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य, मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं, गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी चेतन सारिका और इनके परिवार के सदस्य, श्रीगंगानगर राजस्थान के खोखरावाली गांव से विनोद बारसारा, विशाल, विकास रोशनी और शकुन, वारिस अली, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद शहनबाज, बेबी नुसरा खान, संजयनगर ऐशबाग लखनऊ से, नबी हसन अब्बासी, शहनबाज, नवीद हसन वारसी और इनके परिवार के सदस्य, रसीद, सुहेल, अनम और यशव, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा शबिस्ता, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी, सितारा सिद्दीकी, सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, साद समन और सादिक, ये है उगहती बदायूं उत्तर प्रदेश से, उदयपुर राजस्थान से है बाबू भाई भारती, रमेश नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी, जिसु दिलवाले, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली, पुष्पा, नेहा एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल दिलवारे, ये हैं राजपुर एमपी से, कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11, पुराने शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, कपिल, रिंकी, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नागर, अंजू, मोहित और तानिया, अनारकली बाजार जगराऊ से सुनील पाठक, दीपिका गाव्या, सुच्चा सिंह, जयपाल, विनोदपुरी, आशा देवी, रविन्द्र मोहन किशनगंज बिहार से हैं, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, भारती बघेल, लगान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से, गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से, जीवन विश्वकर्मा, मंजू मिशन, सावन सचिन, हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र, भगत मालती, राहुल और ऋषि, और अब आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम शादी में जरूर आना, यासीर देसाई और आकांक्षा शर्मा की आवाज में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी चाय, EMI, किराया कैसे मैनेज करूं?
2: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
1: कैसे?
2: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
1: इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
2: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: 1454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर, प्रोग्राम का नाम आपकी पसंद। और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 10:28 और 2 सेकंड हुए हैं, और जल्दी जल्दी आपके सभी नामों को हम शामिल करते हैं और साथ ही गाने भी सुनाते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस ज्यादा जरूरी है। ये हमारे श्रोता वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद चौहान, मोहिनी कल्पित, गर्वी और हिमांश ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा छत्तीसगढ़ से, प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन और युवराज चंडीगढ़ से, सतीश अनेजा और विमला अनेजा सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से, गजानन येले, नवदीप और अवंतिका रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा और करुणा। ये है हमारे श्रोता मलयान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान और जीवियम जैन। ये है रामपुर रोड किला छावनी से प्रदीप कुमार, नमन उषा, गरीब भाई प्रिया सिंह, निशा, आरती, पूनम और इनके अन्य परिवार और मित्रगण। साथ ही दिग्दर्शन गौड़ मेरठ से हैं, ग्राम कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवन भाबिष्टे, अनीता, राहुल और इनके परिवार के सदस्य। ये हैं जगदीश, कलावती, प्रवीण सोनी, गुजरात ग्राम गांधीनगर। साथी अनार नानघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, राहुल गोपी और चांदनी, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा, बबलू साहू, जामुन देवी आराध्या, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, पंकज बजाज, देवेंद्र धीरज, प्रिंस प्रशांत और कार्तिक गुप्ता जो कि हैं कस्बा उगैती से, गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कमल, परी, कृतिका, रमेश चंदांगी, राजगढ़ मध्य प्रदेश नरसिंहगढ़ से हैं। ये है रावर करनाल से विनोद लखनपाल। साथ ही दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला राजस्थान हनुमानगढ़ से प्रेम सिंह बड़वाल, सुबीर, काजल, लखवीर, रानो, कृष्णा, चंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, निशांत, अनमोल और इनके प्यारे बेटे चटकू और मटकू भी गाना सुनना चाहते हैं। साथ ही ये है राजपाल आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान, दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीस, सकीना, हसीना, दिलशाद, मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम, ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी के पास से सुनील बाबू, शिवम, अभयमीस, सर्वेश, भगवान दे, स्वाति, तानिया और मित्रगण, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित, हैप्पी, दुविया, नियादा, गाजीपुर से हैं प्रांजल, प्रतीक और रोशनी, गांव जलालपुरा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार, शिवम, आर्यन, लविस, प्रजापति और मुनेश देवी, मनीष राजभर आदर्श मिर्जापुर से, आकर्ष भी यहीं से हैं, सोनवर्षा खानपुर चुनार से, और ये है ग्राम देवाग तहसील पूर्णा महाराष्ट्र से सदाशिव, कविता, श्रेया और थुरात, खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, गांव मंडी फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, रजत, योगेश, बेबी गरिमा। ये हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर, लोकेश, शिव कुमार, बेबी वैदेही, हंसिका, अंकिता, अनूपपुर मध्य प्रदेश, जयवंती केवर, खंडवा एमपी से अब्दुल गफ्फार डावर, और साथ ही डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार, गौरव मंदूरकर, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से, गांव जैखो से शंभुदयाल कटक, विमला, अमरजीत, योगेश, दीपक और पूजा खटक, सरजीत सिंह जॉसन, सरजीत के अलावा गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, आदर्श पाल जॉसन वैंकूवर कनाडा से, रॉबिन सिंह जॉसन, चक 15 पीएस जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, सरजीत के अलावा इनके परिवार के सदस्य भी शामिल, और सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटोके यशोधरा, साथ ही महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मण, योगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और इनके परिवार के सभी सदस्य जो कि हैं गोविंद कीर्तनपुरी छत्तीसगढ़ नरगोडा से हैं, गणेशपुर गंज रिंडवारा एटा से एम फारूक, शमा परवीन, साइना, सरफराज, गुलशन, बेबी मुस्कान। और आप सुनेंगे आप सभी की पसंद का ये गाना जो कि हमने लिया है फिल्म मखना से, यासीर देसाई, एशीज कौर, और ये सब गाना आप सभी के लिए।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद में। जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी रमेश चंद्र वर्मा, श्वेक मुसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नन्नी, रोहित ऋतु, मुकेश जगताप, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर जयतेक और मीका विरक, नई मस्जिद करीली से इंतजार अंसारी, हिब्जा नूरी, नत्थू चाचा, जाहिर अंसारी, असीर अंसारी, अख्तर और नन्हे शौकीन भाई अंसारी, इनके परिवार के सदस्य, गांव रघुनाथपुरा से सतीश शर्मा, रोशनी, भावना, गरिमा और हिमांशी, बरवड़ बकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय सरवानी, सोकनाहा नेपाल से अरुण कुमार, रेणु देवी, राहुल कुमार, वंदना, प्रियंका और इनके बहुत सारे साथी, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता, तुषार और रिंकी, तेलंगाना निजामाबाद से शेखल्ला बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना, दानिश और आसिफ, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी, अर्पित यादव, देव सिंह यादव, मजरा दौलतपुर, आंवला जिला बरेली से सिकलापुर बरेली से रतन माला, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव और चंद्र, पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा, फौजिया, अहिल, अहान और इनके परिवार के सदस्य, विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला और प्रवीण, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, वसंत राव, तुषार और इनके परिवार के सदस्य, बनवारी लाल कुशवाहा, मंजूलता राम श्याम, रवि आर्यन, रंजीत रमानंद कुशवाहा और इनके साथी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, शुगर फैक्ट्री गेवराई महाराष्ट्र से दिनकर, अजय राजपुरी, एकनाथ पवार, भाऊ साहेब और इनके परिवार के अन्य सदस्य, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक और इनके परिवार के अन्य सदस्य। शिवपुर हकीकत

पुरा से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मोहनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा, प्रीति और कार्तिक, छत्तीसगढ़ धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री मोहित देविका, गजेंद्र कुमार चंदन और हेयांश, नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, ये है शाहू नगर यमतमाल से राहुल, सरला, विशाल, रोशनी और प्रियांशी, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद और नदीम पटेल, माया देवी, ऋतिक, आदित्य, लदावली, मुरादाबाद से अजीत कसाना, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, माहेश्वरी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष और शौर्य, राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा और राकेश जैन, कासम कॉलोनी सनावत से युतुस खत्री, शही और इद्रीस, नूरू मीना, इरफान, कासिफ मीना और यूनुस, ये है जगाधरी से विनय मोहन खारवान, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया, बदायूं रोड फाटक कॉलोनी चंदौसी संबल यूपी से हैं आमिन अली, संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा पोटिया कला दुर्ग से हैं, राजीव सिंह चौधरी, आव्या कंच और इनके परिवार के सदस्य हैं, इन्होंने अपना पता नहीं दिया है, गुजारिश है कि आप अपना एड्रेस जरूर लिखें अगली बार। दतरिंगी भाटापारा से हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्र नोखेलाल वर्मा। ख्याल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू, भाविक सिक्का, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अब्रार अल्ताफ, आशिक मुन्ना अंसारी, चामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति, नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहब, रामनिवास, धनंजय, ये है बीट शहर महाराष्ट्र से, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजवी, राधिका और तन्मय, सनावत से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा, कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद, किरण, दृष्टि और मानवी, गुजरात पाटन से धीरज वी राबरी, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका, सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हैं, और ये हैं मोहम्मद कासिफ, वकील अहमद, नाजनी बेगम सुपौल बिहार से, मोहम्मद शाहबाज, नाजिश, प्रवीण, मोहम्मद शाकिब, रूही और मोहम्मद जैद, कटरा चांद खां मौर मंदिर वार्ड नंबर 11 से अनोखे लाल मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति, ख्याल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष तिक्का, कोयल डुग्गू और भाविक, साथ ही ये है राशिद हुसैन अंसारी, नसरी नौरी, नासना, मोहम्मद कैफ अंसारी, जैन मंदिर कुरावली से, और अब आप सभी की पसंद का ये गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है हॉलीडे, अरिजीत सिंह की आवाज़।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: और एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद को लेकर। 10:44 हुए हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास और आप नामों को भी शामिल करना है। पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा नाम शामिल हो। कस्बा गुरनैर यूपी से फारूक अली, फैजी फरार, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा, ये है हमारे श्रोता जो कि जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद, शेख मुसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप, राजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और ये है मुकेश राणा। साथ ही ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी, प्रेम, पूजा, प्रांजल, दुष्यंत, समीक्षा, आराध्या, सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतन माला, मौर्य मुकेश मौर्य, प्रिंस दिव्यांशी, पुष्पा गौरव और चंद प्रकाश मौर्य। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान, जय हिंद, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश और इनके परिवार के सभी सदस्य। साथ ही ये हैं चिनौरा जिला फिरोजाबाद से बनवारी लाल कुशवाह, राम श्याम, मंजुलता, रवि रंजीत, रमानंद कुशवाह और इनके साथी, शुगर फैक्ट और से महाराष्ट्र से भी हैं दिनकर सालवे, अजय एकनाथ, भाऊ साहेब मोटे और इनके परिवार के सभी सदस्य। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। और अब हमारे तमाम श्रोता जो कि लगातार कमेंट के माध्यम से हमें मैसेज कर रहे हैं, जिला नवाशहर पंजाब टोरेवाल से गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, प्रियम, प्रशांत, वामिका और वाणी, ये हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय और गगनदीप थांदी भी जो कि टोरेवाल नवाशहर से, और पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं, बबलेश पवार, डैनी मनीष, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, पारसमणि रेडियो श्रोता संघ से भी यही हैं। आप सभी से गुजारिश है कि सिर्फ एक नाम ही एक बार में भेज रही, डबल नाम होने से बाकी श्रोताओं को मौका नहीं मिल पाता है। और ये हैं सोनवर्षा, खानपुर, चुनार, मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष और आशीष, और बेबी प्रवीण, अनम, छोटी सी हानिया, तमन्ना, ताबिर नूर, इमरान, शेरखा मस्जिद के पास से हैं, मलूकपुर से, और ये हैं

0: जो कि माँ भारती रेडियो श्रोता संघ राम पोस्ट अकोहा तहसील लवकुश नगर छतरपुर एमपी से सुरेश कुमार, कमलेश, देवेंद्र, गजवेंद्र कुमार, रवि कुमार, धर्मेंद्र, राघवेंद्र, भावना और इनके परिवार के सदस्य, साई विहार रामपुर उत्तर प्रदेश से सरिता बी, प्रकाश, श्रेय, कुश, अनन्या और ऐश्वर्या। और यहाँ पर आप सभी कई बार कमेंट कर रहे हैं, सिर्फ एक नाम एक बार में ही शामिल करें ताकि अन्य श्रोताओं के नामों को भी शामिल किया जाए। बधाइयों से हैं सब्जी मंडी उसावा से धनवीर, उषा, ध्यान, संजय, अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान। धनुरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नुशाद, आलिया और अयान। और ये है बेचेलाल, प्रशांत देव, ज्ञानेन्द्र, इला देवी, बर्फा देवी, संजय, सुनील जो कि बरेली से हैं, अलकनाथ मंदिर के सामने से, बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश, आशा सरवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी। और अब आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम हंसी तो फंसी, आवाज है सनम की।
1: यहाँ क्या देख रहे हो? हाँ देखो ना,

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर और प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। तो लगातार आपकी पसंद के गाने हम आपके प्रोग्राम में सुना रहे हैं। चलिए अब सुनेंगे हम अगला गाना जो कि है फिल्म आराधना से किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में, और इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं। ये है हमारे श्रोता जो कि रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड से उदयभान, जय हिंद, दीक्षा पाल, विमलेश, दिव्यांश और इनके परिवार के सदस्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस प्रियांशी, पुष्पा, गौरव, चंद्रप्रकाश, गली सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से हैं, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या, राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़ से। संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी और इनके परिवार के सभी सदस्य, सोन वर्षा, खानपुर चुनार, मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष, आशीष और आकर्ष, रजौनी महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयबान, जयपाल, दीक्षा, प्रतीक्षा और इनके परिवार के सभी सदस्य, आप सभी इस गाने को सुनना चाहते हैं। और साथ ही ये हैं हमारे श्रोता जो कि दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है आराधना, जिसमें आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद। इस समय हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब आपको सुनाते हैं आकाशवाणी के 90 साल के पड़ाव होने वाला है। और इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने न केवल इतिहास बनते देखा बल्कि हर घर के सदस्य की तरह खुशियां और खबरें बांटी हैं। बरेली के बेहद खास श्रोता विनेश कुमार ने अपने विचारों को हम तक साझा किया है, तो चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं।
1: साथियों नमस्कार, मेरा नाम विनेश कुमार है और मैं बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास सेनेटी बरेली से रेडियो का एक श्रोता हूँ। आज हम जश्न मना रहे हैं उस आवाज का जिसने भारत वर्ष के घर घर में अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का। साथियों याद कीजिए उस दौर को जब ना तो इंटरनेट था ना टीवी थे, तो ऐसे में मनोरंजन और खबरों का जो माध्यम था वो आकाशवाणी ही थी। साथियों मैं इस सफर में लगभग 1975 से जुड़े हुआ हूँ। विविध भारती के वो कार्यक्रम हवा महल हो या फौजी भाइयों के लिए जयमाला हो या रेडियो सिलोन की प्रोग्राम बिना का गीतमाला हो, बीबीसी लंदन के वो समाचार हो, उर्दू सर्विस के प्रोग्राम हो, ये सब आज भी याद किए जाते हैं। 1975 से जब मैं इसमें जुड़ा था तो मैंने शिक्षा सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में काफी कुछ सीखा है और आज भी सीख रहा हूँ। इस सफर में मैंने बरेली आकाशवाणी से लेकर और रामपुर और नजीबाबाद तक कई सारी वार्ताएं भी की हैं। 1993 से शुरू हुआ आकाशवाणी बरेली आज भी शिक्षा सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। साथ ही मुझे याद है वो दौर जब बरेली में बाढ़ आई हुई थी और कर्फ्यू लगा हुआ था, तो उस बाढ़ के दौर में आकाशवाणी बरेली की पूरी मशीनरी डूबी हुई थी, तो ऐसे में यहाँ के तकनीशियन जो थे उन्होंने बहुत ही मेहनत करके प्रसारण को जारी किया था और बहुत ही कम समय में प्रसारण को जारी किया था, तो ऐसे में वो जो थे सब बधाई के पात्र थे। वो दौर आज भी याद किया जाता है। ऐसे ही जब बरेली में कर्फ्यू लगा हुआ था तो यहाँ के जो उद्घोषक थे वो एक रोड शो आता था झुमका गिरारे, तो उस रोड शो के माध्यम से सड़कों पर आए और यहाँ की शांति व्यवस्था बनाए रखने में बहुत ही अच्छा योगदान किया था, जिसको हम लोग आज भी याद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये 90 वर्ष का सफर है वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो इस सफर में अधिकारी कर्मचारी और जो तकनीकी स्टाफ है वो सभी बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आकाशवाणी।

और अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बरेली से कार्यक्रम सबरंग। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर, और अब समय है आपके अपने कार्यक्रम झुमका गिरारे का। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम झुमका गिरारे।

दोस्तों आज तारीख है 28 मई और आजकल नौतपा चल रहा है। आसमान से बरसती इस आग ने पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। दोपहर में कुतुबखाना, बड़ा बाजार और सिविल लाइंस की सड़कों पर ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि मानो कर्फ्यू लगा है। नमस्कार बरेली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम झुमका गिरारे में। लेकिन हमारे बरेली वाले भी कम नहीं हैं। इस नौतपा की भट्टी से निपटने के लिए बरेली वालों ने अपना पूरा ड्रेसिंग सेंस और लाइफस्टाइल ही बदल डाला है। जेठ की दोपहरी इतनी तेज कि सड़क पर अगर आप पांव रखें तो वो भी जल उठे।

तो आज के प्रोग्राम झुमका गिरारे में हमारे साथ चलने के लिए हो जाइए तैयार बरेली के बाजार में और जानेंगे कि यहाँ का क्या है हाल। लेकिन पहले इस गर्मा गर्म माहौल को थोड़ा कूल कर लेते हैं और सुनते हैं ये गाना।

0: मौजूद हैं दुपट्टों और स्टॉल की दुकान पर। चलिए जानते हैं कि यहाँ पर दुपट्टे के रेट्स बड़े हैं। जी आपका नाम?
1: हरे राम
0: जी। गर्मी की वजह से कितना असर पड़ा है इनकी कीमत पर?
1: गर्मी में जो है अब होलसेलर तो बेच ही रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन हम रिटेलर हैं, फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, तो हमें तो कोई ज़्यादा पैसे देगा नहीं, तो इसीलिए बस 10 से 20 रुपए का मार्जिन है बस।
0: शुक्रिया। तो चलिए जानते हैं कि स्टॉल्स की कीमत पर कितना असर पड़ा है नौतपा की इस गर्मी में। जी आपका नाम?
2: मेरा नाम रजत वासीना।
0: जी हम देख सकते हैं कि आपके दुकान पर कलरफुल यहाँ पर स्कार्फ और दुपट्टे यहाँ पर हैं जो कि सूती के बने हैं, तो इसकी वजह क्या है?
2: मैडम गर्मी में ज़्यादा घर सूती कपड़ा ही बचा सकता है, आप कहीं घर से बाहर निकलें तो सूती ही आपको बचा सकता है। कॉटन आदमी कस्टमर मांगता है सबसे ज़्यादा, इसलिए गर्मी से भी बचा रहता और स्किन का भी केयर होता है सूती कपड़े से।
0: बिल्कुल।
2: तो गर्मी में आदमी निकलता है, इतनी धूप है आजकल और इतनी गर्मी है, भीषण गर्मी है, उससे बचाने के लिए, फेस बचाने के लिए, अपने बॉडी बचाने के लिए सबसे बढ़िया कॉटन ही माना जाता है, और जो फेस का भी ध्यान रखता है और आपकी स्किन का भी ध्यान रखता है।
0: बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही। और नौतपा भी चल रहा है यानी कि 9 दिन गर्मी काफी पड़ेगी, जो पारा है वो 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में आप अपनी दुकान कितने बजे खोलते हैं?
2: मैडम हम लोग खोलते हैं 10:00 बजे और 8 बजे तक बैठते हैं। हम लोग ना पंखा है ना कुछ है, सारी व्यवस्था ऊपर बस पेड़ है, उसी के साधन हम लोग रुके रहते हैं, वरना आदमी धूपों में ही बैठा, घर में आदमी अपने कमाने के लिए सभी कुछ करना पड़ता है जी।
0: तो ज्यादा से ज्यादा लेडीज कस्टमर यहाँ पर?
2: हमारे पास तो लेडीज ही हैं, जेंट्स जिसके पास जेंट्स है वो जेंट्स से ज्यादा हम लोग लेडीज माल बेचते हैं। हम लोगों

0: लेडीज ही ज्यादा कस्टमर आता है।
1: तो क्या लोगों से गुजारिश करेंगे कॉटन कपड़ों को लेकर?
0: कॉटन लिए आदमी अपने सेफ भी रहेगा, बढ़िया भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। कॉटन कपड़े ही पहने इस टाइम इतनी गर्मी में, और घर से थोड़ा कम ही कोशिश करें निकलने के लिए। मजबूरी हो और आदमी को किसी का ऑफिस वाले लोग हैं वो ही निकलते हैं, ज्यादातर वो ही लेते हैं। अब त्योहार चल रहा है ईद का, इस टाइम थोड़ा सा मार्केट में भीड़ भी दिख रही है, वरना आप ये समझ लीजिए बिल्कुल काम नहीं है मार्केट में, ये समस्या इस टाइम बहुत है।
1: जी शुक्रिया। देखिए सनग्लासेस के रेट पर क्या कुछ असर पड़ा है? जी आपका नाम?
2: मनोज
1: जी। क्या कुछ रेट्स पे कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है?
2: ना कमी आई है, बढ़ोतरी थोड़ी बहुत पेट्रोल डीजल की वजह से बढ़ी हुई है, वो हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं, ग्राहक के लिए वही नॉर्मल रेट है।
1: ये ग्राहक दिन के समय आ रहे हैं या फिर रात में?
2: शाम के टाइम 5 बजे के बाद दुकानदारी थोड़ी चलती है।
1: दिन के समय कमी आ,
2: बहुत कम है दिन के।
1: इसकी रीजन क्या हो सकता है? नौतपा भी वजह हो सकती
2: है? नौतपा है, वही गर्मी रीजन है, नौतपा कह लो गर्मी कह लो, दिन में आम दिनों के में काम नहीं है।
1: शुक्रिया। नौतपा के भट्टी में बरेली के बाजार का फैशन भी बदल चुका है। आजकल बाजार में निकलो तो लोग कपड़ों के ब्रांड्स नहीं बल्कि ये देख रहे हैं कि कौन कितने बेहतरीन तरीके से खुद को फुल कवर कर सकता है। महंगे कॉस्मेटिक्स और सनस्क्रीन इस 45 डिग्री में फेल हो चुके हैं और बाजार के नए सुपर हीरो बन चुके हैं हमारा देसी गमछा, सूती दुपट्टा और आंखों का काला चश्मा।

वहीं लोगों का ये भी कहना है कि बिना गमछे के इस मौसम में बरेली की सड़कों पर निकलना यानी सीधे आफत को बुलावा देना है। ये जो सिर पर सूती गमछा बांधा है ना, इसे बीच बीच में पानी से गीला कर लेते हैं जिससे सर ठंडा रहता है और आंखों पर काला चश्मा ना हो तो चकाचौंध में सड़क ही नहीं दिखती।

0: तो सुना आपने, इसे कहते हैं आपदा में अवसर। जहाँ आम कपड़ों की बिक्री सुस्त है, वहीं फीमेल के स्कार्फ और काला चश्मा बाजार पर राज कर रहा है। चलिए जानते हैं खुद ग्राहक महिला जो यहाँ पर पहुँची हैं स्कार्फ खरीदने के लिए।
1: छपा को लेकर किस तरह से अपने आप को कूल रख रहे हैं लोग, चलिए जानते हैं। जी, आपका नाम?
2: मेरा नाम सपना है
1: जी।
2: मैं बरेली से हूँ और मैं, मतलब ये नौतपा चल रहा है, इसलिए हम लोगों को गर्मी की वजह से हम लोग टाइम से, मतलब पहले नहीं निकलते हैं 12 बजे के बाद शाम के टाइम में ठंडे ठंडे में, और अपने शरीर को कूल करने के लिए हम लोग शिकंजी वगैरह इसका यूज़ करते हैं।
1: पेय पदार्थ, गन्ने का जूस?
2: जी, गन्ने का जूस है, शिकंजी है, लिक्विड वाले। हाँ, लिक्विड वाले।
1: तो इससे शरीर ठंडा रहता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल ठंडा रहता है और रिलीफ भी मिलता है, थोड़ा रिलैक्स फील होता है।
1: स्टॉल पर मौजूद लेडीज से किस तरीके से वो स्टॉल का इस्तेमाल करती हैं। जी, आपका नाम?
3: मैम प्रियंका।
1: जी, तो गर्मियों के मौसम में आप स्टॉल का इस्तेमाल करती हैं अपनी कवर करने के लिए, कितना बचाव करता है?
3: हाँ, होगा 30-50% और क्या
1: हो जाता है।
3: हाँ जी।
1: तो काफ़ी सहूलियत भी मिलती है इससे, आराम भी रहता है, पसीना भी सोखता है।
3: अगर कॉटन है तो कम्फर्टेबल।
1: कॉटन का इस्तेमाल बेटर
3: है।

0: और चलते चलते आकाशवाणी बरेली की एक प्यारी सी और छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण गुजारिश। इस भयंकर गर्मी में अपने घर की छतों और बालकनी में मिट्टी के बर्तनों में साफ पानी जरूर रखें, ताकि बेसुमान पशु पक्षियों की प्यास बुझ सके। और हाँ, सुरक्षित रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, गमछा और चश्मा पहनकर निकलना ना भूलिए। तो यूं ही कूल बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर।
1: अभी आप सुन रहे थे झुमका गिरारे आकाशवाणी बरेली पर 100.4 FM। और अब लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
0: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
0: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
0: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जे रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
0: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
0: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे कैसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत

0: सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
0: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा, बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
0: जी, चलिए श्रोताओं इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि, और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
1: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
0: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
0: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
0: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
1: जी,
0: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी, ये बात तो है।
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
0: जी,
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
0: जी अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आए और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे, ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
7: माँ, माँ।
8: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा, देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
8: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
3: हाँ।
8: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
7: अरे वाह,
3: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
7: ऐसे नहीं,
9: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
8: अरे योगेंद्र।
3: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो

0: गया है फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
1: हाँ माँ, और माँ इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
0: हाँ हाँ जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
1: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
2: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
3: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
2: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
3: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
2: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
3: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
2: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
3: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
4: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
5: जी साहब, जी साहब।
4: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
5: चलो साथियों।
3: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।

0: यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
1: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
0: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
1: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।

0: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, अब सुनिए FM रेनबो आकाशवाणी लखनऊ से
3: किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी। सार्थक PDS योजना का उद्देश्य AI, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से PDS संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। प्रदेश में प्रस्तावित 3 लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को अब रफ्तार मिलेगी। CM योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की 4th बैठक में जमीन अधिग्रहण के लिए 1 महीने का समय दिया है। उन्होंने कहा कि आगरा लखनऊ पूर्वांचल, जेवर और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जरूरी भूमि का अधिग्रहण जून अंत तक पूरा करें। CM ने प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि बेहतरीन कनेक्टिविटी औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को नई गति देगी। बैठक के दौरान बताया गया कि फरुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 55% भूमि मिल चुकी है। वहीं मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे का एलाइनमेंट मंजूर हो चुका है। इस दौरान CM ने नोएडा, ग्रेनो और यीडा क्षेत्र में 500 ई बसों के संचालन की प्रगति की भी समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने कल निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास SIR कराने का अधिकार है। ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईद उल अजहा का पर्व समाज में भाईचारा और प्रसन्नता की भावना को प्रगाढ़ करेगा। इस मौके पर उन्होंने सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना भी की। इसके साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

12:05 आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ जुड़ गई है। नमस्ते, आदाब, गुड आफ्टरनून, और आज के त्योहार की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं साथ में। और आपका अपना प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रुपा। शत्रुपा का आज सेगमेंट है कौन सा? इंटीरियर डिजाइनिंग है, बागवानी है, लेकिन इसी सेगमेंट के साथ एक खूबसूरत सा, इस चंक के साथ एक खूबसूरत सा आज हम मुद्दा टॉपिक लेकर के आए हैं। और उस टॉपिक को तो जानना है, उसके बारे में बात करनी है। बहुत खास दिन है आज, आपसे हमसे यानी कि हम महिलाओं से जुड़ा हुआ, उसके बारे में बात करनी है। बस उसके लिए आपको कुछ नहीं, एक खूबसूरत सा गाना सुनना पड़ेगा पहले। और वो खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर बस आ रहा है, आप इसे सुनिए, एंजॉय करिए। तुरंत वापस आते हैं हम लेकर वो खास दिन और खास बात।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और ये जो बात है हम आपसे करने वाले हैं, जिस बात के बारे में आपसे कुछ खास बात बताने वाले हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप अपना प्रोग्राम शत्रुपा का सेगमेंट इंटीरियर डिजाइनिंग और बागवानी आज सुन रहे हैं। आज होता है थर्सडे है आज, लेकिन एक खास दिन है, इसलिए हम बागवानी और इंटीरियर के साथ उस खास दिन को मनाते हुए, उसको याद करते हुए, उसके बारे में बात करते हुए चलेंगे और जिंदगी को बेहतर, खूबसूरत, सुकून भरा बनाने की कोशिश करते रहेंगे। अच्छा देखिए ना, महीना भी कौन सा चल रहा है, मई, और ये जो जून का महीना है ना, ये सिर्फ गर्मी अपने साथ नहीं लेके आता है, ये मौसम हमारे शरीर, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे घर के माहौल, खास तौर पर जो हमारे घर की महिलाएं हैं उनकी हेल्थ पर बहुत बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए आज का जो हमारा खास सेगमेंट डेडिकेटेड है एक खास दिन को। आज कौन सा दिन है आपको बताएं, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है आज। तो इस डे को लेते हुए हम आगे चलेंगे। आज हम बात करेंगे कि महिलाओं की सेहत, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, गर्मियों के समय में खुद को हेल्दी रखना, फ्रेश एनर्जेटिक रखना, और साथ ही हमारे घर का जो एनवायरमेंट है, इंटीरियर है, रंग है, खुलापन है, हरियाली है, ये सब हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती है। और साथ ही एक खास बात और भी जानेंगे हम कि

जो मौसम है और ये जो सेगमेंट है, ये आपस में जुड़ा हुआ क्यों है, आज ही का दिन खास क्यों है? आप ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो को, हम तुरंत आते हैं जल्दी से।

जी, और ऐसे ही गुनगुनाते बात करते करते हम पहुंच गए हैं, समय हो गया है 12:19, और प्रोग्राम शत्रुपा का ये जो सेगमेंट है, खूबसूरत सा चंक है बागवानी इंटीरियर, इसके साथ हम लेकर के चल रहे हैं आज एक खास दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर विमेन्स हेल्थ, और साथ में मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए।

जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज का एक खूबसूरत सेगमेंट, ये जो सफ़र है हमारा आज का, ये हमारी आपकी यानी कि महिलाओं की सेहत को अपने ध्यान में रखते हुए अपने घर को खूबसूरत, कूल, काम, हेल्दी, पॉजिटिव बनाने वाली बातें कर रहा है। और आगे बढ़ते बढ़ते हम ये भी बात करने वाले हैं, चाहे हरियाली हो, चाहे इंटीरियर की बात हो, जो सुकून होता है ना, वो कैसे मिलता है। हर वक्त हमें सुकून की ज़रूरत होती है और हर तरह की महिला को जरूरत होती है। और साथ ही बात करने वाले हैं कि किस तरह मेंस्ट्रुअल हेल्थ हमारे पर्यावरण और इन्वायरमेंट की स्वच्छता की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। पहले तो अगर हम ये बात करें कि महिलाओं की जो सेहत है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, गर्मी के मौसम से, मतलब गर्मी के मौसम में अगर इस बारे में बात करें तो क्या है। गर्मी के मौसम में शरीर में पसीना ज्यादा आता है, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए, इचिंग, रैशेस, बदबू, इन्फेक्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भाई। और सैनिटरी पैड को हर 4-6 घंटे में बदला न जाए अगर, तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बहुत ज्यादा जो खुशबू वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, सेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको इग्नोर करना जरूरी है। इसमें साफ पानी से वॉश करना, हार्श जो साबुन होते हैं, सोप होते हैं, उनको इग्नोर करना, उनको डिनाई करना। गर्मी और नमी मिलकर के बैक्टीरियल ग्रोथ इन्फेक्शन को बढ़ाती है। सही हाइजीन महिलाओं को कई इन्फेक्शन से बचाती है। साथ में डिहाइड्रेशन है, वीकनेस है। गर्मियों में ऑलरेडी शरीर से पसीना इतना बुरा, इतना ज़्यादा निकल चुका होता है, किचन में काम करते सिर्फ 1 घंटे में ही शरीर के कई सारे मिनरल्स पसीने के जरिए जो है बह जाते हैं। और जो हम सोचते हैं कि खाना बनाना बहुत आसान काम है, आसान काम नहीं है भाई। कमजोरी, चक्कर, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और इसको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। थकान, चक्कर, सिर दर्द, कमजोरी, शरीर में भारीपन, ऐसे जो सिम्टम्स आते हैं उसको इग्नोर तो नहीं करना है। दिन भर पानी पीना है, 4 लीटर तो पीना ही है, और नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, सौंफ का पानी, ये सब पीना है। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक से बचना है। ये तो मैं आपको बाद में भी बता सकती हूँ ना, मेन मुद्दे की तरफ लौटना है हमें। मेन मुद्दे की तरफ लौटने के लिए मैं आपको बताऊँ क्या करना है। ये खूबसूरत सा गाना और सुनना है एक। ये ब्रेक नहीं लेते रहेंगे अगर हम बीच बीच में, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। नहीं, चलिए आप ये खूबसूरत सा गाना सुनिए और हम तुरंत वापस आते हैं और बात करते हैं उस मेन मुद्दे के बारे में कि क्या है वो बात आज की खास।

बिल्कुल भी रोना नहीं है और ना ही हंसना है, बस एक काम करना है और वो ये काम है कि एंजॉय करते जाना है, हर दिन सेलिब्रेट करते जाना है, और आज का दिन है इसे भी सेलिब्रेट करना है। हर दिन कुछ ना कुछ अपने आप में कहता है, उस दिन को जानना है, उस चीज़ को, उस बात को जानना है। बस इसी तरीके से आगे चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ। सवाल क्या पूछूंगी, मैं आपको बताने वाली हूँ। सवाल पहले है, लेकिन छोटा सा ये है कि आज कौन सी तारीख है। आज 28 मई है और 28 मई को ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे क्यों मनाते हैं, और 28 मई को ही ये दूसरा खास दिन मनाने की, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, ये भी सेलिब्रेट करते हैं हम, लेकिन 28 तारीख को ही क्यों मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जाता है? इसके पीछे का एक कारण है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूं इसके पीछे का कारण क्या है।

0: कारण ये है कि ये दिन और ये महीना मीनिंगफुल माना जाता है। आज के दिन को चुनने का एक कारण खास रहा है। महिलाओं का जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लगभग 28 दिनों का होता है और आज 28 तारीख है। और ये जो माहवारी होती है, पीरियड्स होते हैं, सामान्यतः जो है करीब 5 दिनों तक ही चलते हैं। और इसी वजह से साल के 5वें महीने यानी मई की 28 तारीख को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में चुना गया, ताकि महिलाओं की सेहत, साफ सफाई और मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। और इसी समय वुमेन्स हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर खास तौर पर चर्चा की जा सके, क्योंकि महिलाओं की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। 28 मई सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि महिलाओं की सेहत, सम्मान, जागरूकता और हाइजीन के महत्व को बढ़ावा देने का, उसके बारे में अवेयरनेस का एक संदेश है। देखिए कितना खास और कितना इम्पोर्टेंट दिन है ना आज। और बात करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए, 12:30 हो गए। वैसे तो ढेर सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हो, और कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है एक खूबसूरत सा गाना हो, और गाने के बाद जो है आप वापस आएं और इसी बारे में, जो आज का हमारा खूबसूरत सा चंक है उसी के बारे में बात करते हुए आगे निकलें। और मैं सोच रही हूं कि बिना देरी के आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो अपनी यात्रा को खूबसूरत और बनाया जाए।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

बिल्कुल, ये खूबसूरत सा दिल आपका है, आपके लिए है। और ये जो हाजिरी हमने लगाई है ना, ये खूबसूरत से प्रोग्राम में और ये खूबसूरत सा चंक आज का और आज का जो खास दिन है, ये सब मिल करके एक ही बात बोल रहे हैं कि आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं आपको बार बार बोलती रहूँगी, भाई ईद मुबारक हो। और ये ईद का जो खास दिन है और आपके पास मुझे पता है दुआओं का और खुशियों का भंडार होगा आज। आपके आसपास, आपके दोस्तों में, जानने वालों में ढेर सारी खुशियां भरी होंगी। और मतलब यकीन मानिए, दूसरों को खुश देख के तो अच्छा ही लगता है, नहीं? और त्योहार एक ऐसा मौका होता है जब आप खुशियां ना चाहते हुए भी फैलाते हैं, ना चाहते हुए भी। आपका दिल नहीं कर रहा होगा ना कि सामने वाले से बात ना करूं मैं, फिर भी त्योहार ऐसा मौका होता है जब आप सारे गिले शिकवे भुला कर गले लगते हैं, गले मिलते हैं और जश्न मनाते हैं, एक दूसरे की सलामती की दुआ करते हैं। ऐसे ही अगर खुद सलामत रहे तो बाकी सबके लिए कर सकेंगे। खुद का सलामत होना बहुत जरूरी है। और ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये तो महिलाओं को डेडिकेटेड है। अब देखिए ना, आज ईद है, त्योहार है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैं तो कहूंगी कि महिलाएं निभा रही हैं घर पे। भाई जो त्योहार बन रहा है, पकवान बन रहे हैं, जो रसोई जल रही है, वो तो

सब महिलाओं से है बॉस। और मैं सुन रही थी कि जो ईदी महिलाओं को नहीं दे रहे हैं लोग, भाई कितने कंजूस हैं वो लोग, क्यों नहीं मिल रही है ईदी, मिलनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है इसके बारे में बात करते हैं। पीरियड्स महिलाओं के जीवन का एक सामान्य है, नेचुरल हिस्सा है। इस दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हाइजीन की कमी इन्फेक्शन, इरिटेशन और कई सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कारण बन सकते हैं। और अगर बात करें मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, तो सिर्फ महिलाओं की पर्सनल हेल्थ तक लिमिटेड नहीं है ये, इसका सीधा सीधा रिलेशन इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से भी है। और आज बड़ी मात्रा में सैनिटरी वेस्ट पैदा होता है, आपको पता है, अगर इस्तेमाल किए गए पैड्स या अन्य प्रोडक्ट्स को सही तरीके से डिस्पोज न किया जाए, गंदगी पॉल्यूशन बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये। इसीलिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब सिर्फ खुद को साफ करना नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंट को भी क्लीन और सेफ रखना है। रीयूजेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो आपको इस बारे में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए ये सब बहुत जरूरी बातें हैं। आप देखिए ना, हम इन खूबसूरत चंक्स में, इन खूबसूरत सेगमेंट्स में डेली बात इन्वायरमेंट की, बागवानी की, इंटीरियर डेकोरेशन की, ऐसे प्लांट्स की करते हैं जो हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए, ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अच्छे होते हैं। अब सोचिए अगर हम बाहर अपने हाइजीन का ध्यान न रखने के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी खराब कर रहे हैं, कितना निगेटिव इम्पैक्ट है भाई, कितना निगेटिव इम्पैक्ट है। मैं तो ये कहूंगी कि हमें इस बात को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है, और बस गहराई तक सोचने की ही जरूरत नहीं है, इसके बारे में बहुत बहुत विचार करने की जरूरत है। ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, और भी सीरियस मुद्दों पर बात करेंगे। हैं इतने सीरियस नहीं, मौका अच्छा है, बात सीरियस लग सकती है लेकिन जरूरी है बात, जरूरी, सीरियस से ज्यादा जरूरी बात है, इसको तो ध्यान रखना जरूरी है। एक खूबसूरत सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। अच्छा, ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, इसमें शाहरुख खान की एक्टिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है, और गाना भी पसंद है, एक्टिंग भी पसंद है, और वाइब भी पसंद है, और गाने वाला गवैया भी पसंद है। सोचिए, सुनिए, एंजॉय करिए। मुबारक हो आज का खूबसूरत दिन आपको।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्व।

0: विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ, ये है धड़कन लखनऊ की और आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ। और बात मेंस्ट्रुअल हाइजीन की हो रही थी और मैं सोच रही हूँ कि आपको फटाफट से सारी जरूरी बातें बता दूं, याद दिला दूं आज के खूबसूरत चंक में। और ये जो खूबसूरत सेगमेंट है आज का, ये आपको बार बार आपके मेंस्ट्रुअल हाइजीन का रिलेशन आपके एनवायरमेंट से कैसे है ये बता रहा है। हमने अभी बात की कि एनवायरमेंट का रिलेशन आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन से कैसे है, लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर देखें, पर्सनली अगर जाएं, तो आपका वॉशरूम बाथरूम मेंस्ट्रुअल हाइजीन से कनेक्टेड है और इंटीरियर में भी तो आता है। आपका वॉशरूम भी तो खूबसूरत होना चाहिए, बाथरूम भी तो अच्छा दिखना चाहिए, वाइब अच्छी आनी चाहिए वहां से भी। ये नहीं कि स्टिंकी है, बहुत ही खराब दिख रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, ये भी तो नहीं होना चाहिए। वो भी जिंदगी का अहम हिस्सा है, न जाने दिन भर में कितना समय हम वहां बिताते। खैर, आपकी हमारी मेंस्ट्रुअल जो हेल्थ होती है वो बाथरूम हाइजीन की बहुत बड़ी उसमें भूमिका होती है। अगर वॉशरूम साफ ना हो, वेंटिलेशन सही ना हो और हाइजीन मेंटेन ना किया जाए तो इन्फेक्शंस का हब बन सकता है बाथरूम। और बाथरूम कैसा होना चाहिए? साफ, सूखा, अच्छा, वेंटिलेशन वाला, हल्का, नेचुरल फ्रेग्रेंस वाला, और उसमें लाइट भी अच्छी खासी होनी चाहिए। रेगुलरली क्लीन्ड होना चाहिए। ये है कि डस्टबिन जो आपका होना चाहिए हमेशा ढक्कन वाला ही लीजिए। अगर ढक्कन वाला डस्टबिन आपका नहीं है तो आप कोशिश करिए कि ले आइए ढक्कन वाला, और ऐसा ले आइए जो पैर से आप उसको प्रेस करके ओपन कर सके। वो दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है और उसके बाद वो ढक्कन बंद रहता ना, हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सैनिटरी प्रोडक्ट्स का आपको हाइजीनिकली डिस्पोज करना है और ये सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनके बारे में खासकर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इनका जो डस्टबिन या इनका जो बैग आप बनाएं वो अलग बनाएं डिस्पोज करने के लिए। जो भी आपके सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कप्स होते हैं, पैड्स होते हैं, इनको आप अलग से पेपर में रखें और अलग सा ही उसकी पैकिंग आप डिस्पोज करें। उसको किसी भी गीले कचरे में या खाने वाली चीजों के साथ या जो भी मतलब इजी वेस्ट होता है उसके साथ ना रखें। इतने तो आप अवेयर हैं, हैंड वॉश, साफ पानी, फ्लोर्स, कॉर्नर्स, ये सब रेगुलरली साफ आप करते ही हैं। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और साथ में बाथरूम के इंटीरियर की अगर बात करें और आपकी वेलनेस उससे कैसे कनेक्टेड है इसकी बात करें, तो आज इंटीरियर डिजाइनिंग सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि हेल्थ और कंफर्ट से भी जुड़ चुकी है। हल्के रंगों वाला एयरी क्लीन बाथरूम आपको, हमको, मतलब हम सभी महिलाओं को मेंटली कंफर्टेबल महसूस करवाता है। अब देखिए कितना चिड़चिड़ापन होता है, नहीं गर्मी है, ऊपर से इतना पेन है, क्रैम्स है, और पीरियड है, पसीना है, इरिटेशन है। इंडोर प्लांट्स भी फ्रेशनेस बढ़ाते हैं, अच्छी खुशबू स्ट्रेस थोड़ा कम कर देती है। साफ और ऑर्गेनाइज्ड जो स्पेस होता है हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेवेंडर, लेमन, सैंडलवुड जैसी जो माइल्ड फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं मूड को ठीक रखने में। और जब भी हम आप महिलाएं हाइजीन का ध्यान रखती हैं तो एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं, घर में साफ, हेल्दी, पीसफुल माहौल बनाते हैं, तब उनकी फिजिकल और मेंटल वेलनेस दोनों बेहतर होती है। स्वच्छ स्वस्थ महिला स्वच्छ वातावरण और साफ सुथरा खुशहाल हेल्दी जीवन बनाती है। अच्छा देखिए, इन सारी बातों के साथ मैं आपको याद दिलाना भूलूं, आज तो खास दिन है, त्योहार का दिन है, लेकिन रेगुलर डेज पे भी आप, चाहे मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात हो या मेंसिस के डेज के दिनों की बात हो या नॉर्मल डेज के दिनों की बात हो, आपने नोटिस किया है कि काम से चिड़चिड़ापन, ये करना है, वो करना है, घर का इतना सारा काम करना है, आप अपना हुलिया कैसा बना के रखती हैं? अगर आपको अपना हुलिया ठीक बना के रखने को कहा जाए तो और गुस्सा हो जाते हैं, क्या मैं साड़ी पहन के काम करूं सारा, या बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिसमें और चिड़चिड़ापन आता है। पर मैं आपको बताऊं, सारी

चीजें हमारी हेल्थ से ही तो जुड़ी हैं। अगर सुबह उठ करके 2 घंटे काम कर रहे हैं तो उसमें से 5 मिनट अगर अपने आप को ठीक करने में दे दें तो क्या बुराई है। ढेर सारी बातें हैं मुझे आपसे करने के लिए, लेकिन देर हो रही है जाने की। जाना है, अगले प्रोग्राम में जंप करना है जो आपका अपना प्रोग्राम है, खूबसूरत है। लेकिन जाने से पहले थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं। आयरन की कमी हो सकती है इस दौरान, हमें शरीर से खून बहुत ज्यादा बहता है भाई, तो विटामिन सी वाली चीजें आप ज्यादा लीजिए। आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा करता है, नींबू, आंवला, संतरा, ये सारी चीजें। कॉटन के कपड़ों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस समय। सिंथेटिक कपड़े थोड़े से डिस्कम्फर्ट बढ़ाते हैं, स्वेटिंग, इचिंग, रैशेस हो सकते हैं। कॉटन से हवा इजीली पास होती है, पसीना एब्जॉर्ब होता है, स्किन इरिटेशन कम होती है और शरीर को कूल कंफर्टेबल रखता है। लूज फिटिंग क्लोथ

एक्सपेक्टेशन कम होती है और शरीर को कूल कंफर्टेबल रखता है। लूज फिटिंग क्लोथ्स, हल्के कलर्स, ब्रीदेबल फैब्रिक्स, कंफर्टेबल कपड़े मूड को भी अच्छा करते हैं, शरीर को कंफर्टेबल रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी फील होती हैं। ढेर सारा ज्ञान हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊं, त्योहार की बधाई के साथ, शुभकामनाओं के साथ साथ आपको ये बार बार बोलूंगी भाई कि हर दिन अपने आप को 5 से 10 मिनट उठने के बाद दीजिए, अपना चेहरा ठीक करिए, अपने बाल सही करिए। ये क्या जरूरत है, माना कि काम बहुत ज्यादा है, लोड बहुत ज्यादा है, पर आपको मंजोलिका बन के रहने की जरूरत नहीं है। खैर, ढेर सारी बातें और भी करेंगे हम, लेकिन आप ट्यून इन करके रखिए, खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेजती हूँ। और आज प्रोग्राम शत्रुपा के खूबसूरत सेगमेंट इंटीरियर डिजाइनिंग और बागवानी, जिसमें हमने बात करी थी महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, क्योंकि आज है 28 मई वुमेन्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है। और इसी के साथ वाइंड अप करते हैं आज का प्रोग्राम और अगले में करते हैं जंप।

0: 104.4 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, और दोपहर के बज चुके हैं 1:19, और अब समय है आपके अपने कार्यक्रम का, अनुरोध गीत का। तो लीजिए सुनिए अनुरोध गीत। और कार्यक्रम का जो पहला गाना है वो फिल्म परम सुंदरी से है, सोनू निगम की आवाज कृष्णा कली के साथ, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं।
1: परदेसिया है तेरे प्यार में जब से।
0: ये हमारे श्रोता छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, रियांश, ज्योति और गुड़िया ठाकुर। ये है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, पीर बहोड़ा, बरेली से आजाद खान, दिलशाद, मुस्तकीम, तबस्सुम, मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से फजरुद्दीन भाई, अबरार अफजाल और राम प्रसाद शर्मा। और अब सुनते हैं आप सभी की पसंद का गाना, सोनू निगम और कृष्ण कली की आवाज, फिल्म का नाम परम सुंदरी।

साजन फिल्म से आपने गाना सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। और इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते थे, ये हैं मोहल्ला हलवाईयान श्रीकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। दिल्ली के मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित हैप्पी। दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी प्रांजल। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। और अब आप सभी के अनुरोध का गाना राहत फतेह अली खान की आवाज, फिल्म का नाम सिम्बा।

और बारी अगले गाने की, जो आप सभी के अनुरोध पर फिल्म का नाम है नाड़ी, उदित नारायण साधना सरगम की आवाज। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। सेक्टर 67 मोहाली से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, नवनीत, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिंद्रा बजाज और साहिल, शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा, नईम अदीम और असद, लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, अनस आरू साहू, और ये है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, शुएब खान, साइमा खान, मुस्तबा खान, आफिया खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनके परिवार के सदस्य। और आप सुनते हैं आप सभी के अनुरोध का गाना, फिल्म का नाम अनाड़ी, उदित नारायण साधना सरगम की आवाज़।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर, और साथ ही इस समय प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत भी आप सुन रहे हैं, और बारी है अगले गाने की। ये है आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम सीता और गीता, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहब्बत इकबाल, सदारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, परी महल कासगंज से हैं आबाद खान, नबील आरफा और इल्मा, मॉडल टाउन करनाल से ये हैं मीनाक्षी तिवारी, सुधीरन तिवारी और सुनीता और संदीप। साथ ही ये हमारे श्रोता पीर बहोड़ा बरेली से आज़ाद खान, दिलशाद, मुस्तकीम और तबस्सुम। सुनते हैं आप सभी के अनुरोध का गाना, फिल्म का नाम सीता और गीता, आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ में।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर, और आपने ये गाना सुना फिल्म सिर्फ तुम से, जिसमें आवाज उदित नारायण की। और अब बारी अगले गाने की।

फिल्म का नाम गुरु, जिसमें आवाज है एआर रहमान और मुर्तजा की। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा और शिवांश, तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, जिला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खेम से। और ये है गांव लोहरडा, जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन मोहन, सुधीर, भुवनेश्वरी, करावल नगर, दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी, वीरपुर पोस्ट, विलसड, अलीगंज एटा से मिस्त्री विपिन कुमार शाह के सपना, रविन्द्र, राजेश मिस्त्री, रमेश चंद, राजीव टेलर, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ, सुजाता, संगमित्रा, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा और इनके मम्मी पापा के अलावा परिवार के सभी सदस्य। बरेली कोटा मक्खन से अरफिरोज अंसारी और फारूक अंसारी। और अब आप सभी के अनुरोध का गाना, फिल्म का नाम गुरु, ए आर रहमान, मुर्तजा की आवाज।

समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम अनुरोध गीत, और बारी अगले गाने की अलका याग्निक, अभिजीत की आवाज़। फिल्म का नाम है यस बॉस, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बास चौखुंडी बुलंदशहर से हैं। इनके परिवार के सभी सदस्य भी इसमें शामिल हैं, और ये हैं मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या इंदिरा कॉटेज, तलीताल नैनीताल से, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण मुनीश और राहुल, ये हैं जालंधर से संदीप ज्योति मन्नत, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौगराया जालंधर से, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा अनस और रेहान, पारसमणी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, और ये हैं मध्य प्रदेश जिला भिंड से बुद्ध लिसनर्स क्लब से अनामदर्शी विश्वमित्र राजकुमारी और सिद्धार्थ कुमार और एंजल। सुनते हैं आप सभी की अनुरोध का गाना, फिल्म का नाम यस बॉस, अभिजीत अलका याग्निक की आवाज।

यस बॉस फिल्म से आपने ये गाना सुना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में, और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर। और अब जो गाना है उस गाने की बारी है जो कि है फिल्म डर से, जिसमें आवाज लता मंगेशकर और हरिहरन की। इस गाने को आपको सभी सुनना चाहते हैं। सेक्टर 67 मोहाली से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, नवनीत, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, ये है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नासमा बेगम, रियाज, रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार, मोहम्मद आसिफ, जसपुर उत्तराखंड से गैगटा, काशी धर्मपुर बरेली से फहीम खान, सदीक अली, साबिया, राम प्रसाद, धुरीनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह, फजलुद्दीन भाई अब्रार और अफजाल, साथी कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी और दुबिया, निवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी, प्रांजल, शेरपुर कला, गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय, ये है मोहल्ला तलैया, उल्ला जागीर से फजरुद्दीन भाई अब्रार अफजाल और रामप्रसाद शर्मा, 67 सेक्टर मोहाली से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। अब सुनते हैं फिल्म डर का ये गाना हरिहरन लता मंगेशकर की आवाज में।

लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज, फिल्म का नाम डर। ये गाना आपने अभी सुना और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत। और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायणपुर इंगले सोपान आशीष मुहरकर, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा टिल्लू नायक और मधु नायक, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी भानुप्रकाश, गीतिका, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल ईशान, पूजा परिहार, डॉक्टर अरुणचंद शर्मा, डॉक्टर रेणुका देवी और उनके साथी विराटनगर नेपाल से हैं, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना आशीष चैतन्य, मेघा मस्कीन, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु रिधान और तुलसी मस्कीन, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ एमपी से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा सोना

वाली सोनम आशीष और ये हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब लुबना मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर आलिया अंसारी रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हिमलता हिना हर्षित और खुशी ये है पीपर पारा पुलचवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन और वंशिका साथ ही सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति सविता घनश्याम हरी शंकर रत्नेश कुमार प्रशांत कालापारा से रामचंद्र गुप्ता पांडे राम रजवाड़े और आप सभी के अनुरोध पर ये गाना सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज़ फिल्म का नाम चोरी चोरी चुपके चुपके है।

सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, सविता घनश्याम, हरी शंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम रजवाड़े, और आप सभी के अनुरोध पर ये गाना सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाज, फिल्म का नाम चोरी चोरी चुपके चुपके।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और दोपहर के 2 बज चुके हैं और मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार तिवारी जो कि आ चुके हैं स्टूडियोज में और आगे के प्रोग्राम उनके साथ।

श्रोताओं ट्यून किया है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और अभी आप सुन रहे थे नीतू त्रिपाठी के साथ प्रोग्राम अनुरोध गीत। दोपहर के 2 बज रहे हैं और समय हो गया है प्रोग्राम रसरंग का, और आप जानते ही हैं कि कार्यक्रम रसरंग में लेकर आते हैं हम आपके लिए गैर फिल्मी संगीत का वो गुलदस्ता है ये रसरंग, जिसमें शामिल करते हैं हम उन सभी फूलों को जो संगीत में गैर फिल्मी है। आइए आगाज करते हैं कार्यक्रम का इन मधुर गीतों के साथ।

0: मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर के युगल स्वरों में शागिर्द फिल्म का गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

हो रब्बा खैर।

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में लाड साहब फिल्म का ये गीत था। हसरत जयपुरी का लिखा, तर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: फिल्म औरत में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला रफी ने। श्रोताओ, सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: और आरती कैसी हैं आप?
1: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ही ठीक है, क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत।
0: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है।
1: हाँ ये बात भी है,
0: इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करना है, बस
1: सोचना ही नहीं है कि हाँ। गर्मी है, अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है
0: तो तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना।
1: तो है।
0: क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है।
1: बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए।
0: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना। और आज के विषय बता दें।
1: आज के विषय है हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर करते हैं, क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं है या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं, कितना करते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर किसके बारे में,
0: के चल्लमल नारियल अम्मा, उनकी बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, इसमें हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
1: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़े से पहले मैं खुद भी फंसी
0: गई थी
1: बिल्कुल, और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ और एक लेवल दो लेवल, मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पहुंच जाऊं, फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है,
0: और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा, यानी बकरीद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत जरूरी टिप्स है आज की,
1: ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो वाईफाई होता है ना वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है। तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
0: और आप क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: तो भाई
1: सच में बहुत महके हुए से यार, कभी देखो ना किसी को कि कोई अपनी फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा सी रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज उसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली है, कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
0: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरी ईद या ईद उल अजहा की हम
1: बहुत बहुत
0: मुबारक।
1: मुबारकबाद देते हैं जी।
0: जी, और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है, ये त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
1: जी बिल्कुल। और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है, और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं, और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
0: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं
1: जी
0: देते हैं।

0: हाँ तो सुनाली, कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये.
1: जब है ना, जब कोई भी त्योहार हो तो अलग ही एक ना आनंद की अनुभूति होती है ना,
0: बिल्कुल.
1: फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है।
0: सच में.
1: वैसे कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश खुश रहते हैं, हमें ना उनके
0: बिल्कुल,
1: काम
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है. कुछ
1: जी
0: ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके जैसे हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं, या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए. हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं.
1: जी
0: आज हम बात करेंगे
1: के चेलम्मल
0: जी.
1: जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है। और चेल्लम्मल दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली है, और चेल्लम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, यानी जैविक तरह की उन्होंने
0: जी
1: खेती की।
0: बिल्कुल. और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं. इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे.
1: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है।
0: बिल्कुल. और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं. वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं. उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है.
1: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं जहां वे नारियल के पेड़ उगाती है। उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों की फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
0: बिल्कुल.

0: कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रही, कितनी अच्छी बात है। और श्रीमती चेल्लम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए। वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए।
1: और चल्लमल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चल्लमल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है।
0: बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए,
1: जी
0: तो वो परागण के लिए कि बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी,
1: देखिए।
0: तो उसके लिए भी उन्होंने कितना किया, तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षा की तरीके से एक तरह की। और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए, कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
1: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं और श्रीमती चिल्लमल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
0: बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है।
1: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।
0: बिल्कुल, और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
1: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित।
0: पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं रोती है।
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, तो वो कला को अपने निखारना चाहिए।
1: और अब एक संदेश सुन ले।
0: बिल्कुल,
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
0: बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखिया वे भी आएंगे, पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल
1: हाँ बिल्कुल, वो
0: रहा
1: तो पता चल ही जाता है चेहरे को देख के।
0: है कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75%
1: हाँ ये
0: आए
1: तो होता है, ये तो होता है।
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा। पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ
1: सौ
0: बोलना
1: झूठ बोलने
0: पड़ता है।
1: पड़ते हैं।
0: और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो। और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं,
1: सही
0: क्योंकि
1: बात है,
0: उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है
1: नहीं
0: उन्हें।
1: उनको लगता है कि नहीं अब हमारे साथ, जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता है नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो
0: जी
1: उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ।
0: जी एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं। जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने, मेहनत करने की ललक कम हो जाती है। उनके प्रयास की तारीफ करें परिणाम की नहीं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है, कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस

0: को पूरा करने में कितनी मेहनत की, प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं। इससे बच्चों में लगन बढ़ती है। और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा पर बहुत तेज हूँ, करता कुछ नहीं है। तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है, उन्हें
1: बिल्कुल
0: सिखाए। और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं है, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और लेकिन उस चीज को लेके इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से, तो बच्चे का जो मनोबल है ना, वो जो उसकी ललक होती है वो कम
0: जी
1: हो जाती है। इसलिए एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े। तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए
0: क्या बात है।
1: ताकि वो और आगे कर सकें।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती है, तुमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करे और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखे। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाए, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है, और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए, उनकी आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूं, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती, कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें हैं वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं, और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं, और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है, उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की बजाय अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा, कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
0: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपनी जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखे कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक
1: सच
0: के
1: में।
0: बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सहेली सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना, कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें, तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और
0: जी
1: वो भी सोचेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है
0: और
1: इस
0: अब
1: तरह
0: क्या
1: से।
0: करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: आरती
1: दिल की बात.
0: सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये
1: जी
0: बहुत सही बात लिखी है
1: बिल्कुल.
0: ना।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता, क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते. और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं. सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है. इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं. और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत, ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए, न कि सिर्फ खुश करने के लिए. इससे वो जीवन में सच्चाई, आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं.

0: साथ लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें, ना कि उनके परिणामों पर। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है, उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैये की जरूरत होती है, जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो, जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए, जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल,
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करे, जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताए कि भैया इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें
1: जी,
0: उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते।
0: कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनको देखिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए, ऐसा क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है, उनकी आदत भी यही होती है कि वो सोचते हैं हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है। तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी है ना, बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियां होती है, पापा होते हैं, घर के लोग है ना, छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं। ये आज का युग जो है ना, तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे मोबाइल कंप्यूटर वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय माध्यम है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं, और साथ ही बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम को खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गवा देते हैं।
0: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से एक मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल, और श्रोता जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं एक मानसिक बीमारी बन जाती है, जो मकड़ी के जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदि हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। यह दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। और जवाब

0: अब बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं, और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने
1: बिल्कुल
0: लिखा है।
1: बिल्कुल। और एक और जोश होता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है, और उसमें भी अरे ये गेम मतलब जो गेम है, जो जो बाहर जब गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर, तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल, वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं,
0: जी
1: और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पर भी बुरा असर
0: और
1: पड़ता
0: ये
1: है।
0: जो गेमिंग जो है ना, जो होते हैं ना, इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं। पानी में गिर जाए तो भी
1: तो
0: उन्हें
1: भी
0: कुछ पॉइंट्स
1: हाँ
0: अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं।
1: जी
0: तो ये बच्चे, और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनके जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है।
1: बिल्कुल
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, दीपा
1: हाँ जी कोई
0: सॉरी
1: नहीं।
0: समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाए, या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करें या किताबें पढ़ें।
1: बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के जो जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं, उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है, और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेल कूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए, ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुने
0: सुनते हैं गीत।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाद कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रे ना किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रे ना किसी के
1: हम न रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।
1: अच्छा जी मैं हारी चलूँ जाना,
0: देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना।
2: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है, लोग देर रात तक जाकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं, कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है, कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं।
3: बहुत से ऐसे गेम आ गए खतरनाक
2: जी।
3: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
2: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
3: सही बात है। फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
2: नहीं नहीं नहीं, पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है तो बात समझ सकते हैं, पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना वो सिर्फ सीमित मात्रा तक,
3: वो मनोरंजन तक ही रहना चाहिए, बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए
2: जी। और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना चाहिए?
3: जिंदगी की रफ्तार, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई,
2: धीमी हो गई,
3: क्योंकि बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि हमें उसको करना होता है, लिखना होता है या कुछ हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है, तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर है तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है, तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है, या हम अपने जैसे कि हम लोग जब देखते हैं सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं, तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है
2: जी।
3: तो कभी कभी होता है ना कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
2: यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं, उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, जिससे स्पीड,
3: कोई आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है, थोड़ी दूर तक है, तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकते हैं, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपके वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
2: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन एप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
3: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना तो फिर उसकी आपके फोन की स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
2: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे एप्स खुले हुए हैं, अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का करेंगे की टाइम, तो सारे अगर एप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है,
3: तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती, तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर ही लगाएं, जैसे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको।
2: और राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें, यदि 2 एंटीना है तो एक को वर्टिकल इन्हें खड़ा रखें और दूसरा एंटीना को हॉरिजॉन्टल इन्हें आड़ा रखें, यह सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
3: बिल्कुल।
2: साथ ही एक है ना फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए।
3: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सके वाईफाई, और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
2: अब एक गाना सुन ले।
3: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये उसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है, और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। या जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीज़ें जो हैं जो हमने अभी बताई वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उनका कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या
0: अरे
1: बात है। तो
0: देखा,
1: पढ़ाई हो।
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे दोस्त होते हैं जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं,
0: बिल्कुल
1: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, उसको ध्यान रखें, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे,
1: जी। और
0: क्योंकि
1: अभी
0: अति हर चीज के लिए भी
1: अब
0: बुरी होती
1: बिल्कुल
0: है।
1: अति सर्वथ वर्जित, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें
0: बिल्कुल
1: कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें,
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो आरती, आज की
1: आज की
0: मुलाकात
1: मुलाकात बस
0: बस
1: इतनी।
0: इतनी, और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4 बज रहे हैं और अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 4 बज रहे हैं और आप जानते हैं कि आकाशवाणी के दीवाने एक सीरीज लेकर आए हैं हम आपके लिए, जो कि डेडिकेटेड की है हम लोगों ने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर। तो आज इसी कड़ी में हमारे मेहमान हैं जो हमें आपने विचारों से अवगत कराएंगे। आज सतीश अनेजा, जो कि हमारे नियमित श्रोता भी हैं और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रेडियो के दीवाने में, आकाशवाणी के दीवाने में

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के दीवाने जो कि एक सीरीज है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, तो सतीश अनेजा जी के विचार हम तक पहुंचेंगे कल, यानी कि कल आप सुनेंगे आकाशवाणी के दीवाने सीरीज में सतीश अनेजा जी को। आज अपने विचारों के साथ हमारे समक्ष जुड़ रहे हैं महेश कश्यप जी, तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दीवाने में महेश कश्यप जी को।
1: नमस्कार साथियों, मैं महेश कश्यप बीसलपुर जनपद पीलीभीत से आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी के श्रोतियों श्रोताओं और आकाशवाणी परिवार को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी से बचपन से ही लगाव रहा है, आकाशवाणी को सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। आकाशवाणी के विभिन्न प्रोग्राम के साथ में ही हमने इतना अपने जीवन का सफर व्यतीत किया है। यूं तो कई आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम हम सुनते हैं, लेकिन आकाशवाणी बरेली से विशेष लगाव रहा है। दिन की शुरुआत भक्ति आराधना कार्यक्रम के साथ में होती है। अगर महिलाओं के कार्यक्रम की बात करें तो नारी संचार कार्यक्रम महिलाओं के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारी पूर्ण कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। बच्चों के लिए अंकुर कार्यक्रम भी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजन पूर्ण होता है। युववाणी कार्यक्रम में युवाओं के लिए नई नई जानकारी मिलती है, जो कि बहुत ही रुचिकर बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी युवाओं के लिए प्रदान की जाती है युववाणी कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए भी कृषि कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित किए जाते हैं। किसान बाड़ी कार्यक्रम जो है आकाशवाणी बरेली से प्रसारित किया जाता है, जो बहुत ही जानकारी पूर्ण होता है कृषि के संबंध में। जानकारी प्रद कार्यक्रम के साथ में आकाशवाणी बरेली मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखता है। अनुरोध गीत कार्यक्रम हो गया और हेलो बरेली कार्यक्रम हो गया, ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो सभी के दिलों पर राज करते हैं। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमें शिक्षा मनोरंजन सभी कुछ प्रदान करता है। आकाशवाणी ये बराबर भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन के कार्य जो कार्य हैं वो आकाशवाणी के साथ में बगैर किसी डिस्टरबेंस के निपटते हैं, क्योंकि आकाशवाणी एकमात्र एक ऐसा संसाधन है जिसे मतलब रेडियो जैसे कि हमने चालू करके रख दिया और अपना काम भी करते जा रहे हैं, रेडियो को भी सुनते जा रहे हैं, तो हमारे काम में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है आकाशवाणी। आज के परिवेश में यूं तो मनोरंजन के कई साधन है, सूचना प्रदान करने के कई साधन है, इंटरनेट के कई सोर्स उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आकाशवाणी की बात की जाए तो आकाशवाणी के जैसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। आकाशवाणी के 90 वर्ष गरिमामय पूर्ण होने पर आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को, आकाशवाणी परिवार को एक बार पुनः मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।

0: यह है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 8:05 हो गए हैं और उससे ज्यादा भी हो गए अब तो। तो श्रोताओं, अब लेकर हाजिर हैं हम प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये वो कार्यक्रम है जिसमें आपकी मन की बातें हम तक पहुंचती हैं एक विषय के साथ। वो विषय होता है हमारे और आपसे जुड़ा हुआ। आज कार्यक्रम का हमारा जो विषय है और हमारे सभी श्रोताओं से की गई बातचीत है वो सुनेंगे अब आप इस कार्यक्रम में। सुनवाएंगे हम आपकी पसंद के गीतों को भी। फिलहाल कार्यक्रम का आपको विषय बताए देते हैं। आज कार्यक्रम का हमारा विषय रहा कार्यक्रम में कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए आप अपने जीवन में सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम को, सुनते हैं हमारे श्रोताओं से की गई बातचीत को। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और श्रोताओं, आज का दिन है खास। आज का दिन खास इस मायने में है क्योंकि आज हम लोग मना रहे हैं ईद उल अजहा का त्योहार और साथ ही साथ हर दिन हम प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ जो एक प्लेटफॉर्म है आपकी बात को साझा करने का प्रोग्राम में उसे हम लेकर आते हैं आपके लिए एक विषय के साथ। और आज का जो विषय है श्रोताओं बहुत ही रोचक है और प्रासंगिक है। ये विषय जो है आपके जीवन में, हम सबके जीवन में ऐसा मोड़ कई बार आता है और वो मोड़ दिखाता है कि हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी महत्वपूर्ण हैं जिसके लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो आज का हमारा विषय है आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिसके लिए आप सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। और इन्हीं सब विषयों के साथ आइए देखते हैं फोन लाइन पर हमारे कौन से श्रोता हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, हमारी कौन सी श्रोता बात कर रही हैं और कहां से? सिम्मी। तो सिम्मी जी क्या करती हैं? अच्छा अच्छा, तो सिम्मी जी, आज का हमारा कार्यक्रम का विषय तो जैसा हमने आपको बताया ही अभी, आपने जाना होगा और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी है कि आप अपने जीवन में जो है ऐसा कौन है जिसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आज ईद उल अजहा का त्योहार जो मनाया जा रहा है जिसको बकरीद भी कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना है और ऐसा प्रचलित है इस कार्यक्रम के बारे में, इस त्योहार के बारे में कि जो है हमारी जो सबसे प्रिय चीज होती है वो उसको भी कुर्बान करने से आदमी जब नहीं हिचकता है तो ये दिखाता है कि त्याग की भावना, हमारा दृढ़ विश्वास, हमारा दृढ़ निश्चय किसी काम के प्रति है ना। तो कुल मिलाकर के इसका सोशल मैसेज तो यही जाता है इस त्योहार का, क्यों? तो आपने कैसे मनाया इस त्योहार को?
1: हमने भी बहुत ही अच्छे से मनाया, हमने कुर्बान कराई है।
0: अच्छा,
1: और मेहमान भी आए हैं।
0: अच्छा,
1: मतलब अच्छे से मनाया है।
0: अच्छा,
1: मतलब कोई भी त्योहार है अच्छे से मनाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, त्योहार होते ही है हमारे जीवन में रंगों को घोलने के लिए और बहुत सारे सुंदर सुंदर रंग प्रभु ईश्वर सबने दिए हैं हमें और आज आवश्यकता है हमें इन सब चीजों को सहेज के रखने की। तो सिम्मी जी, आपने हमें फोन किया है, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हमें गाना सुना देना।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: यहाँ से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: हमारी जनगणना हमारा विकास।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, हमारी कौन सी श्रोता बात कर रही है?
3: आंवला से बात कर रही हूँ।
2: कौन आंवला से? आपका शुभ नाम क्या है?
3: सुल्ताना
2: हंसारी। सुल्ताना से याद आया, हम लोग एक जब अपने स्कूल के दिनों में जो है होते थे तो एक प्ले हुआ करता था डाकू सुल्ताना का।
3: तो मेरा नाम पसंद नहीं
2: है। नहीं, आप समझिए, वो डाकू सुल्ताना जो थे, वो जो है चरित्र अभिनय उनका जो था, वो हमेशा मजलूमों की आवाज बुलंद करना और ऐसा, मतलब इस तरीके का था कुछ। तो सुल्ताना नाम में, और वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा

0: कि नाम में क्या रखा है ना।
1: जी
0: इस असली पहचान इंसान की काम है ना, उसके उसके बोले गए शब्द हैं। क्योंकि जब जीवन में कुछ नहीं रह जाता, खाक रह जाती है, तो रह जाती है आपके पीछे आपके द्वारा बोले गए आपके शब्द, आपके द्वारा पीछे किया गया व्यवहार जी, है ना। तो सुल्ताना जी, आज हम लोग मना रहे हैं जो है ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार। इसी उपलक्ष्य में मतलब इसको समर्पित आज का हमारा विषय है कि आपके जीवन में यानी कि सुल्ताना जी के जीवन में ऐसा कौन है जिसके लिए वो सब कुछ कुर्बान कर सकती हैं।
1: पहले तो मेरे पापा थे जो अब है नहीं
0: जी,
1: उनके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती थी
0: जी,
1: और अब मेरी फैमिली है, बच्चे हैं।
0: अच्छा जी, सही बात है। हम लोग अपने जीवन में सारे ही काम करते हैं, अपने परिवार, अपने माता पिता, और माता पिता से ऊंचा दर्जा तो हम लोग कहते हैं समय समय पर कि अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, कि सबसे पहले जो है जो व्यक्ति अपने माता पिता की पूजा वंदना करता है, उनका आदर करता है, सम्मान करता है, तो अगर आपके नजरिए से कहें तो फिर उसको हज की भी जरूरत नहीं है। मतलब उतना स्वभाव उसको वैसे ही मिल जाएगा अगर वो अपने माता पिता की जो है वो सम्मान करता है, तो उसके बराबर है उसका स्वभाव, है ना। तो अपने माता पिता का सम्मान, उनका आदर, उनका प्यार, उनकी इज्जत, तो अपने आप में जो है ये आपके बहुत सारी जो है पुण्य फल अर्जित करने वाला होता है ना। तो आपने जो है आज के इस, अच्छा अपने पापा से बहुत प्यार करती थी आप,
1: उन्होंने
0: अच्छा
1: करा।
0: अच्छा सुल्ताना जी, वैसे भी हमने ये देखा है, आप इस बात से इत्तेफाक रखती होंगी कि बेटियां जो हैं वो अपने पापा की बहुत लाडली होती हैं, नहीं?
1: जी हाँ, पापा की परी होती
0: है। तो आपके पापा ने आपको जो है वो बड़े नाजों से पाला, अब आप अपने परिवार में हैं, है ना
1: जी, हाँ।
0: आपके आपका अपना गृहस्थ जीवन है, तो आपके पिताजी जो है वो जहाँ भी हैं उनकी रूह तक ये आवाज पहुंचे कि भाई आप उनको इतनी शिद्दत से याद कर रही हैं, आप इतने प्रेम से जो है उनको याद कर रही हैं, और वो जहाँ भी हो खुश हो, और वो देख के खुश हो रहे होंगे कि आज उनकी गैर हाजिरी में आप उनके दी गई सीख को, उनकी शिक्षा दीक्षा को इतने प्रेम से याद कर रही हैं, है ना। तो आपकी जो है पिताजी जहाँ भी हो उनको खूब सुकून पहुँचे आज,
1: क्योंकि मैंने माँ का भी प्यार दिया और पापा का भी, दोस्त का भी,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सब कुछ खेल लिए, खेलते थे, पूरे करते थे, माँ की कमी उन्होंने कभी महसूस ही नहीं दी, मगर उनकी कमी बहुत लगती है,
0: होता ही है जीवन में,
1: लेकिन पापा के बराबर मेरे लिए कोई नहीं होगा।
0: बिल्कुल, और आपने बताया भी कि आप तो पापा की परी थी, है ना। तो सुल्ताना जी, आपने आज हमें फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: पापा के लिए कोई गीत सुना दीजिए।
0: आपको आपकी पसंद का आपके पिताजी को समर्पित सुनवाते हैं हम ये गीत।
2: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: और श्रोताओं देखते हैं, आइए हमारे साथ फोन लाइन पर कौन जुड़ रहे हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, हाँ हमारे साथ कौन से हमारे श्रोता है फोन लाइन पर?
2: हाँ, सत्येंद्र सिंह बात कर रहा हूँ सर।
1: सत्येंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: ग्राम चनेटी।
1: चनेटी से सत्येंद्र जी, आज हमारे कार्यक्रम में जो मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो मुद्दा है आपकी लाइफ, यानी सत्येंद्र जी की लाइफ में ऐसा कौन है जिसके लिए वो सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं?
2: इसलिए मैं कहना चाहूंगा सर कि जो हमारे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं
1: जी,
2: जो हमारा भला चाहते हैं
1: जी,
2: उनके लिए ही हमें सब कुछ करना चाहिए। क्योंकि आजकल
1: जी
2: का जो समय है, वो आदमी जो है अपना ही भला चाहता है।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है।
2: और वो ये नहीं चाहता, वो कहता है पहले मैं हूँ उसके बाद सारे कुछ है। लेकिन हमेशा ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए कि दूसरों का भला करने वाली थिंकिंग होनी चाहिए
1: जी।
2: हमारी सोच जो है दूसरे को भला करे
1: जी,
2: और उसके बाद अपना भला हो। और हमेशा ऐसे रखना चाहिए कि समाज में ऐसा संदेश भी देना चाहिए, ऐसे लोगों को जागरूक भी करना चाहिए कि जो अच्छाई के रास्ते पे
1: आपको प्रेरणा। तो सत्येंद्र जी, आपने जो है कम शब्दों में बड़ी गंभीर बात कही कि आज के इस भागते दौड़ते भरे जीवन में लोगों के पास दूसरे की भलाई करने का समय बहुत कम है, और लोगों में जो है भलाई करने की प्रवृत्ति भी अब कम होती जा रही है ना। तो अब समय आ गया है ऐसे में कि आपको भी थोड़ा सा स्वार्थी बनकर स्वयं के बारे में तो सोचना ही है, साथ ही साथ अपने द्वारा किए गए प्रयासों से इस समाज में भी एक नई अलख जगानी है। हाँ, वो बात अलग की है कि सबको लेकर चलने की जो कला है, जो हमें हमारे बुजुर्गों से देखने को सीखने को मिलती थी और मिलती है, जो अब आने वाली पीढ़ी में हम ट्रांसफर कर पाएंगे कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जरूर से आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई जो हमारे हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, पॉजिटिव वे में हमको आगे लेके जाने वाले लोग हैं, उनके प्रति हमें जरूर कृतज्ञ रहना चाहिए और उनके लिए समर्पित रहना चाहिए। तो सत्येंद्र जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सत्येंद्र जी, आज आपने हमें फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे?
2: सर सुना दीजिए, आज तो त्योहार भी है
1: जी,
2: है ना, हम सब आपस में भाई भाई भी हैं
1: जी,
2: ऐसा कोई जो समाज में अच्छा संदेश जाए, कोई सुंदर सा। सर इसी में मैं अपने मित्र को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा।
1: जी जी बहुत बिल्कुल, आपके आपके सभी मित्रों को बहुत सारी मुबारकबाद। आकाशवाणी बरेली की तरफ से भी हमारे सभी श्रोताओं को आज के इस ईद उल अजहा त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम सभी

बड़े प्रेम से, चाव से, मित्रता से इस त्योहार को मनाएं और आपसी सद्भाव का ध्यान रखें। तो सत्येंद्र जी, आपने हमसे बात की, हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हमारे साथ श्रोताओं, आज का हमारा जो विषय है, आपके जीवन में ऐसा कौन है जिसके लिए आप सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और देखते हैं अब फोन लाइन पर हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं और कहां से आपने हमें फोन किया है?
1: सर, ग्राम चंदपुर बिचपुरी से बात कर रहे हैं। मेरा नाम गोधन मौर्य है सर।
0: गोधन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गोधन जी, आज जैसा कि हम लोग ईद उल अजहा का त्योहार मना रहे हैं, यानी जिसको बकरीद भी कहते हैं, ऐसे में एक संदेश देता है त्याग का, दृढ़ निश्चय का, इस कुर्बानी के पीछे के भाव का। तो आज हमारा विषय भी यही है कि आपके जीवन में, यानी गोधन जी के जीवन में ऐसा कौन है जिसके लिए वो सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं?
1: सीक्रेट है सर।
0: अच्छा अच्छा, मतलब मामला जो है वो गंभीर है। लेकिन अच्छा, कुर्बानी की अगर बात करें है, तो क्या लगता है गोधन जी को कि क्या सचमुच किसी को जो है वो कुर्बान कर देना ही इस त्योहार का मुख्य संदेश है?
1: नहीं सर जी, परंपरा चली आ रही है, तो इसको मैं तो ना मैं बना सकता हूँ ना बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अपने विचारों की कुर्बानी देनी चाहिए। हमारे अंदर जो चीजें हैं
0: जी,
1: जो गलत धारणाएं हैं, उनकी कुर्बानी होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही बात है, और इसके पीछे का जो संदेश भी है, अगर आप अतीत में जाएंगे और चीजों को पौराणिक ऐतिहासिक लिहाज से पढ़ेंगे, तो उसमें भी आप ये कि जब कभी मतलब त्याग की भावना हुई, आपका निश्चय देखा गया कि आप अपनी सबसे प्रिय चीज को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, तो वो जो है उस समय उसकी परीक्षा ली गई और उस परीक्षा में लोग पास हुए। तो ये दरअसल इसका पीछे का भाव था। तो गोधन जी, आपसे बात करके हमें बड़ा ही अच्छा लगा। आज आपने हमें फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दिलवाले मूवी का गाना सुना दीजिए।
0: दिलवाले,
1: एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आइए देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर हैं हमारे कौन से श्रोता। हेलो
1: हेलो
0: जी, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहां से?
1: सर, मैं नीरज कुमार हूं, मेरठ से बात कर रहा हूं।
0: अच्छा नीरज जी, मेरठ में हमारे कार्यक्रम ठीक सुनाई देते हैं?
1: हाँ जी सर।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कार्यक्रम में। इतनी दूर से हमें सुनने और प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज जी, आज कार्यक्रम में हमारा विषय है कि नीरज जी के जीवन में ऐसा कौन है जिसके लिए वो सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं?
1: सर, मेरे तो मेरी माँ है।
0: माँ?
1: जी सर।
0: उस माँ जिसने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, खुद गीले में सो के आपको सूखे में सुलाया, यही वजह है या इससे अलग भी नीरज जी के कुछ और वजह भी है अपनी माँ को प्यार करने की?
1: नहीं, और भी है सर। हमारी जो मेहनत कर दिया, हमें पढ़ाने में इतना बड़ा कर दिया है
0: जी,
1: और बाकी बहुत सी है सर, जो छोटी छोटी इफेक्ट है जो हमें नहीं पता चलता।
0: बिल्कुल सही।
1: उस टाइम हम छोटे होते तो हमें नहीं दिखता वो सब चीज, लेकिन अब दिखता है।
0: बिल्कुल, कितना बड़ा त्याग है। बहुत सुंदर

0: बात कही नीरज जी आपने कि माँ, इसके पीछे का प्रसंग भी ये है कि भगवान से जब पूछा गया कि आप इतनी, आप तो सब जगह हो, हर तरफ हो, तो आप इतने सारे लोगों को बनाने का क्या मतलब है, मतलब एक आप डायरेक्ट लोगों को भेज सकते हैं, तो ये लोगों को जन्म देने का, माँ के गर्भ से जन्म दिलाने का क्या औचित्य है। तब भगवान ने कहीं इस कथा में जिक्र है कि भगवान ने ये उत्तर दिया कि मैं हर जगह हर वक्त नहीं पहुंच सकता, इसलिए माँ के द्वारा बच्चे को गर्भ के द्वारा जनन किया जाता है, और 9 महीने कितने ही तकलीफें सह के अपने बच्चे को गर्भ में रख के फिर बाद में जन्म देती है। वो माँ जो भगवान का दूसरा और जीता जागता सब जो है वो प्रमाण है हमारे बीच, भगवान खुद हर समय नहीं हमारे पास रह सकते, तो उन्होंने हमारे लिए अपना ही स्वरूप माँ को भेजा, ये भी पौराणिक कथाओं में समय समय पर जिक्र आता है। तो नीरज जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, आपने कार्यक्रम में हमें फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: कोई भी सर बढ़िया सर, माँ के लिए सुना दीजिए।
0: हम आपको सुनवाते हैं आपकी और हम सबकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आइए देखते हैं हमारे साथ कौन से श्रोता हैं फोन लाइन पर। हेलो।
1: हेलो
0: जी, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहां से?
1: मैं अमरजीत बात कर रहा हूं आपसे सर, खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से।
0: तो अमरजीत जी, आज का हमारा कार्यक्रम में विषय है कि ऐसा कौन आपकी जीवन में है जिसके लिए आप सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं।
1: आज का विषय काफी अच्छा है सर, और ऐसा कौन है जो आप उसके लिए अपना जीवन सब कुछ कर सकते हैं। तो सर, ऐसे तो सर माता पिता हैं जिन्होंने हमें जिंदगी और जन्म दिया है सर, पाल पोस के काफी बड़ा किया है सर।
0: बहुत अच्छी सोच है आपकी। आज के दौर में ऐसे भी लोग हैं जो अपने माता पिता को न सिर्फ केवल आभासी दुनिया पे बल्कि वास्तविक दुनिया में भी प्यार कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम सब देखते हैं कि वर्चुअल और सोशल मीडिया के इस दौर में जो है वो सारी चीजें इतनी ज्यादा हावी हैं कि हम लोग उन चीजों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। खैर, तो
1: सर आजकल जो देखा जा रहा है, तो सर आदमी जो है जब शादीशुदा हो जाता है तो वाइफ आया

0: चुकी है तो सर आजकल माता पिता को कम ध्यान दे रहे हैं आजकल के लड़के सर, और कहना चाहूंगा कि माता पिता का अक्सर ध्यान देना चाहिए। वो एक हमारा बहुत बड़ी जिंदगी है सर, जब लोग वो है तो सर जब लोग सब कुछ है हमारे लिए,
1: बिल्कुल
0: माँ और बाप है तो सर उससे बहुत बड़ा सम्मान मिलता है।
1: बिल्कुल सही बात है कि माता पिता जो है उनका दर्जा जो है देवतुल्य है और वो सबसे पहले पूजनीय है। तो अमरजीत जी आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
0: मैं गीत सुनूंगा, आज फिल्म का नाम रहेगा सलामी, और इसमें जो गीत मैंने चुना है चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आइए देखते हैं अब हमारे आज के विषय के साथ फोन लाइन पर कौन से हमारे श्रोता हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहां से?
1: मैं बरेली जंक्शन से गरीब भाई बात कर रहा हूं आपसे।
0: गरीब भाई, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और हम तो आपको दिल के बड़े अमीर भाई कहते हैं, हमने तो आपको नाम दे रखा
1: आपको ये तो आप लोगों का प्यार है, जरा नवाजी है, आप इतना प्यार करते हैं गरीब भाई से।
0: गरीब भाई, जो है आज का हमारा विषय है, आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए आप सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं?
1: माता पिता
0: जी। तो कुछ खास बात?
1: खास बात बस उनसे हम प्यार करते हैं, जीवन उनका है, उनके ऊपर निशान कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं।
0: तो उन्हीं का दिया हुआ जीवन है, उन्हीं को समर्पित। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा,
1: बिल्कुल ये जीवन उन्हीं का है।
0: तो गरीब भाई, आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: बस ये तो सच है कि भगवान
0: सुनवाते हैं
1: साथ साथ है।
0: हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया 100.4 FM, सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आइए देखते हैं हमारे आज के विषय के साथ फोन लाइन पर हमारे कौन से श्रोता हैं। हेलो
1: अमित जी, नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते, हमारे कौन से श्रोता हैं?
1: जी मैं अनोखे लाल मौर्य बोल रहा हूँ, कटक चांगापुरा इस बार।
0: ओहो अनोखे जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, कैसे हैं?
1: बढ़िया सर, आप नहीं कैसे सर?
0: हम बहुत अच्छे हैं। क्या हो रहा है इन दिनों?
1: जी नारियल चल रहा है सर।
0: आहा क्या बात है, ठंडक तरावट।
1: जी।
0: तो जो नारियल आप जैसे बेचते हैं वो पानी वाला जटा वाला नारियल होता है ना?
1: जटा वाला होता है, गिरी वाला।
0: तो उसको जब आप फोड़ते होंगे तो उसमें से पानी भी निकलता होगा?
1: जी जी जी।
0: तो वो पानी भी बेचते हैं या वो पानी पी लेते हैं खुद ही?
1: नहीं पानी बेचते नहीं है, कुछ परिवार के लोग पीते हैं और कुछ मरीज होते हैं मोहल्ले के, वो ले जाते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर,
1: इससे बड़ा कोई तो नहीं।
0: बहुत सुंदर। तो आज लगभग हमारा विषय भी यही है कि अनोखे भाई की आपके जीवन में ऐसा कौन है जिसके लिए आप सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं?
1: सबसे ज्यादा कुर्बान तो जीवन साथी होता है अपना।
0: जी तो आप अपने
1: साथी से बड़ा कोई चीज नहीं है।
0: तो आप अपने जीवन साथी के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं ना?
1: जी, जी, जी।
0: अच्छी बात है आपकी। और एक व्यक्ति जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ आया और उसके प्रति
1: परिवार छोड़ के आया,
0: जी उसके प्रति समर्पण रखना, ये भी बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो अनोखे जी आपने हमें फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म अनोखी अदा का सुनवा दीजिए, सुंदरी अपन को भी एक नजर दे।
0: आहा क्या बात है, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज है त्योहार ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का, और कुर्बानी का त्योहार है। लोग उसको अलग अलग तरीके की कुर्बानियों से देखते हैं। और देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कौन से श्रोता है इस विषय के साथ। हेलो
1: जी सर।
0: जी हमारे कौन से श्रोता है, बात कर रहे हैं और कहाँ से?
1: सर मैं अर्जुन सैनी बात कर रहा हूँ, यहाँ बरेली से।
0: अर्जुन जी, आज का हमारा विषय है कि अर्जुन जी के जीवन में ऐसा कौन है जिसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं?
1: मेरी जीवन में है सबसे ज्यादा मेरे मम्मी पापा।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो कुछ खास वजह? माता पिता
1: कि वो जगत जननी है
0: जी,
1: तो मैं चाहूंगा जिनने मुझे धरती पे लेके आए,
0: जिनने
1: मुझे दार प्यार दुलार दिया है
0: जी,
1: इतना अपने तरीके पे रहना जीना सिखाया, और मेरे माता पिता।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, माता पिता ही हमारे जो है पालक है, संरक्षक है, हमारे जीवन दायक है। और अगर हम

0: जो है पालक है, संरक्षक है, हमारे जीवन दायक हैं, और अगर हम उनको अपना ये जीवन समर्पण भी कर देते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अर्जुन जी, आपने हमें फोन किया, आपने विचार साझा किए, इसके लिए तो आपका धन्यवाद है। आज आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैं सुनना चाहूंगा सर राजा हिंदुस्तानी का, आया हुआ मेरी जिंदगी में।
0: आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

तो श्रोताओं, ये तो था हमारा आज का आपकी बात आकाशवाणी के साथ का कार्यक्रम। श्रोताओं, कुर्बानी केवल जो है वो सामूहिक त्याग ही नहीं है, काम कुर्बानी है विचारों की, कुर्बानी है नकारात्मक विचारों, कुर्बानी है गंदगी की, कुर्बानी है वैमनस्यता की, कुर्बानी है वो आपसी झगड़े की, कुर्बानी है दुराव की, कुर्बानी है दुष्प्रभाव की, और कुर्बानी है गुस्से की। तो ये कुर्बानी असली रूप से जब हम करते हैं तो सार्थक करती है आज के इस ईद उल अजहा त्योहार को। तो आप सभी को ये त्योहार आपके जीवन में खूब सारी कामनाएं लेके आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ से मुझे यानी ब्रजेश को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ट्यून क्या है 100.4 FM, स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं शाम के 5, और आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले प्रोग्राम्स की।

एक साथ संभालती आज की नारी। वार्ताकार हैं श्रीमती शिखा दीवान। युवा साथी सुनेंगे प्रोग्राम युवाणी शाम को 6 बजे से, जिसमें होगा आज का सवाल कुछ खास है आज ओए लकी, और प्रोग्राम में ही होगी ढेर सारा मनोरंजन और आपसे बातचीत। 6:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी का। भैया धारा सिंह और कृष्णवीर जी पेश करेंगे इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम में आज की बात के अंतर्गत होगी चर्चा कृषि यंत्रों का रखरखाव। भेंटवार्ता होगी प्रोग्राम में मोटे अनाज की खेती एवं कृषक अनुभव पर बातचीत। भेंटवार्ताकार हैं एक राम सिंह, जिनसे बातचीत करेंगे रविंद्र कुमार। सफल महिला कृषक के अनुभव होंगे और होगा प्रोग्राम में आज का सवाल, आज की नसीहत, बाजार भाव और लोगी। शाम को 7 बजे कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा, जिसमें होगी चर्चा चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि पर। साथ ही साथ होगी लोकगीत और क्षेत्र संकलित प्रोग्राम। और श्रोताओं सुनना न भूलिएगा शाम को 7:31 पर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अनुरोध गीत। रात्रि 8 बजे से रिले करेंगे आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। तो श्रोताओं ये तो था विवरण हमारी आज की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। अब विवरण हमारी कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का।

कार्यक्रम भजन संध्या लेकर हाजिर होंगे शाम को 5:05 पर। महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा प्रोग्राम नारी संसार अनुप्रीता सिंह के साथ शाम को 5:30 पर। प्रोग्राम में होगी चर्चा, बच्चों को सिखाएं टेबल मैनर्स, साथ ही होगी पेरेंटिंग टिप्स इनसे मिलिए सेगमेंट, और प्रोग्राम में होगी एक वार्ता जिसका कि विषय है कई जिम्मेदारियां।

श्रोताओं, कल सुबह 8:15 पर सुनना न भूलिएगा फिल्मी फ्राइडे गजेंद्र सिंह के साथ। प्रोग्राम लोक गीतों का लेकर हाजिर होंगे सुबह 8:45 पर। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुबह 9 से। श्रोताओं, सुबह 10 सुनना न भूलिएगा आकाशवाणी के 90 पूर्ण होने पर हमारा विशेष प्रोग्राम आकाशवाणी के दीवाने, और जिसमें हमारे कल मेहमान होंगे विमल वर्मा। सुबह 10:05 पर लेकर हाजिर होंगे आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद। 11 समय रहेगा सबरंग का, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुन सकेंगे 11:30 पर। दोपहर 12 से लेकर हाजिर होंगे एफएम रेनबो के प्रोग्राम, जिन्हें रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का प्रोग्राम अनुरोध गीत का समय रहेगा दोपहर 1 से। दोपहर 2 समय रहेगा कार्यक्रम रसरंग का। शाम को 4 सुनेंगे आप आकाशवाणी के दीवाने, जो कि आकाशवाणी के 90 पूर्ण होने के अवसर पर है विशेष कार्यक्रम। इसमें हमारे मेहमान होंगे कल सतीश अनेजा जी।

श्रोताओं भजन संध्या सुन सकेंगे शाम को 5:05 पर, 5:30 पर फिल्म संगीत का प्रोग्राम लकी 3 पेश करेंगे शीश पाल राजपूत। कलाम शायर में आप सुनेंगे मोहम्मद लई खान और मोहम्मद अहमद खान को शाम को 5:45 पर। युवा साथी सुनेंगे प्रोग्राम युववाणी अपने नियमित समय शाम को 6 से, जिसमें होगा आज का सवाल, कुछ खास है आज और नजराना है शाम। 6:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम जगत का, जिसमें होगी चर्चा सड़क पर सावधानी से चलें। प्रोग्राम में होगी वार्ता और लोकगीत। कृषि पाठशाला कार्यक्रम सुन सकेंगे शाम को 7 से, जिसमें भेंट वार्ता होगी। विषय है पशुओं में मनुष्य से होने वाले रोग, जानकारी एवं बचाव। और विषय देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ रहेंगी डॉक्टर हिमानी धांजे। शाम को 7:31 पर लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम अनुरोध गीत। और रात्रि 8 से आप सुनेंगे कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ केंद्र के, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो श्रोताओं, ये तो था विवरण हमारी कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। और

इसी मधुर भजन के साथ भजन संध्या अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो रहे हैं। स्टूडियो में आ गई हैं अनुप्रीता सिंह कार्यक्रम नारी संसार लेकर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार सखियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय कार्यक्रम नारी संसार में। आपकी रेडियो सखी रेडियो हम सफर अनुप्रीता सिंह यानी मेरे साथ। सखियों, आज का जो हम प्रोग्राम लेकर आए हैं वो है नौतपा विशेष, क्योंकि नौतपा शुरू हो चुका है 25 मई से और जो चलने वाला है 2 जून तक। तो सबसे पहले आज नौतपा

पे मैं अपनी सखियों से पूछना चाहती हूँ एक सवाल। सवाल है, नौतपा में आप अपना ख्याल कैसे रख रही हैं? देखिए, सखियाँ सभी का ख्याल रखती हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना उन्हें थोड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए आज का मेरा यही सवाल है कि आप अपना ख्याल कैसे रख रही हैं। और अब बात करते हैं, हमारा जो पहला सेगमेंट है वो है कि बच्चों को सिखाएं मैनर्स। बच्चे हमारे घर की बगिया की फुलवारी होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये, उनसे पूरा घर महकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जिससे कि आगे चलकर आपको और आपके बच्चों को दोनों को ही कभी भी ये ना लगे कि काश बचपन से ही ऐसा सिखाया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसी तरह से बच्चों को ऐसे मैनर्स दें, ऐसे तौर तरीके दें, ऐसे संस्कार दें कि बच्चे हमारे अगर बाहर भी चले जाएं, देश विदेश में घूम आएं, लेकिन उनके जो अपने संस्कार हैं वो कभी ना छूटे। जैसे अगर बच्चा छोटा है तो हम सोचते हैं बच्चा छोटा ही तो है, अभी आगे सीख लेगा। नहीं, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है उसको बताएं कि अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है, सबसे पहले वो नमस्कार करे, और अगर पाँव छूना है तो पाँव छुए, मतलब उनका पूरा अच्छे से स्वागत करें। और साथ ही उसको ये भी बताएं कि ये हमारे घर के गेस्ट हैं, ये हमारे अतिथि हैं, तो हमें इनका स्वागत हमेशा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे ऐसा तभी हमारे बच्चे भी सीख पाएंगे। इसी तरह से ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन आगे चलकर यही बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो हमें अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार ही देने चाहिए।

0: सखियों, अब समय हो गया है वार्ता का। वार्ता का विषय है कई जिम्मेदारियां एक साथ संभालती आज की नारी, और वार्ताकार है श्रीमती शिखा दीवान।
1: सबसे सुंदर सबसे प्यारी माँ है मेरी, बड़ी निराली। घर आंगन की शोभा है ये, जीवन ज्योति जलाने वाली। घर के सारे काम ये करती, प्यार हमें दिन रात ये करती। कभी मारती गलती पर तो संग हमारे वह भी रोती। माँ के बिन है जीवन अधूरा, इसके बिन घर आंगन सूना। ये तो है फूलों का वो चमन, जिसे करता ईश्वर नमन। श्रोताओं, माँ केवल एक रिश्ता नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की धड़कन होती है। वह अपने जीवन में एक साथ कई भूमिकाएं निभाती है, और हर भूमिका को पूरे प्रेम, धैर्य और समर्पण के साथ निभाती है। एक माँ एक दिन सुबह सबसे पहले शुरू होता है और रात सबसे बाद में खत्म होती है। वह अपने परिवार की खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए लगातार मेहनत करती है। माँ घर के हर सदस्य का ध्यान रखती है, बच्चों की पढ़ाई, खान पान, कपड़े, स्वास्थ्य और संस्कार। हर छोटी बड़ी बात की चिंता उसे रहती है। वह यह सुनिश्चित करती है कि परिवार का हर सदस्य खुश और सुरक्षित रहे। माँ बच्चे की पहली शिक्षक होती है। बच्चा बोलना, चलना, अच्छे संस्कार, सम्मान और जीवन के मूल मूल्य सबसे पहले माँ ही सिखाती है। माँ अपने अनुभव और प्यार से बच्चे को सही और गलत का अंतर समझाती है। माँ पूरे घर को व्यवस्थित ढंग से चलाती है। वह घर का बजट संभालती है, खाने पीने की व्यवस्था करती है, साफ सफाई का ध्यान करती है और सभी कामों को समय पर पूरा करती है। बिना किसी शिकायत के वह हर जिम्मेदारी निभाती है। जब परिवार का कोई सदस्य दुखी हो या परेशान हो, तो माँ उसका सबसे बड़ा सहारा बन खड़ी हो जाती है। उसकी बातें और प्यार भरा व्यवहार हर दुख को कम कर देता है। माँ अपने बच्चे और परिवार को हमेशा हिम्मत देती है। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में कई माएं घर के साथ साथ नौकरी दोनों संभालती हैं। इतनी व्यस्तता के बावजूद वे अपने बच्चों और परिवार के लिए समय निकालती हैं। सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हैं, दोपहर का खाना बना कर जाती हैं तथा घर आकर भी बनाती हैं, फिर रात की तैयारी में जुट जाती हैं। यह उनकी मेहनत और त्याग दर्शाता है। माँ अक्सर अपनी इच्छाओं और आराम को त्याग कर परिवार की जरूरतों और जिम्मेदारियों को संभालती है। इतनी व्यस्तता के बावजूद वे अपने बच्चों और परिवार के लिए समय निकालती हैं। यह उनकी मेहनत और त्याग दर्शाता है। जिस प्रकार माँ दुर्गा अष्टभुजाओं

0: वाली है, उसी प्रकार माँ भी अपनी हर जिम्मेदारियों को हर क्षेत्र में अपने कार्यों को संभालती है। जिस दिन एक स्त्री माँ बनती है वह उसी दिन से अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगती है और उसके दिन रात अपने बच्चों तथा अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारियों को परिपूर्ण रूप से निभाने लगती है। यदि आज हम अपने जीवन में कुछ कर पा रहे हैं या आगे बढ़ पा रहे हैं तो यह उस माँ की मेहनत और दुआओं का असर है। आज बहुत सारे लोग ये सोचकर जीवन जीने लगे हैं कि क्या किया है उन्होंने हमारे लिए, यह तो हमारी मेहनत का फल है। पर ऐसा नहीं है। यदि उस माँ ने हमें अच्छे संस्कार ना दिए होते और हमारे पर अपना समय ना दिया होता, यदि हमें उनका आशीर्वाद ना मिला होता तो हम जीवन में इतना आगे भी ना बढ़ पाते। माँ वह शक्ति है जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर रखती है। वह अपने बच्चों की मुस्कान के लिए दर्द और परेशानी सह लेती है, चाहे वह कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार की जरूरतों को हमेशा पहले रखती है। माँ का जीवन त्याग, प्रेम और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। एक माँ हर दिन नई चुनौतियों का सामना करती है, कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता, कभी घर की जिम्मेदारियों को, तो कभी परिवार की खुशियों का ध्यान। वह सब कुछ बिना रुके करती है। उसकी सबसे बड़ी खुशी अपने परिवार को खुश और सुरक्षित देखना होता है। माँ अपने बच्चों को केवल बड़ा नहीं करती बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाती है। वह उन्हें ईमानदार, मेहनत, सम्मान और प्यार का महत्व सिखाती है। माँ की सीख जीवन भर हमें एक अच्छा इंसान बना पाती है। जब हम दुखी होते हैं तो माँ हमें हिम्मत देती है, जब हम गलती करते हैं तो वह हमें प्यार से समझाती है। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है जिसमें अपने बच्चों के लिए हमेशा माफी और दुआ होती है। अपने सपनों को भूलकर परिवार तथा बच्चों और बाहर की जिम्मेदारियों को भली प्रकार निभाती है। वह यह नहीं जानती कि उसके लिए दिन हो रहा है या रात हो रही है। वह अपने जिम्मेदारियों को भली प्रकार करने की कोशिश करती है। चाहे वह किसी भी कार्य क्षेत्र में जुड़ी हुई है तो उसे लगता है उसके जो ऊपर लोग हैं वो उससे कुछ ना कह सके, वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा रही है, अपनी नौकरी को हमेशा संभाल करके चलना चाहती है, वहाँ भी समय पर पहुँचती है, वहाँ की जिम्मेदारियों को समझती है। जब वो वहाँ काम कर रही होती है तब भी उसके दिल में, उसके कोने, दिल के कोने में कहीं ना कहीं उसका घर परिवार होता है, उसे उसकी चिंता होती है कि इस समय उसके बच्चे ने खा लिया होगा या नहीं। और ऑफिस में वो इस तरह से होती है जैसे उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, बस उसको उसी के बारे में सोचना है। वो अंदर से एक माँ भी होती है। अपने सपनों को भूलकर परिवार तथा बच्चों को बाहर जिम्मेवारियों को भली प्रकार निभाती है। श्रोताओं, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, माँ वह रोशनी है जो खुद जलकर पूरे घर परिवार को उजाला देती है। माँ हर जिम्मेवारी निभाते हुए भी अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। रसोई से लेकर बच्चों की किताबों तक, दफ्तर की फिक्र से लेकर घर के दरवाजों तक, हर किरदार को वो यूं निभाती जाती है जैसे कोई देवी हर रूप में मुस्काती है। किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता, शायद अब हर घर कोई माँ के पैर छूकर नहीं निकलता। हालत बुरे थे मगर अमीर बना रखती थी, हम गरीब थे ये बस हमारी माँ ही जानती थी।
1: सखियों, अभी आपने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था कई जिम्मेदारियां एक साथ संभालती आज की नारी, आज की माँ, और वार्ताकार थी श्रीमती शिखा दीवान।

0: सखियों, अब समय हो गया है हमारे नौतपा विशेष कार्यक्रम का, इनसे मिलिए सेगमेंट का। तो आइए देखते हैं कि हमारी सखियां क्या जानकारियां दे रही हैं। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम रश्मि है।
0: रश्मि जी, जो हमारा विषय है आज का वो है कि नौतपा में आप अपने घर के बच्चों का ख्याल कैसे रखती हैं। जैसे कि नौतपा शुरू हो चुका है जो कि 25 मई से लेकर 2 जून तक है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नौतपा है क्या?
1: जी, नौतपा ये भयंकर गर्मी का मौसम है
0: जी,
1: जो बरसात से पहले और गर्मी का मतलब हद से ज्यादा आगे बढ़ना
0: जी,
1: ये नौतपा कहलाता है
0: जी बिल्कुल सही।
1: जिसमें भयंकर गर्मी होती है और हमें बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
0: तो आपके घर में बच्चे हैं?
1: जी हाँ।
0: आप उनका ख्याल इस समय कैसे रख रही हैं? ऐसा क्या कर रही हैं कि नौतपा का जो असर है वो हमारे घर के बच्चों पर कम से कम हो या ना हो?
1: इतनी गर्मी में हम बच्चों को कम से कम 11 बजे के बाद 4 बजे तक बाहर नहीं निकलने देते, और नहीं निकलने देना चाहिए, भयानक गर्मी पड़ रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उसके बाद बच्चों को बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है, ठंडा पेय पीना है, ठंडा पानी पीना है, बार बार पानी पीना है
0: जी,
1: बच्चों को, डिहाइड्रेशन से बचा

0: है,
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि
0: और
1: यही
0: हल्के
1: मौसम
0: कपड़े
1: है।
0: पहनाने हैं जिससे बच्चों को गर्मी का असर ना हो, पसीना आए तो वो कपड़े सोखें, बच्चों को थोड़ी हवा भी महसूस हो।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं रश्मि जी। अपने घर के बच्चों का जो बचाव है, वो जो ये मौसम चल रहा है इससे हम ऐसे ही बचा सकते हैं, उनको बाहर ना निकलने दें, उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, ठंडी ठंडी चीजें ही उनको खिलाएं। अच्छा, अगर कोई बच्चा नौतपा की चपेट में आ जाता है तो क्या करें?
0: उनका थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना जरूरी है।
1: जी
0: अगर कोई नौतपा की चपेट में आ गया है
1: जी
0: तो अगर उसको हमें पता लग रहा है कि थोड़ा सा भी बुखार है तो उसमें लापरवाही नहीं करनी है, अपने घरेलू उपचार शुरू करने चाहिए, जैसे कि उनको ठंडा पेय दें,
1: जी
0: उनके लिए अगर बुखार महसूस हो रहा है तो ठंडे पानी की पट्टी डालें, और अगर हम देख रहे हैं कि नहीं हम पर नहीं संभल रहा है तब हमें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, मतलब हम ये ना सोचें कि ये साधारण बुखार आ गया है या साधारण बच्चे को उल्टी दस्त हो रहे हैं। नहीं, हो सकता है कि बच्चा गर्मी से परेशान हो गया हो, और अगर हमने अभी लापरवाही की तो ये आगे उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
0: साबित हो सकता है, इसीलिए बच्चों की सभी चीज का ध्यान देना है, खान पान का भी ध्यान देना है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को थोड़ी सी लू लग गई है, इस नौतपा में लू ज्यादा लगती है, तो
1: जी
0: लू लग गई है तो बच्चे के लिए कच्चे आम का पन्ना बना कर दें,
1: जी
0: इमली की पुदीने की चटनी बना कर दें, दही
1: बिल्कुल
0: खिलाएं, ऐसी चीजें ठंडी बच्चे को। और इस समय जो फ्रूट्स चल रहे हैं, तरबूज है, खरबूजा है, ये खीरा है, नींबू है, पानी वो पानी है, ये सब बच्चे को क्या सभी को बहुत फायदेमंद है, और मेरे समझ से तो सबको लेना भी चाहिए बच्चों सहित।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि बच्चों को तो ये सब देना ही चाहिए, लेकिन सभी को ये सब चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडे पदार्थ हैं, और इतनी गर्मी में जब ये सभी चीजें अवेलेबल भी हैं, मिल भी रही हैं, तो ये सब खाना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि शरीर को और दिमाग को तरावट मिलती है, तो ये बात भी सही है। रश्मि जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारी सखियों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम प्रीति है।
1: प्रीति जी, आज का हमारा जो विषय है वो है कि नौतपा क्या है और इससे हमें कैसे बचना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो नौतपा चल रहा है ये है क्या?
2: जी, जैसा कि आप जानते हैं कि नौतपा ज्येष्ठ माह में आता है, और ये जो ज्येष्ठ माह होता है ये वो 9 दिन है जिसमें सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं। विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये मतलब हमारी कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और अगर हम अपने धार्मिक फॉर्म में देखें इसे तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य देव जो अपनी पूरी मतलब तप की विशेष भूमि में होते हैं, जिसमें फिर कहीं ना कहीं जल सेवा, छाया सेवा और बाकी सब चीजों को दान पुण्य करना पुण्य की ओर अग्रसर होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये चीज सही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नौतपा क्यों है, ऐसा है वैसा है, लेकिन हकीकत ये है कि नौतपा का होना भी बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसी जानकारी देंगी कि ऐसा क्या है कि नौतपा का होना भी जरूरी होना चाहिए?
2: जी, मैं आपको बताती हूँ। नौतपा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं,
1: जी
2: ठीक है, तो इसमें जब अधिक गर्मी होगी, जितनी अधिक गर्मी होगी उतना ही अच्छा मानसून हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जिससे हमारी कृषि की फसल अच्छी होगी।
1: जी
2: और जब यह होती है ना तो ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे पृथ्वी का संतुलन और तापमान एक अनुचित तालमेल बिठा पाता है एक दूसरे के साथ, तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि ये 9 दिन अच्छे से मतलब तपिश को महसूस कर पाए।
1: अच्छा, नौतपा का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है?
2: जी बिल्कुल, नौतपा का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, ये बात सत्य है। इसीलिए हमारे भारतीय जो स्वास्थ्य विभाग हैं या भारत मौसम विज्ञान, जो कि आप जानते हैं कि अपनी एक वो जारी करता है सूचना कि इन 9 दिनों में विशेष तौर पे 12 से 3 बजे के समय में धूप में निकलने से बचना चाहिए।
1: जी, कारण?
2: कारण इसका यह है कि आपको डिहाइड्रेट हो सकता है, आपको लू लग सकती है, आपको शरीर में ऐसी मतलब जी मचलाना, उल्टी होना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी जो कि आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं विचलित कर सकती
1: आपने
2: है।
1: इतनी अच्छी जानकारी

0: करी थी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका कि आपने हमें शामिल किया। अब बस हम मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस प्रकृति को गलत नजरिए से ना देखकर इसका पॉजिटिव आउटकम भी देखिए, क्योंकि प्रकृति एक तरीके की तपस्या कर रही होती है जिसमें वो अपने इस तप के माध्यम से प्रकृति को एक नया रूप प्रदान करने जा रही थी, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए और खुद को सुरक्षित।
0: अच्छा प्रीति जी, कोई गीत सुनना चाहेंगे?

0: कोई गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी बिल्कुल, मैं तो गीत, जैसा कि आप जानते हैं हमारे भारतीय संगीत और शास्त्र में कितने हम लोग रुचि रखते हैं, तो मैं जो गीत सुनना चाहूंगी वो गीत है मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे।
0: वाह, वेरी नाइस। तो आपके रेडियो सेट पर ये गीत।

कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले बंदे तेरी हार नहीं होती। स्वागत है आप सभी का, खैर मकदम है आज के हमारे युवाणी प्रोग्राम में। प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं आपका अपना रेडियो दोस्त ब्रजेश। श्रोताओं, प्रोग्राम में हम बात करते हैं, ढेर सारी होते हैं ढेर सारे सेगमेंट, और सुनती हैं हम अपने और आपके दिलों के गीतों को। प्रोग्राम में आज का सवाल हम आपको यहाँ याद दिलाते चलें, जिसका मिलान हम लोग कार्यक्रम के अंत में करेंगे। आज का हमारा सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हम कार्यक्रम के अंत में आपको जरूर देंगे और जरूर मिलाइएगा। और अब आते हैं हमारे सेगमेंट कुछ खास है आज में, और आज है वीडी सावरकर जयंती, वीर सावरकर जयंती, विनायक दामोदर सावरकर जयंती। और वीर सावरकर जी का जन्म आज ही 28 मई को हुआ था 1883 में, महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। 1904 में ही अभिनव भारत सोसाइटी से आप जुड़े और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और फ्री इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, देश की आज़ादी के लिए ढेर सारा योगदान दिया और काला पानी की सज़ा भी पाई। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा अंडमान की सेलुलर जेल में 50 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई। उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी। सावरकर जी केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक ओजस्वी कवि और सामाजिक समरसता के प्रबल समर्थक भी थे। उन्होंने जीवन, साहस, राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण को याद करने के लिए हर साल आज के दिन को हम बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, समर्पित करते हैं आज के हमारे इस दिन को। उनके संपूर्ण जीवन और विचारों के बारे में ढेर सारी किस्से हैं, ढेर सारी कहानियां हैं, और आज इस मंच से सावरकर जी को हम ढेर सारी श्रद्धांजलि प्रेषित करते हैं।

कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, जहाँ कोशिश की चोट होती है वहाँ असफलता के पत्थर में दरार आना तो निश्चित ही है। तो कोशिश करना कभी भी ना छोड़िए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियाँ हमेशा प्रासंगिक थी, हैं और रहेंगी।

फ्रेंड्स, ढेर सारी बातें हमने जब बात की और आपको बताते चलें कि नशा मुक्त जो भारत है इसकी संकल्पना करते हैं हम। नशा मुक्त भारत की संकल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी सपना है। और अगर बात करें हम अपने निजी जीवन में, तो हमारे माँ बाप, हमारे परिवार के लोग, हमारे सच्चे, हमारे चाहने वाले लोग या फिर सच्चे हमारे जो इष्ट मित्र हैं, उन सबकी इच्छा यही होती कि अगर हम किसी भी तम्बाकू या फिर किसी भी गलत चीज़ का सेवन करते हैं तो उससे दूर हों। तो इन सारी चीज़ों के पीछे ही डेडिकेटेड डेज हैं जो हम मनाते हैं समय समय पर। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात और बता दें कि नशा को करना, जैसे मान लीजिए धूम्रपान ही कर रहे हैं, कोई सिगरेट ही पी रहा है, तो सिगरेट जो पी रहा है वो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है, वो तो सिगरेट पी ही रहा है। लेकिन जब वो उस धुएं को बाहर छोड़ता है और कोई सामने वाला व्यक्ति उस धुएं को अपने शरीर के अंदर सांस लेगा, तो वो धुआं उसके शरीर में जाएगा। और जो आदमी सिगरेट पी रहा है उसके सिगरेट के पीछे तो फिर भी फिल्टर लगा हुआ है, धुआं छन के उसके शरीर में जा रहा है। लेकिन जो वो अपने मुंह से, नाक से धुआं छोड़ रहा है, वो दूसरा आदमी सांसों के द्वारा अपने शरीर में ले रहा है, तब तो वो पैसिव स्मोकिंग हुई और वो ज़्यादा खतरनाक है। खैर, दोनों ही चीज़ें बहुत खतरनाक है और पैसिव स्मोकिंग और ये सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तंबाकू निषेध है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णयों में जो है इसके बारे में समय समय पर व्याख्या की है, चिंता व्यक्त की है कि जो है धूम्रपान, तंबाकू, ये सारी चीज़ों में निषेध होनी चाहिए। और एक नाबालिग के लिए तो इसको खरीदना भी जो है वो वैलिड नहीं है। तो बिल्कुल, अगर हमारा भी कोई दोस्त, परिवार का व्यक्ति कोई भी इस तरीके की चीज़ों का सेवन कर रहा है, तो हमें उसके दुष्परिणामों के बारे में उसके साथ चर्चा करनी चाहिए और ज़रूर से उसको वापस लेके आना चाहिए एक हेल्दी रूटीन में, है ना। तभी सही मायनों में हम उसके दोस्त हुए या उसके सच्चे प्रशंसक हुए, चाहने वाले हुए। फिलहाल आइए इंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को, बात करेंगे कार्यक्रम के अगले हिस्से में एक नए विषय पर।

0: फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि जो तंबाकू फ्री हमारा संकल्प है, तंबाकू फ्री समाज की स्थापना करना हमारी इच्छा है, तो उस दिशा में हमें ज़रूर आगे बढ़ना होगा। और फ्रेंड्स, मैं हम जैसे बताया कि प्रोग्राम में ढेर सारी बातें हैं और ढेर सारी बातों को हमने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, करवाते हैं। अभी हम लेकर आते हैं आपके लिए प्रोग्राम में एक वार्ता जिसका विषय है अपनी जड़ों से दूर होता युवा, और वार्ताकार हैं यशी मेहरोत्रा। आइए सुनते हैं इस वार्ता को।
1: युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार दोस्त, आकाशवाणी के खास कार्यक्रम युववाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं, अपनी जड़ों से दूर होता युवा। कहा जाता है कि किसी भी पेड़ की मजबूती उसकी जड़ों में होती है। ठीक उसी तरह किसी इंसान की पहचान उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं, भाषा और संस्कारों से होती है। एक युवा होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि आज का युवा आधुनिकता और भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा है। आज तकनीक और सोशल मीडिया ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। युवा नई नई चीजें सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात। लेकिन इसी दौड़ में कई बार वो अपनी मातृभाषा, पारिवारिक मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं को पीछे छोड़ देते हैं। पहले घरों में दादा दादी की कहानियां सुनाई देती थी, त्योहार पूरे परिवार के साथ मनाए जाते थे और अपनी भाषा बोलने में एक गर्व महसूस होता था। लेकिन आज एक मोबाइल की स्क्रीन ने रिश्तों की गर्माहट को कहीं कम कर दिया है। मानो पूरी दुनिया ही उस 6 से 6.5 इंच की एक मोबाइल स्क्रीन में सिमट कर रह गई हो। युवाओं, आधुनिक बनना गलत नहीं है, समय के साथ चलना भी जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान खो देना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आज हम में से बहुत से युवा ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी भाषा बोलने में झिझक महसूस होती है। लोक संगीत, लोक कला और अपनी परंपराओं से उनका जुड़ाव खत्म होता जा रहा है। विदेशी संस्कृति को अपनाना आसान लगने लगा है, जबकि अपनी ही संस्कृति एक पुरानी सोच लगने लगी है। ये सवाल मुझसे, आपसे और हम सभी से है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि जिस इंसान की जड़ें मजबूत होती हैं, वही जीवन में मजबूती से खड़ा रह पाता है। हमारे देश की संस्कृति दुनिया की सबसे समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। यहाँ हर राज्य की अपनी भाषा, अपना पहनावा, अपना संगीत और

अपनी परंपरा है। यही विविधता भारत की असली पहचान है। युवाओं को चाहिए कि वो आधुनिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति और मूल्यों को भी अपनाएं, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपनी मातृभाषा का सम्मान करें और अपने त्योहारों और परंपराओं से हमेशा जुड़े रहें। ये कहा भी गया है कि किसी राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के दिलों और आत्मा में बसती है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो युवाओं, आगे बढ़िए, सपने देखिए, दुनिया को जानिए, लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू और अपनी पहचान को हमेशा अपने साथ रखिए। इसी संदेश के साथ मुझे यानी के यशी को दीजिए अब इजाजत। आप सुन रहे थे अपना खास कार्यक्रम युववाणी।

फ्रेंड्स, आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम युवाणी में अपने ढेर सारे साथियों से, अपने ढेर सारे लोगों से, उनके बातें, उनके बीच की, उनके दिल के मनोभावों को प्रोग्राम में हमने शामिल की आज कुछ प्रमुख चर्चाएं। और श्रोताओं, आज है गुरुवार और आज के दिन जो है वो है हमारा विशेष सेगमेंट होता है आज के दिन ओए लकी। और ओए लकी सेगमेंट में गाने सुनने के लिए आप लोग हमें ढेर सारे कमेंट भी करते हैं। हमारे जो है ये कमेंट या बहुत सारे मैसेज आप लोग हमें समय समय पर हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में करते हैं। तो हमारे सभी श्रोताओं को समर्पित ओए लकी सेगमेंट का ये गीत।

आपके लिए लेकर आए हुए हैं इस सेगमेंट में। इस समय कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप लोग भी अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर आपके लिए है खास न्यूज। SSC की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो एग्जाम है, इसका लास्ट डेट 22 जून को है, तो आप लोग भी जो है इसमें आवेदन करिए। जो लोग भी इसके लिए योग्य हैं, स्नातक हैं या अंतिम वर्ष में हैं, इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं इसकी अधिकृत वेबसाइट से। स्नातक आपका होना या अंतिम वर्ष में होना चाहिए, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा है कर्मचारी चयन आयोग की। आप SSC की वेबसाइट विजिट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। पोस्ट जो है लगभग 12,256 पोस्ट हैं, तो जो भी लोग जो बच्चे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। साथ ही साथ RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट की भी वैकेंसीज इस समय निकाली हुई हैं। उसकी अंतिम तिथि है 14 जून। आप संबंधित RRB की वेबसाइट में जाकर के रिक्रूटमेंट संबंधित योग्यता और उसको भरने का तरीका जान सकते हैं। भुगतान की अवधि और समय भी वहां पर मेंशन है। और साथ ही साथ जो लोग शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, CTET सितंबर माह के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, अंतिम तिथि 10 जून हो। CTET की वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए भुगतान करके अपना फार्म भर करके समय के अंदर ही आवेदन कर सकते हैं।

फ्रेंड्स, अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है और समय लगभग लगभग खत्म हो गया है। और स्टूडियो में अगला कार्यक्रम करने के लिए भैया धारा सिंह और भैया किशनवीर भी आ गए हैं और मुझे इशारा कर रहे हैं कि भैया समय, आपने हमारा समय का भी अतिक्रमण कर लिया है। नहीं नहीं भैया, मैं आपके समय में अतिक्रमण नहीं करूंगा। और अब प्रोग्राम युवाणी से अपने इस रेडियो होस्ट एंड दोस्त ब्रजेश को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सभी किसान भैया और बहनों, आप सभी को आपके भैया धारा
1: और आपके अपने भैया कृष्णवीर की राम राम।
0: स्वागत करते हैं भैया बहनों हम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी में। कृष्णवीर भैया, देखिए हमारा जो कार्यक्रम किसान वाणी है वो जानकारी परक कार्यक्रम है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों को खेतीबाड़ी, पशुपालन या फिर कृषि व्यवसाय से जुड़ी जानकारियां कार्यक्रम में पहुंचाते रहते हैं, साथ ही साथ अनुभवी किसानों को भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। लेकिन हमारे कार्यक्रम की जो एक परंपरा पड़ी हुई है वो ये है कि हम प्रत्येक दिन अपने किसान भाइयों से एक सवाल पूछते हैं और उसका जवाब हमारे किसान भाई सोशल मीडिया के माध्यम से देते हैं और हम उसका मिलान भी कराते हैं। तो आज का क्या सवाल लेकर के आए हैं कृष्णदिल भैया आप?
1: बहुत अच्छा सवाल आज लेके आए हैं धारा भैया। आज को सवाल है किसान साथियों, हरी खाद हेतु बोई गई फसलों को कितने दिनों बाद पलट देना चाहिए?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है। इस

0: समय किसान भाइयों के पास वक्त भी है और आगे आने वाले समय में इसकी आवश्यकता भी है। तो आप लोग इस सवाल के जवाब को ढूंढ कर रखिएगा, हम कार्यक्रम समाप्ति से पहले इसका जवाब आपको जरूर बताएंगे।
1: बिल्कुल
0: और कृष्णवीर भैया, जैसा कि देखिए, हम अपने खेतों में मोटे अनाज की फसलें किया करते थे, धीरे धीरे खेती बाड़ी के कामों में बदलाव आया और किसान भाइयों ने अधिक उत्पादन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मोटे अनाजों से उत्पादन कम मिलता है, इसीलिए ये मोटे अनाजों की खेती करनी कम कर दी। लेकिन उसका जो दुष्परिणाम सामने आया है, उसके मद्देनजर अब सरकार ने हम किसान भाइयों को प्रोत्साहित किया है कि मोटे अनाज की खेती भी की जाए।
1: बिल्कुल, जो बात सरकार ने शुरू करी है कि किसान साथी मोटे अनाज वाली फसलें उगाएं, उनमें मुख्य रूप से एक फसल है मक्का की फसल। हमारे किसान साथी अब मक्का की फसल करने लगे हैं और उन किसान साथी से जब बात करो तो बताते हैं कि बहुत अच्छा उत्पादन मक्का से उन्हें मिलता है। वो एक भेंट वार्ता है धारा भैया आज के कार्यक्रम में, मोटे अनाज की खेती और जो किसान साथी हैं उनके खेती बाड़ी के अनुभव जिस संबंध में। कृषक हैं श्री एक राम सिंह और इनसे बातचीत करी है डॉक्टर रविंद्र कुमार ने।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों देखो, हम कार्यक्रम किसान वाणी के माध्यम से अपने बहुत से किसान भाइयों को आमंत्रित करते हैं अपने स्टूडियो में, जानना चाहते हैं उनके अनुभव आप लोगों के साथ साझा करते हैं। उनके अनुभवों से आप कुछ सीख पाएं, उनके अनुभवों से आप जान पाएं, तो कोशिश रहती है कार्यक्रम किसान वाणी के माध्यम से कि आप तक अच्छे हमारे जो किसान भाई हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं, उनके अनुभव आपसे साझा हों और आपको उनका लाभ मिले। इसी क्रम में आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है श्री एकराम जी को, जो कि हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। एकराम जी, आपके गांव का क्या नाम है?
3: हमारे गांव का नाम है नुसरतगंज।
2: नुसरतगंज, आपकी तहसील और जिला कौन सा लगता है?
3: हमारी तहसील औला, जिला बरेली, थाना सरौली।
2: बिल्कुल, तो इकराम जी हम जानना चाहते हैं कि आपकी उम्र क्या होगी इस समय?
3: हमारी उम्र इस समय लगभग 65 वर्ष है।
2: और खेती कौन से कर रहे हो?
3: खेती सन 75-76 से लगभग खेती कर रहे हैं।
2: लगभग मान लें कि 50 साल को आपको अनुभव है।
3: हाँ, 50 साल हो गए मैं।
2: क्या बताओ कि पहले की खेती में, 50 साल पहले की खेती में और आज की खेती में का अंतर महसूस हो?
3: बहुत अंतर है आज की खेती में और पहले की खेती में, बहुत अंतर है। पहले हम लोग देसी हल चलाते, और देसी हल चला के आप पहले खेत को पढ़ेल रखता है, उसमें फसल चक्र अपनाता है। पहले जब जिस खेत में पहले हमने रबी बोले, उसमें दोबारा मूंग मसूर या चना, धान काटने के बाद में चना बोते थे, गेहूं नहीं। अब तो धान और गेहूं, पानी कम था इसलिए नदियों से सिंचाई होती थी, तालाबों से और नदियों से सिंचाई होती थी। अब बेड़ी चला के सिंचाई करते थे, या और पहले जो है बेड़ी के बाद में फिर रैट का आविष्कार हुआ, रैट बर्दों से चलाते थे। और दाने को भी पहले हम लोग उससे बैलों की दांत चला कर निकाला करते थे, और वही गेहूं, बिजरी की खेती होती थी। पहले गेहूं और चना मिलवा बो देते थे, वो मुड़िया गेहूं होता था और चने होते थे, बस वही काट गए, और जरा पैदावार तो कम थी, इतनी पैदावार नहीं थी, वही काट के बोते थे, मगर दवाई वगैरह कुछ भी नहीं था, केवल प्राकृतिक के ऊपर से ही खेती होती थी।
2: एक राम जी, बड़ा अच्छा अनुभव आपने साझा किया है। मतलब खेती को जो रूप हो वो एकदम प्राकृतिक रूप से,
3: प्राकृतिक रूप से ही होते थे, गोबर की खाद और जानवर की गोबर से और घास कूड़े से वो घूरो डालता है, वह घूरे में फिर चौमासे में अपने आप गल जाते, कोई और कोई चीज ना डालने पड़ते गाँव में। अब बे घूरो खेतन में डालता है, परहल राखता है, पहले परहल बहते 10-10, 15-15 बार जुताई होगा, परहल राखता है, बाबू गेहूं बहुत काबिल।
2: हाँ, तो मतलब ये है कि बहुत अच्छो गेहूं होए कर तो, और मतलब चाहे कि प्राकृतिक खेती ही तो। एक राम जी, जो देखी कि पहले इतनी बीमारियों ना ही,
3: बीमारी बिल्कुल ना ही, बीमारी को काम ही ना हो ज्यादा, वो खान पान बिल्कुल सही हो, लोग दूध मठा घी ये शुद्ध चीजें पहले खाता है, और फलों वगैरह दवाई के नाम से तो नाम निशान ना हो दवाई को उस खेत में, ना ही खाद लागतो। खाद तो करीब लगभग लगभग मेरी अंदाज सन 80 के बाद में आ हुआ है।
2: तो एक राम जी देखो, बहुत सी बात है और बड़ी अच्छी बात है, आज याद भी ताजा हो गई आपके माध्यम से। जरूर उत्पादन तो हम कम लेते हैं, लेकिन जो उत्पादन मिलते हो वो शुद्ध मिलते हो।
3: हाँ, शुद्ध बिल्कुल साफ शुद्ध अनाज। सवेरे चार बजे बर्तन खवाओ उबाओ और हल्ले गए और 8-10 बजे तक निचू हो जाता है काम। हाँ। क्यों, अषाढ़ को दिन काफी हुआ हो तो मौसम सुहावना हो तो अपने धूप

0: ना लागती। अब तो धूप महसूस होते, खेत में काम ही ना होते। अब मशीनरी योग है, ट्रैक्टर से जुताई हो रही है और बर्दनों को काम ही ना है और ना कोई बर्दा पाल रहे है।
1: बिल्कुल, अब ना तो बर्दा पाल रहे हैं और अब युग जो बड़ी तेजी से चल रहा है तो मशीन को युग आए हुए।
0: हाँ,
1: तो अब जा है, अब फर्क का पड़ो खेती पे,
0: फर्क पैदावार तो बढ़ेगी, फर्क जो पड़ेगा कि खर्चा ज्यादा होगा, लागत ज्यादा आएगी।
1: लागत ज्यादा आएगी और पैदावार बढ़ गई,
0: पैदावार बढ़ गई, लागत ज्यादा आएगी और दवाइयां वगैरह से वो बस शुद्धता ना रही। अनाज में पैदावार तो बढ़ गई, मगर खान की शुद्धता ना रही। ना वो हमें चना मिल रहा हुआ, ना वो गेहूं मिल रहा हुआ, ना वो धान मिल रहा हुआ। धान अगर हम आज लगा रहे हैं तो बापे बगैर कीटनाशक के कोई काम हो ही ना। बापे टिड्डी और दुनिया भरे के कीड़ा लग जाता है, जैसे एक रोग ऐसा आओ धान में वो नीचे नीचे हॉपर आ जाता, तो हॉपर जैसे बोलते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: वो तो एकदम से सुखा दे, तो नीचे जड़ से लेकर ऊपर तक सब सुखा चलो जाते एक लंग।
1: बहुत बढ़िया जानकारी आज आपके माध्यम से एक राम जी मिली और आपने बताई कि पहले की खेती में और आज की खेती में जो अंतर भाव है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि इस समय मुख्य रूप से आप कौन कौन सी खेती करते हो?
0: अब इस समय तो हम पे मक्का है।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ।
1: और क्या क्या खेती होती है आपके यहाँ?
0: बाजरा होता है और धान भी होता है।
1: तो बात जा है कि जे इस समय मक्का की फसल है, तो मक्का की फसल में इस समय क्या काम हीरो हुआ?
0: अब तो कोई काम ना, नराई गुड़ाई सब हो गई और अब तो वो उसमें भुंटिया बन रही है और दानो बन रहा है। अब 15-20 दिन बाद भाई कटाई हो जाएगी।
1: तो जा है कि मक्का की खेती साल में कैसे रही जाती है?
0: साल में मक्का की खेती वैसे तो अब करो तो 3 बार मक्का कट सकती है।
1: अच्छा, तो जैसे धान गेहूं की खेती और मक्का की खेती में क्या अंतर महसूस करते हो?
0: धान गेहूं की खेती जो है 4-5 महीने आ गई है और जहाँ में 100 दिन में मक्का लगभग तैयार हो जाती है।
1: 100 दिन में तैयार हो जाती है। और अब बात करें अगर लागत की, तो लागत कैसे निकलती है, जहाँ में कैसो फायदा होता है किसान भैया को?
0: फायदा तो खैर अच्छा है, फायदा ऐसा है कि मक्का जो है वो 2 किलो प्रति बीघा की बह दी जाती है। हाँ, और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 15-20 सेंटीमीटर रखते हैं हम लोग।
1: बिल्कुल, तो जैसे भुंटिया आ रही है, दूध पर रहो है, तो अब जब मक्का कट जाए, अब जाके अगली बुवाई को हो मक्का की?
0: अगली बुवाई चौमासे में अषाढ़ में हो जाए,
1: अषाढ़ में फिर भी जाए। तो जैसे अब आपके घाई मैंने जो देखी है कि मक्का की खेती ज्यादा करते हैं, जाको का कारण है?
0: मक्का को हमारे तब हमें एक एथेनॉल की फैक्ट्री लग गई है, तब से पिछले साल से ही तो वहाँ में मक्का की खरीदारी हो जाती है। लोग 1800 गीली 1800-2000 तक ले लेते हैं।
1: अच्छा,
0: और जाकू पैदावार मक्का को पैदावार 5-7 क्विंटल पर बीघा को हो जाता है।
1: अच्छा, थोड़ी देर पहले बात करी पहले की खेती और आज की खेती में, तो क्या मक्का की खेती में कुछ बदलाव हो?
0: हाँ हाँ, मक्का की खेती में बहुत बदलाव हो। पहले हम लोग मक्का की खेती करते है तो उसमें फूटे डाल देता है।
1: हाँ।
0: समा ककुनी मड़ुआ, हाँ मड़ुआ डाल देता है, संग वाके ककुनी बह देता है वाके संग में। आज वो बिल्कुल ना, आज तो फर्द मक्का ही मक्का हो रही है,
1: मक्का ही मक्का हो रही है। और वो तो अब कहन की बात है एक राम भैया की फूट है सेंधा जे तो देखने को ना मिल रहा है,
0: देखने को ना मिल रहा है। वे तो अब जायज में कोई निधि बह दे बीघा खाण तो बह दे, फिर जानवर रहते हैं कि जानवर ही उनको नुका लेते हैं, सब
1: नुका लेते हैं। तो चाहे कि अब मक्का जो है मोटे अनाज में आती है, तो मक्का के सेवन से मक्का को खान से क्या फायदा होता है भैयन को?
0: मक्का के सेवन अब मक्का की ज्यादातर तो अब खाए आदमी कोई ज्यादा ना रहा है। क्योंकि वे प्राचीन खान वाले हमारे तो बालकों ना खाते, हाँ प्राचीन खान वाले मक्का की रोटी खाता है और बस मठास है, बहुत बढ़िया लगती मठा में मक्का की रोटी, मेज का भटकी फरीज है और मक्का की रोटी, ये चीजें पहले ज्वार बाजरा ये चीजें खाई जाते हैं जिनसे पेट को पाचन क्रिया सही रहती,
1: पाचन क्रिया बढ़िया रहती और पेट शुद्ध रहते और ताकतवर चीज,
0: ताकत बढ़ती है क्योंकि अलग मोटे ना आ जाए और जिनसे खान से आदमी स्वस्थ रहे तो
1: स्वस्थ रहे। और सरकार अब जोर दे रही है कि मोटे अनाज की खेती ज्यादातर किसान भैया करें, तो आपको क्या कहना हो जा बात पे?
0: अरे अच्छी बात है, हम तो प्राचीन बात को बहुत बढ़िया मान रहे हैं। अब भाई युग के अनुसार हमें जीने पर रहो, वैसे पहले जो हमने खेती करी है तो बात से बढ़िया हमें ना लागो जाम।
1: हाँ,
0: हम तो अब गोबर की खाद ही डालते हैं, कम से कम ये जो जो है ये बिलायती उर्वरक है इनको कम से कम प्रयोग करते हैं हम, ना ज्यादा प्रयोग ना करते।
1: बिल्कुल, ज्यादा प्रयोग करना होना चाहिए क्योंकि जैसे का खेतन को का नुकसान है रो है,
0: खेतन को नुकसान खेतन

0: की उर्वरा शक्ति बिल्कुल घट रही है, जाय के ऊपर आधारित है। जैसे अब मान लो देसी घी खान के बाद में अब तुम डालडा खाओ तो कब अच्छो लगे वो
1: कतई अच्छो ना लगे।
0: है?
1: तो बात जाए है कि देखो कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो
0: हाँ
1: हम अच्छे अनाज पैदा करें, मोटो अनाज पैदा करें, और शुद्ध जो अपनी देसी खाद है, हरी खाद है, कंपोस्ट खाद है,
0: हाँ
1: जो खेतन में डाले।
0: बस पहले ढेंचा सनाई सब बहुत है हम लोग। हाँ अब वो ढेंचा दे देते सरकार दे रही है, मगर वो सही टाइम पर ना मिलता और सही बढ़वार ना होती तो लाई लौट दो जाते तो बाबू का लागे ना लागत तो ज्यादा खाद फाद। हाँ क्यों छोटे छोटे छोटू बड़ो पहले अब करहा करहा बढ़ जातो ढेंचा, और ढेंचा बढ़ जातो तो जब ही बारिश होती थी बारिश हो गई तो बाकी बाद में पहले लौट दो पहले पटेला लगा देता है बाबू, अब पटेला लगा के बाकी बाद में पलटा हर से और फिर लौट देता है बाकी ले
1: जुताई कर देते
0: जुताई
1: हैं।
0: कर देता है बर्धन से, अब बर्धा खाता हो जाता है वहां जोता तो जाता है। हाँ
1: जब बात तो ही। और पहले देखो पहले की खेती में रास रंगो हो, उल्लास
0: अरे
1: हो अपने।
0: अरे पांच पांच छह छह लोग एक संग ले जाता है हर कोई ले। हाँ अब वहां बैठ गए अपने आराम थोड़ी बहुत देर बातें उतें करी थक गए तो और बात करके आधा पौन घंटा सत्ता ने ते फिर जोत दो ते
1: जोत
0: फिर
1: दो।
0: जोत जाते गए रोटी वोटी वहां पहुंच गए ले गए बालक अब खाए कोए का फिर तो फिर पानी उनी पी के फिर अपने 10-11 बजे निचोए गए थे अपने घर चले आए बस अब कुट्टी
1: बिल्कुल।
0: खा दिया आए गए कबार।
1: तो जैसे खेती की बात करी हमने, आप मक्का की खेती कर रहे हो और आपने बताई मोटे अनाज को, कहा बड़े अनुभव आपने अपनी जो उम्र है भाई साहब से साझा करी। अब बात है कि धान की तैयारी तो आपो कर रहे
0: हाँ
1: होगे।
0: धान की अब तैयारी हो रही है, धान की नर्सरी डालने को 5 जून से पहले पहले डाल देंगे, 5-6 जून को डाल देंगे नर्सरी।
1: डाल देंगे तो कैसे खेत की तैयारी करेंगे?
0: अभी तो हमने पहले जोत दो अब परे लगा दो दो पानी बाम लगावेंगे भर लेंगे पहले खेत के लिए, और दो पानी लगाएगा जब बाम जावरो सब जमे आवे वो तभी बाम फिर जुताई करेगा फिर बाम क्यारी बना देंगे, क्यारी बना कर फिर बाम पानी भर के पाटा लगा के फिर बाम नर्सरी डालेंगे। देसी खाद घूरे अब पड़ रहे हैं अब ट्राली से लेकर मजदूरी करके, अब इन्हें थोड़ी घाम है ज्यादा है अब बरसात हो जाएगी, अगर पहली बरसात हो जाएगी तो बाकी बाद में बहुत अच्छा लगा तो फिर घूरू डाल दो।
1: तो जा तो रही धान की तैयारी की बात। अच्छा बीज कहाँ से लातो?
0: बीज तो कुछ तो अपने घर को बना लेते हैं और फिर जब हम हाइब्रिड धान लगाने हैं तो वही दुकान से ले आते हैं, रेली में दुकान है हमारे औला में दुकान है उनसे अच्छी किस्म को बीज लाए और लगाए दो।
1: लगा दो तो अच्छे बीज से क्या फायदा होता है खेती में?
0: अच्छे बीज से जे है कि पैदावार बढ़ जाती है, पैदावार बढ़ जाती है और वहां खरपतवार ज्यादा ना होता है ज्यादा, वो जो है जो वो बीज होता है हाइब्रिड वो हाइब्रिड जो है वो एक ही बार बो जाता है वो दोबारा ना बो जाता है, इसलिए वो हमें दुकान से ही मोल लेने पड़ता है, और जो हम अपने घर की शरबती बांसपति लगाते हैं वह शरबती बांसपति अपने घर की बना लेते हैं 1-2 साल कर ली फिर बाकी बाद में फिर और बदल ली।
1: बिल्कुल।
0: हाँ
1: अच्छा देसी जो है बाकू बीज तो हम घर में बना लेते हैं, और जो हाइब्रिड पड़ जाती है जाकू बीज घर पे ना बन
0: ना
1: पाते।
0: ना बनता है इसको बीज तो केवल वैज्ञानिक लोग अपनी विधि से बनाते हैं और वो
1: तो अब जैसे सब किसान भैया जाए चाहते हैं कि हमारे खेत में धान ज्यादा पैदा
0: ज्यादा पैदा
1: हो,
0: हुए।
1: मक्का ज्यादा पैदा होए, बाजरा ज्यादा अच्छा होए, तो जाके ले एक किसान के रूप में आप क्या सलाह देना चाह रहे हो?
0: अब ज्यादा पैदा होने के लिए तो हमें संकर बीज की वो लगाने पड़ते हैं और अपने घर को बीज ज्यादा पैदा कर लेते हैं हम लोग तो, क्योंकि सरबती बांसपति जो है चल रही है 3 कुंटल 3 कुंटल सवा 3 कुंटल 3.5 कुंटल बीघा तक की हो जाती है। हाँ तो अब जाके ले हम अब पहले गर्मी की गहरी जुताई कर दी हमारे खेत सब जुते पड़े हैं। हाँ अब जुते पड़े हैं तो अब जो तप रहे हैं तो वहां में कीट पतंगा जो है वे सब मर जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: हाँ कीट पतंगा मर जाएंगे और जो रोग वारे हैं वे मान लो मेड़न फेड़न की छटाई उटाई करके जो मेड़न पर रह जाते हैं जो बेकीट बेउक छटाई करके वे सही कर देते हैं, तो इससे हमें फायदा है कि गर्म जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है और हमारे कीट और जो खरपतवार हैं बेउक हम में सूख कर नष्ट हो जाते हैं।
1: तो बिल्कुल बात जा सही है। और एक राम भैया आज आप कार्यक्रम में शामिल भए, आपने अपने खेतीबाड़ी के अनुभव, पहले की खेती आज की खेती में अंतर भी बताओ, आप कार्यक्रम में उपस्थित भए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम
2: भैया बहनों, अभी आपने श्री एकराम सिंह और भैया

0: डॉक्टर रविंद्र कुमार की मोटे अनाज की खेती के संबंध में ये बातचीत सुनी। जरूरी है कि हम अपने खेतों में अब मोटे अनाज की फसलें उगाना शुरू कर दें।
1: बिल्कुल। और धारा भैया, जब भेंटवार्ता के बाद एक है महिला कृषक अनुभव भेंटवार्ता, जो की बातचीत आपने करी है। महिला कृषक हैं सुशीला यादव और आपसे बातचीत करी है भैया धारा सिंह ने।
2: क्षेत्र संकेत कार्यक्रम के दौरान हम क्षेत्र भ्रमण करते हुए विकास खंड 11 तहसील सदर के गांव सैदपुर हाकिंस में पहुंचे हैं। और यहां रास्ता चलते चलते हमने जब देखा कि गांव के किनारे एक बाग है और इस बाग में आम, लीची, कटहल और भी बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। यही बाग में ही यहां रह करके ये खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बकरी भी है, भैंस भी है, गाय भी है। और एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि शहर और कस्बे में चूल्हे देखने को नहीं मिल रहे हैं, गांव में भी धीरे धीरे चूल्हे की परंपरा समाप्त होती जा रही है। हर घर में गैस के कनेक्शन हैं, लेकिन आज यहाँ चूल्हा हमने देखा है और चूल्हे के साथ साथ यहाँ हम देख रहे हैं एक बरोसी, जिसे हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि बरोसी में दूध रखा जाता है और इस दूध को अच्छी तरह से पका करके फिर इस दूध का आनंद लिया जाता है। तो इसी सब बात की जानकारी हम यहाँ पर जो इस घर की मालकिन हैं, इनसे बात करते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है?
3: सुशीला।
2: सुशीला जी, ये बताइएगा कि आज हम आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं आकाशवाणी बरेली से, तो ये जो गांव है ये कौन सा गांव है?
3: ये सैदपुर गांव है।
2: अच्छा, तो सैदपुर गांव में आप कब से रह रही हैं?
3: यहाँ बहुत साल यही रहता
2: है। जी जी, तो हम ये देख रहे हैं कि जंगल में मंगल तो होता ही है, सुना है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आपने इस बाग में अपना घर बना लिया है और यहाँ पर आपकी गाय, भैंस, बकरी और आपने पूरा ये घर बनाया हुआ, क्या यही रहती हैं या और भी कहीं आपका निवास स्थान है?
3: यही रह रहे हैं
2: जी,
3: गांव से आके। अच्छा, अच्छा। यही गांव में रह रहे हैं, भैंस भी पाल रहे हैं, बकरी भी पाल रहे हैं, सब चीज अपना यही कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं।
2: अच्छा अच्छा, तो ये हम बाग में देख रहे हैं कई प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, आम इस समय आ रहा है, कटहल के पेड़ों पर जो है वो कटहल लगे हुए हैं और बाकी छोटी छोटी चीजें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने अरबी भी लगाई हुई है, तो ये बताइएगा कि कैसे करके इन सब चीजों की देखभाल करती हैं?
3: इसमें ये है कि अपना टाइम निकाल के खेती करा था, उसके बाद में घर को भी करा था, फिर जो दूध वगैरह निकाल के सब रखा था।
2: अच्छा,
3: उसी में खोला था।
2: हाँ,
3: तो ये सब करा था फिर।
2: जी जी,
3: टाइम से।
2: सुशीला जी, एक बात और बताइएगा कि देखिए आज आधुनिकता के दौर में हर कोई ये चाहता है कि मैं नई नई चीजों का इस्तेमाल करें और अब आधुनिकता का दौर है, शहर कस्बे की अगर बात करें तो वहां तो गैस सिलेंडर पर ही खाना बनाया जा रहा है, गांव में भी जो है महिलाओं ने अब गैस चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। अधिकतर घरों में जो है वो हमने देखा है कि चूल्हे विदा हो चुके हैं, लेकिन आपके घर पर हम देख रहे हैं कि ये चूल्हा है और इसमें अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले हो सकता है कोई खाना बनाया हो, तो ये बताइएगा कि आपने गैस चूल्हे को क्यों नहीं अपनाया है और अभी जो चूल्हे पर ही आप खाना बना रही हैं?
3: चूल्हे बहुत बढ़िया है, चूल्हे पुरानी परंपरा है, चूल्हे की रोटी खाएगा बीमारी ना लगती है, गैस की रोटी खाए बीमारी लगती है।
2: जी,
3: अभी रोटी बनाई, करिंगिया बनाई रोटी सेकी।
2: अच्छा,
3: चूल्हे पे।
2: चलिए बहुत अच्छा है, तो अब और क्या क्या काम करती रहती है?
3: और भैंसन को करा था, गैया है, बकरी है,
2: जी
3: सबको टाइम से देना, खिलानो पिलानो उनको, खेत से घास कूड़ा ला के देना।
2: जी जी, वो कितनी भैंस है?
3: दो भैंस है।
2: अच्छा, और गाय?
3: और गाय है, तीन गाय होंगी
2: और जो है बकरी भी है।
3: बकरी भी है
2: जी। तो ये गाय, भैंस, बकरी, इन सब की देखभाल किस किस तरीके से करती हैं?
3: टाइम निकाल कर पहले तो अपने भैंसन गाय को सानी लगाता, उठके गोबर सफाई करी, इनको नहलानो धुलानो सानी उनी करके, उसके बाद घर को काम करा था।
2: अच्छा,
3: फिर अपने चूल्हे से रोटी बनाता, बरोसी में दूध रखा था खोलन।
2: हाँ हाँ, देखिये हमने ये देखा है कि जो आपके यहाँ बरोसी है इसमें आपने दूध रखा हुआ है, जो बरोसी है उसमें दूध रखने की अब धीरे धीरे परंपराएं भी समाप्त हो रही है, सबको जल्दी रहती है कि हम चूल्हे पर दूध खोला लें या गैस चूल्हे पर दूध खोला लें, है फिर और काम में लगते हैं, बरोसी में तो दूध काफी देर तक रखा जाता है, तो उससे क्या फायदे हैं?
3: बरोसी में दूध खोलने से दिन भर खोलो जाता तो बढ़िया दूध ही जाता है, बरोसी का दूध बहुत बढ़िया होता
2: है। अच्छा,
3: इसको दूध खोलो वो अच्छा ना होता।
2: हाँ हाँ, अच्छा,
3: टाइम लगा था मगर बढ़िया ही जाता
2: है। जी अच्छा, गर्मी का समय चल रहा है इस समय और पशुओं की देखभाल बहुत जरूरी है कि उनको समय से चारा भी देना है, पानी भी देना है और

0: नहलाना भी है, तो कैसे कैसे क्या क्या करती हैं?
1: सुबह को नहला देता, सानी लगा देता उनकी, फिर दोपहर में नहलाना, सानी लगाना, उनको घास उस ला के देना, टाइम से सब काम करना, टाइम निकाल के
0: जी
1: उनके साथ सब करना था।
0: उनकी हारी बीमारी का क्या ध्यान रखते हैं?
1: हारी बीमारी जो है, अगर खाना आ रही है, उदास है, कैसी है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखा।
0: कौन कौन से काम चल रहे हैं इस समय?
1: अभी यही है कि बेड़ उल डर दी, खेत तैयार करे जा रहे हैं धान गाड़न से।
0: जी जी,
1: अब अषाढ़ में धान गाड़ेंगे।
0: तो उसका भी देखभाल करती
1: है? देखभाल करा था।
0: जी जी, तो सुशीला देवी एक बात और बताइएगा कि इस समय गर्मी का बहुत ज्यादा समय चल रहा है, नौ तपा इस समय चल रहे हैं, कि इन दिनों कहते हैं कि बहुत ज्यादा तेज धूप हो जाती है, ये नुकसानदायक भी होती है, कुछ काम करने चाहिए, कुछ काम नहीं करने चाहिए, तो इन दिनों अपने बच्चों का, अपना और पशुओं का कैसे कैसे ध्यान रखते हैं?
1: ऐसे सब ध्यान रखा था, कोई अब जितना आराम करेंगे उतना ही शरीर बेकार होता है।
0: हाँ।
1: अब काम करने से बेकार ना होता शरीर।
0: जी जी जी जी,
1: काम जितना ही करा उतना बढ़िया रहता, सब टाइम टाइम निकाल निकाल के सब काम करा था, खेती को, घास पूरा सब करा था।
0: जी जी, चलिए साहब, बहुत अच्छा है कि आज आपसे, आपके इस गांव में हमने आपसे वो सारी पुरानी चीजें देखी है कि चूल्हे पर खाना आप बना रही है, बरोसी में आप दूध खौला रही है, चारा की मशीन से चारा काट कर पशुओं को खिला रही हैं, और इस बाग में बहुत सारे पौधे हैं जिसमें कि कटहल है, आम है, लीची है, इन सब की देखभाल आप करती हैं, कैसा लगता है आपको?
1: अच्छा लगा था काम करते हुए।
0: जी जी जी,
1: बढ़िया, सब टाइम से करना।
0: हाँ हाँ,
1: उनके स्प्रे है, सब दवा हुआ देना, सब चीज पेड़ को लगा लो।
0: जी जी, चलिए सुशीला जी, आज आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आपने महिला कृषक अनुभव अभी आपने सुने, महिला कृषक ही सुशीला यादव धारभैया। अब जानकारी किसान साथियों तक काफी पहुंच गई है, समय है कि उनको एक लोकगीत सुनवा हो जाए।
3: बिल्कुल सही, तो हम तो ये चाह रहे थे कि लोकगीत से पहले कार्यक्रम में जो मौसम और आज की नसीहत की जानकारी आप दे देते तो अच्छा था।
2: बिल्कुल बात सही है, तो आपकी बात को मान रहे हैं और साथियों को बता रहे हैं मौसम की जानकारी। तो साथियों, कल 29 मई 2026 को मौसम की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, हवा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा से चलने की संभावना है, और कल भैया बारिश की भी संभावना है।
3: देखिए, मौसम के मद्देनजर हम लोगों को अपनी खेतीबाड़ी के काम करते रहने चाहिए और पशुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और आज की नसीहत के तौर पर अपने भैया बहनों से ये कहेंगे कि आने वाले एक दो दिनों में आंधी बारिश की प्रबल संभावना है, घर से बाहर होने पर सावधानी बरतें, किसान भाई पेड़ों के नीचे खड़े ना हों। और आइए अब उस सवाल का जवाब भी अपने भैया बहनों को बताते चलें जो कृष्णवीर भैया ने पूछा था। सवाल था, हरी खाद हेतु बोई गई फसलों को कितने दिनों में पलट देना चाहिए? तो बहुत से किसान भाइयों ने जवाब दिया है, हम उत्तर से मिलान करा देते हैं। हरी खाद वाली फसलों को, जैसे ढेंचा है, सनई है, पटसन है, इसको 35 से 45 दिनों की होने पर पलट देना चाहिए, जिससे कि हरी खाद का अच्छा लाभ मिल सके और अगली फसल भी हमें अच्छी मिल सके। और कृष्णवीर भैया,
2: हाँ भैया,
3: देखिए हमने वादा किया था कि अपने किसान भैया बहनों का मनोरंजन कराएंगे, तो आइए एक मधुर लोकगीत जिसको स्वर दिया है सरस कौल व सखियों ने, आइए सुन लेते हैं।

0: इसी मधुर लोकगीत के साथ आज का कार्यक्रम किसान मणि यहीं पर संपन्न होता है। अपने भैया धारा
1: और अपने भैया कृष्णवीर को दिवोन्नति करो स्वीकार हम दोनों की, राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम किसानवाणी और स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं शाम के 7। समय हो गया कार्यक्रम ग्राम जगत का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत भैया दारा सिंह और भैया कृष्णवीर के साथ।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत में आप सभी भैया बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि गर्मी का समय चल रहा है और नौतपा जिसे हम लोग कहते हैं,
1: बिल्कुल
0: क्या है नौतपा, इस संबंध में विस्तार से हम जानकारी भी देंगे, लेकिन यहाँ ये कहते रहेंगे कि घर से बाहर जब भी निकलें तो अपने सिर पर एक कपड़ा अवश्य रखकर चलें, जिससे कि धूप से बचाव हो सके,
1: और पानी भी संग लेकर चलें भैया
0: जी।
1: एक क्षेत्र संकृत भेंट वार्ता है कार्यक्रम में भैया, खेतीबाड़ी के अनुभव और नौतपा के संबंध में। एक हमारे ग्रामवासी हैं चौधरी छत्रपाल सिंह, आप ग्राम नगरीय कल्याणपुर जिला बरेली के निवासी हैं, आपसे बातचीत करी है धारा भैया ने, तो आप सुने इन दोनों की बातचीत।
2: क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में हम विकास खंड मीरगंज के गांव नगरिया कल्याणपुर में पहुंचे हैं और यहां हमारी वरिष्ठ नागरिक जी से बात होती है। जान लेते हैं आपसे ही आपका परिचय।
3: मेरा नाम छत्रपाल सिंह है, पूर्व में जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष रह चुका हूं।
2: आपकी उम्र लगभग क्या हो चुकी है?
3: उम्र लगभग 73 साल।
2: आपने बताया कि 73 साल की आपकी उम्र हो चुकी है, आप स्वस्थ हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इसी तरह से स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के इस आधुनिकता के समय में भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं, आप किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं?
3: दिनचर्या नियमित है, सुबह जल्दी उठना
2: जी,
3: और नित्य कर्मों से पारिग होने के बाद योग और जो है क्या नाम एक्सरसाइज
2: जी
3: डेली करते हैं, खान पान में परहेज रखते हैं, बस यही है बाकी।
2: खेती बाड़ी के संबंध में हम अगर आपसे बात करें तो खेती में आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं, उनके बारे में आप शुरुआत से बताइए।
3: खेती में तो हमेशा हमारा मुख्य पेशा जो है वो खेती रहा है, और हमने खुद भी खेती की है
2: जी,
3: खुद ट्रैक्टर चला के। हमारे यहाँ जो चकबंदी हुई थी 1980 में, तो हमने खुद ट्रैक्टर चला के नई जमीन जो थी उसको सब लेबर किया था और खुद खेती करते थे। लेकिन जब हमने खेती की तो उसमें हमने एक तो फसल चक्र को अपनाया,

0: और उसके बाद जो है मिट्टी का परीक्षण, समय पर खाद देना, समय पर पानी देना, उस हिसाब से हमने एक अच्छी खेती अपने समय में की और मुख्य रूप से गन्ने की खेती।
1: अगर बचपन की बात करें तो उसमें देखा होगा कि कठिया हल या बैलों से भैंसों से खेतों में जुताई होती थी, आज वो दौर बदल चुका है। तो उस समय बताइएगा कि अगर खेतों में कठिया हल से अगर जुताई करनी पड़ती थी तो किस तरीके से कार्य किया जाता था।
0: हाँ, उस समय हम पढ़ा करते थे और घर पे उस समय जो है साधन नहीं थे, तो घर पे जब हल बैलों से चलाते थे पिताजी हमारे, तो कई बार अगर हम गए तो हम भी खेत पे मतलब जो है कि एक चला के देखते थे। और उस जमाने में जो है बड़ा परिश्रम करना पड़ता था खेती में, तब कहीं खेती हो पाती थी। सुबह से दोपहर तक जो है 4 बीघा जमीन जोतती थी। साधन नहीं थे सिंचाई के, तो कई बार अगर बरसात के बाद अगर मंदिर जी है कि जुताई में देर हो गई तो उसके डेले टूटना भी बड़ी कर रही बात थी। आज के समय में तो तरह तरह के वो है, मतलब रूटावेटर है, पाटा है, जेयर। वो उस जमाने में लकड़ी के पटेला होते थे, अगर डेली मोटी हो गई तो कई बार लोग मंदिर जी उसको कूट के और उसके बाद खेती करते थे। जी, अब से पुरानी 60-65 साल पहले की बता रहा हूँ।
1: जी
0: और
1: जी
0: समय समय जो है धीरे धीरे और अपने साधन हुए, रूटावेटर हुआ, तो आज के समय में जो है हमने उससे भी खेती की। शुरू में गन्ना हुआ करता था 91-269, जो उस समय का सबसे हाईएस्ट पैदावार का गन्ना था। उसमें भी हमने एक बार कौंसिल से 20,000 रुपए का इनाम मिला हाईएस्ट पैदावार होने पर। और उसके बाद 0238 जो बहुत अच्छा गन्ना था, जो इस समय बीमारी की वजह से लगभग खत्म हो गया है, उसकी पैदावार तो 80-90 कुंटल तक हुई।
1: जी
0: और उस समय स्थिति अगर तुलना कर रहे थे तो कुल मिला के अच्छा खासा औसत आ रहा था, लेकिन उस गन्ने का कोई विकल्प न होने की वजह से।
1: देखिए, आपने कहा कि समय समय कार्य में विस्तार हुआ, शुरुआत में जो है फसलों में कम खाद और कम पानी की जरूरत पड़ती थी, जिस प्रकार से साधन नहीं हुआ करते थे। जैसे जैसे साधन बढ़े उसी तरह से लोगों की मांग और उनकी इच्छा भी बढ़ती गई। लोगों ने फसलों से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए देसी खाद को छोड़ करके रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो एक अनुभव है वो बहुत बड़ा अनुभव रहा है, देसी खाद जो हम गोबर से तैयार किया करते थे या कूड़े कचरे से तैयार किया करते थे, आज वो पीछे छूट चुकी है और रासायनिक खादों का इस्तेमाल होना शुरू किया है। तो यहाँ नुकसान और फायदे के बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: इसमें ऐसा है कि प्रारंभ में जो है वो जो खाद रासायनिक खाद हुआ ही नहीं करते थे। धीरे
1: जी
0: धीरे अमोनियम सल्फेट चली, उसके बाद यूरिया चला, और उसके बाद जो है उस जमाने में या तो लोग देसी खाद डालते थे गोबर का, या फिर मतलब जो है कि हरी खाद बोते थे और उसको पलट देते थे।
1: जी
0: तो खेती जो है मतलब जो है कि बड़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन समय समय जब खाद पड़ा तो खाद जो है वो मतलब ये है कि अगर इस बार आपने उस खेत में 1 कट्टा डाला तो अगले बार को 1.25 कट्टा 1.5 कट्टा डालना होगा। और धीरे धीरे जो वो 1 कट्टे से लोग 2 और 3 कट्टे तक पहुंच गए उतनी रकबा में, तो उससे जो है जमीन कहीं ना कहीं अंदर से जो है वो मतलब ये है कि उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि बिना रासायनिक खाद के मतलब ये है कोई फसल होती नहीं, और होती है तो उसकी पैदावार गिर जाती है। दूसरा एक कारण और रहा मुख्य, उस जमाने में जानवर पला करते थे और लोगों के पास पर्याप्त गोबर की खाद होती थी, और अगर नहीं कम पड़ी तो किसी से खरीद ली। लेकिन आज के समय में देहात में स्थिति ये हो गई है, जानवर तो रहे ही नहीं, क्योंकि पहले लोग हल चलाते थे तो किसी के पास 1 जोड़ी बैल है, किसी के पास 2 जोड़ी बैल है, और गाय भैंस वगैरह पालते थे। आज की तारीख में गाय भैंस भी पालना मुश्किल हो गई है, बहुत कम लोगों पे मतलब गाय भैंस रह गई है। नहीं तो अधिकांश लोग जो मूल का दूध लेते हैं, तो जब मूल का दूध ले रहे हैं तो घर पे जानवर ही नहीं है, तो गोबर की खाद जाहिर सी बात है कि मतलब ये कि मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेगी तो पैदावार के लिए मजबूर रासायनिक खाद डाल रहे हैं। और आज तो एक और चिंता का विषय हो गया।
1: जी
0: अभी जो है स्थिति ये है कि रासायनिक खाद की जो है शॉर्टेज हो गई है, और काश्तकार जो है चूंकि अब तक रासायनिक खाद डालता रहा है, अब उसे मिल नहीं रही है, और मिल रही है तो उसमें साथ ओटीपी मतलब मशीन द्वारा नंबर आ रहा है फार्मर रजिस्ट्री के उससे, और उसके बाद अगर नंबर नहीं आया तो पता चला कि दिन भर सर्वर फेल हो गया, तो खाद ही नहीं मिल रहा है, पर्याप्त मिल नहीं रहा। जो मिल रहा है वो भी उसके लिए पता नहीं कि आज मिली जाएगा कि कल मिलेगा या परसों खाद खत्म हो जाएगी तो कब तक आएगी।
1: जी
0: तो ऐसी स्थिति में काश्तकार की स्थिति बड़ी दयनीय होती।
1: तो बात यहाँ करना चाह रहे थे कि हर चीज का अगर कोई लाभ है तो उससे नुकसान भी है, तो यहाँ जैसे ही उत्पादन बढ़ा है तो उसका हमको शारीरिक तौर पर देखा जाए या आर्थिक तौर पर देखा जाए, हमें नुकसान क्या है?
0: नुकसान तो भाई पहली चीज तो जब उसमें मिट्टी ऐसी हो गई उसमें मतलब जी कि अधिक खाद डालने से कि उसमें बिना खाद के हो ही नहीं रहा, या तो फिर अब ऐसी स्थिति में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश

0: गए थे, तो जब जमीन बिल्कुल बंजर टाइप हो गई तो उसमें लोग मिट्टी उठवा रहे हैं 1 फुट आधा फुट, और वो डाल रहे हैं खेत से बाहर, और उसके बाद नए सिरे से खेती कर रहे हैं। तो रासायनिक खाद की एक लिमिट होती है, लिमिट से ज्यादा डालेंगे तो जमीन को जो है वो बेकार हो जाएगी, उसमें उपज हो ही नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में फिर लोग जो है फिर उसमें फिर दोबारा और गोबर की खाद कहीं डेयरी वगैरह से लेंगे या हरी खाद वो के उसे लौटेंगे, तभी खेती हो पाएगी। नहीं तो स्थिति ये हो जाएगी कुछ जमीन की, तो ये पैदावार उसकी शून्य की तरफ पहुंच जाएगी।
1: जी। अब अगर बात करें, जैसे उत्पादन तो हमें मिल जाता है, ज्यादा उत्पादन मिल जाता है, लेकिन जो उत्पादन हमें मिलता है वो रासायनिक खादों की वजह से स्वस्थ उत्पादन नहीं होता, उसका हमारे शरीर पर जो है वो बुरा प्रभाव पड़ता है।
0: हाँ, इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ता है। पुराने समय में बीमारियां बहुत कम होती थी, आज इतनी बीमारियां बढ़ना और हर एक आदमी तीसरे आदमी को शुगर की बीमारी बढ़ना, ये साहब किसी को मतलब ये है कि क्या नाम बीपी हाई हो रहा है, किसी का तरह तरह की बीमारी हो रही है, इसका मुख्य कारण रासायनिक खाद है। जो खान पान है हमारा वो शायद ही कोई चीज बची हो, हर चीज में रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है और उससे जो है आम आदमी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और तो और अगर मतलब ये है कि जानवर के लिए हम बरसीम बो रहे हैं भैंस के लिए, और उसमें वो अगर बरसीम खा रही है तो उसका दूध भी दूषित हो रहा है। तो हमें जो है आज के समय में मतलब स्वच्छ चीज जो है वो घर पे भी नहीं मिल पा रही है, जो कि बड़ा चिंता का विषय है।
1: जी, अब इस समय अगर देखा जाए तो खेतों में धान का उत्पादन लेने के लिए कुछ लोगों ने पौध डाल दी है, कुछ लोग डालने की तैयारी में है। वहीं ये जो समय गेहूं के बाद धान की फसल लेने तक का होता है, बीच का जो लगभग 2 महीने का समय मिल जाता है, तो ऐसे में हम हरी खाद का भी जो उत्पादन करके अपने खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं।
0: जो जागरूक किस्म के लोग हैं वो कर रहे हैं, गेहूं के बाद उन्होंने ढेंचा बो दिया, पुलसन बो दी, और उसके बाद वो जुलाई में जो पलट के उसके बाद उसमें धान लगाया, तो उसकी बात ही अलग है। और उसमें रासायनिक खाद आप आधा डालेंगे तब भी काम चल जाएगा, हर आदमी नहीं कर पा रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो मतलब ये कहीं ना कहीं सफल है। दूसरी चीज जो है, जैसे आपने जुताई की बात की, जुताई करने से जो है मिट्टी तपती है, और जैसे ही मानसून के बाद बारिश होती है तो वो कहीं ना कहीं जो है मतलब ये है कि पैदावार में जो है उससे कुछ ना कुछ इजाफा होता है।
1: जी। इस समय मौसम के बारे में जिक्र आया हमारी बातों में, तो इस समय नौतपा का जो समय चल रहा है, 73 साल का आपने ऐसा अनुभव हमारे साथ साझा किया है कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ी है, ये जो नौतपा का इस समय ज्यादा बोलबाला है, तो नौतपा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ये क्या चीज है?
0: ग्रीष्म ऋतु में साल के सबसे अधिक गर्मी के दिन 9 दिन होते हैं, उसे नौतपा कहते हैं, जो अक्सर 25 मई से और 2 जून के बीच का समय होता है। तो ऐसे में जो है सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं और उनसे जो है सबसे अधिक गर्मी होती है, और उस गर्मी से जो है कई बार जो है जमीन को फायदा भी है, जमीन तपती है कि अच्छी बात है फसल वगैरह में, और उससे मानसून जल्दी आती है, लेकिन साथ साथ इसके कई नुकसान भी हैं जो कि आदमी के स्वास्थ्य पर पड़ते हैं, जिसमें जरा सी असावधानी से तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसे में थोड़ा परहेज रखना चाहिए इन दिनों, कम से कम गर्मी में निकले आदमी, और उसके बाद जो है खान पान में जो है मतलब ऐसी हल्की चीजें और तरल पदार्थ लें, पानी की मात्रा इसमें अपेक्षाकृत दोगुनी कर देनी चाहिए, और उसके बाद जो है जैसे हल्की चीजें सत्तू है या मतलब ये कि जूस वगैरह है उसका सेवन करें, तो आदमी के लिए जो है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक।
1: जी, धार्मिक मान्यताओं की अगर बात करें तो नौतपा का क्या महत्व है?
0: सनातन परंपरा में मान्यता है कि यदि नौतपा के दौरान धरती खूब तपती है तो उस वर्ष मानसून के दौरान अच्छी बारिश होती है, यदि ये दिन ना तपते तो बारिश कम या अनियमित होने की संभावना रहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस अवधि में सूर्य पृथ्वी काफी करीब आ जाता है और तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, हवाएं शुष्क हो जाती हैं, इससे भीषण लू की स्थिति बनती है।
1: अच्छा, ऐसे में धार्मिक मान्यता तो है ही, तो अब जब ये नौतपा चल रहा होता है तो नौतपा के बाद जब मानसून आता है तो उसका भी बहुत फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है।
0: मानसून का फायदा तो मतलब ये है कि है ही, अगर बारिश पर्याप्त नहीं होगी तो जैसे कि धान रखने की से वो है समय आ रहा है, और अगर मानसून सही नहीं बनी तो वो अगर बारिश छुटपुट हो रही है तो काश्तकार धान नहीं रख पाएगा, जिसके पास साधन नहीं है वो इंतजार करता रहेगा, लेकिन अगर अधिक गर्मी पड़ेगी तो उसी हिसाब से अधिक बरसात होगी, और बरसात होगी तो आदमी एकदम अपना जो है फसल जो है लगाएगा, और टाइम पे जो फसल होती है लगती है तो उसकी बात ही और।
1: जी देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ आपसे साझा करना चाहूंगा कि खेती की तरफ से धीरे धीरे रुझान किसानों का दूर होता जा रहा है। एक समय था कि हम किसान अन्न उत्पादन

0: करके अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी जो है अन्न की पूर्ति किया करते थे। आज दौर तो बदल रहा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे किसान भाइयों के साथ?
1: जहाँ तक किसानी का सवाल है, तो ये असल में आदिकाल से ही कृषि जो कार्य करता था उसको बड़ा जमींदार मानते थे लोग और उसको उच्च श्रेणी मानते थे, नौकरी को दूसरी तीसरी श्रेणी मानते थे। लेकिन आज के समय में स्थिति ये हो गई है, लागत इस कदर बढ़ गई है, उस जमाने में लागत कम थी, पैदावार अच्छी थी, भले रेट कम थे, आज के समय में रेट बढ़े लेकिन अपेक्षाकृत कम बढ़े, जो लागत है वो मतलब ये कई गुनी बढ़ गई। बात 1970 की करूं तो उस समय गेहूं का रेट 70-72 था, और उस समय जो है जो और चीजें हमारे जो मतलब ये क्या कीटनाशक और तो लगती नहीं थी, लगती थी उससे कीमत बहुत मतलब ना के बराबर थी। आज के समय में गेहूं की कीमत तो मतलब ये है कि 70-72 से बढ़कर 2500 तक मान लिया हो गई, लेकिन जो और चीजें थी उसकी कीमत जो है तुलना के हिसाब से कई गुनी अधिक बढ़ गई। तो वो जो है काश्तकार जो है वो इतनी जो लागत जो है लगानी चाहिए वो नहीं लगा पाता, कई बार कीटनाशक समय पर नहीं लगी, पैसे आदमी के पास नहीं है। तो इस तरीके से काश्तकार की स्थिति जो किसी जमाने में सबसे अच्छी थी, और जैसे हम कहते थे कि साहब हमारा देश कृषि प्रधान है, 80% जनता यहाँ की कृषि करती है, लेकिन आज की तारीख में आप उसमें देखें कि साहब अब 60% खेती करती है, तो समय समय वो 50 रह जाएगी, 40 रह जाएगी, और हो सकता है विदेशों में उतरे कोई स्थिति हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। इस सब में जो है काश्तकार काश्तकारी के साथ अगर आदमी की कोई साइड बिजनेस या नौकरी नहीं है, मीडियम काश्तकार भी आज के समय में अपने जो काम है रोजमर्रा के वो सही रूप से या सही टाइम से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो औसत लागत है उसके हिसाब से बचत जो है वो ना के बराबर आ रही है, और काश्तकार इसलिए आज की तारीख में अधिक परेशान और दुखी।
0: चौधरी छत्रपाल सिंह जी, आज आपने अपने खेती बाड़ी के अनुभव और अपने जीवन काल के जो अनुभव हमें बताए हैं, साथ ही साथ नौतपा के संबंध में और खेती बाड़ी से दूर होते जा रहे हैं, इन सब बातों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें साझा की हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपकी गिनती देश किसान जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी, देश के विकास में सहभागी बने।
4: तो ग्रामीण साथियों, इसी बातचीत के साथ आज के कार्यक्रम ग्राम जगत से अपने भैया कृष्णवीर सिंह
5: और धारा सिंह को दीजिए अनुमति, भैया बहनों
4: राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत और ट्यून क्या है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। श्रोताओं, आइए अब खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनते हैं। रतनपाल पुत्र राम बहादुर निवासी ग्राम सकतपुर थाना इस्लामनगर जिला बदायूं से सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी श्रीमती काजल दिनांक 25 अप्रैल 2026 से अपने निवास स्थान से गुमशुदा है। इनकी उम्र 26 वर्ष है। कद के बारे में कोई सूचना नहीं है। आप हरे रंग की साड़ी पहनी हुई हैं। जिस किसी को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, कृपया इस पते पर सूचित करें। गुमशुदा सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, अब एक अन्य खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनते हैं। मुबारक खां पुत्र बाबू खां निवासी ग्राम चितरपुर महरोला थाना इस्लामनगर जिला बदायूं से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री कुमारी मिश्रकांत दिनांक 1 मई 2026 को अपने निवास स्थान से गुमशुदा है। इनकी उम्र करीब 19 वर्ष है और आप कपड़े सफ़ेद रंग के छीटदार सलवार सूट पहने हुए हैं, पैरों में चप्पल पहने हुए हैं। इनका रंग गेहुआ है, चेहरा गोल, आंखों का रंग काला, बालों का रंग काला। जिस किसी को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, कृपया इस पते पर सूचित करें। गुमशुदा सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह ने कहा कि दो दिन का यह सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सहायक होगा।
5: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
4: सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा और समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।

0: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन, थाना बैरक, अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को सहयोग उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आज लखनऊ में जोन 4 के भैंसोरा क्षेत्र में अत्याधुनिक फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन प्लांट का उद्घाटन किया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह प्लांट प्रतिदिन 150 टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता रखता है। इस दौरान महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है।
2: लखनऊ ऑलरेडी शिवरी में और भेला में 20 लाख टन कूड़े का निस्तारण करके देश में एक चुनिंदा शहर बना है। लखनऊ ऑलरेडी स्वच्छता सर्वेक्षण में 30वें स्थान पर आकर के देश में अपना नाम बना चुका है। अब ये 51 ट्रांसफर स्टेशन जो इस तरह से बन रहे हैं उनकी वजह से लखनऊ नगर में कहीं भी कूड़े का बड़ा ढेर जो है खुले में नहीं दिखेगा। सब कुछ कॉम्पैक्टिंग होगी, सब कुछ बंद गाड़ियों में ट्रांसफर होगा।
1: इस अवसर पर महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य लखनऊ को देश के सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में शामिल करना है।
3: आज लखनऊ स्वच्छता में एक कदम और आगे बढ़ा है। भरवारा मल्लौर वार्ड में भी हमने ट्रांसफर स्टेशन लगाया है जिसका आज उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में हमारे कम्प्लीट 51 ट्रांसफर स्टेशन बन जाएंगे, 24 पूरे हो गए और लखनऊ में कहीं भी कूड़ा ना दिखे, इसका मेरा पूरा प्रयास है।
1: अयोध्या में कल 29 मई को राम मंदिर परिसर में परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंभरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंभरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश भर में अकीदत और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। राजधानी लखनऊ में सुन्नी समुदाय के लोग ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद में नमाज में शामिल हुए। वहीं शिया समुदाय ने आसिफी मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के दौरान लोगों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। एक रिपोर्ट।
5: लखनऊ में ईद उल अजहा का पर्व आज सुबह नमाज अदा करने के साथ शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर की विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फरंगी महली और अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमान

0: मुसलमानों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है। मौलाना खालिद ने बताया कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की है। त्योहार के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नगर निगम ने भी 30 मई तक पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश कर्मचारियों को दिए हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या, बाराबंकी, पीलीभीत, श्रावस्ती, प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर और कौशाम्बी सहित विभिन्न जनपदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में नमाज अदा की गई। आगरा में ताजमहल परिसर स्थित मस्जिद में नमाज के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। ईद उल अजहा के अवसर पर आज देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। प्रदेशवासियों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर आज से 31 मई के बीच आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो रहे हैं और श्रोताओं समय हो गया है प्रोग्राम अनुरोध गीत का, और आइए श्रोताओं सुनते हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत।

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये शेर के रचयिता प्रणेता वशीत बद्र साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपनी रचनाओं से, अपनी शायरी से, अपने कलाम से वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे। आज उन्होंने अपने शरीर को त्यागा भोपाल में, और ये कार्यक्रम समर्पित हमारे वशीर साहब को। और श्रोताओं, करते हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत का आगाज। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और बेहतरी की ओर अग्रसर होंगे।

प्रोग्राम अनुरोध गीत में हम पढ़ेंगे आपके प्यारे प्यारे पत्रों को, जो ढेर सारे आपने भेजे हैं हमें देश के कोने कोने से। उससे पहले हाथ जोड़ के आपसे निवेदन, आप जहां भी हैं, जिस जिले में हैं, जिस गांव में हैं, जिस तालुके में हैं, एक पौधा जरूर लगा दीजिए इस मानसून में और खूब उसकी सेवा कीजिए। कोशिश कीजिए एक से ज्यादा लगाएं, क्योंकि अब एक से बात बनने वाली नहीं है। दूसरा, इस बारिश के पानी को जमीन में डालिए, यानी कि उसको नाली में बहने से रोकिए। आपने आसपास, अगर आप खेती किसानी करते हैं तो गड्ढे करिए अपने खेतों में आसपास, तो उसमें पानी भर जाएगा, वो ही पानी सोखों के अंदर चला जाएगा। जहां भी आप हैं, आप सोसाइटी में, घर में, अपनी छत के पानी को टी लगाकर अपने जो है उस पानी को गड्ढा करके उसमें कुछ मोटे और छोटे कंकड़ लगाइए और टी लगा करके उस पानी को, छत के पानी को उसमें डाल दीजिए, जिससे कि भूगर्भ के जल का स्तर बढ़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे पत्र लिख के पूछ भी सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का तरीका, और गूगल, यूट्यूब, दुनिया भर की चीजें हैं, आप सीख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। ढेर सारे पत्र आपके हमारे पास पहुंचे हैं। ये पत्र हमें मिला है फूलबाग किला जामनी से विशन दत्त भारद्वाज, शिव दत्त, गंगा दत्त, गोपाल, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु मिश्रा, भावना, देव की देवी भारद्वाज, शिप्रा, नीलम भारद्वाज और श्रीराम राठौर। तलैया उल्ला जागीर से इस गीत को सुनना चाहा है फजलुद्दीन अबरार अफजाल और आपके सभी साथियों ने, और नकटिया से हैं ताराचंद्र और बबली। ये पत्र हम तक आया है, हमारे निमेश होता है कटरा चांद का, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्या, सुंदर देवी प्रकाश, सुनील, रिंकी, कपिल, वेदराम कैलास, खुशबू एरोही और स्वाति मौर्या। ककराला बदायूं से आप हैं मशहूर खान, सरफराज खान, याकूब अब्बासी, विकास सक्सेना, करमवीर गोटवाल, प्रवीण, अनिल, काजल, चंचला, रेखा और आपके सभी साथी। ये पत्र हम तक आ पहुंचा है भवाली नैनीताल से, और लिखने वाले हैं इस पत्र को इकराम अली, फैजान, एहसान, शहनाज, गुलनाज, अप्पी, बॉबी और अजहर। इस पत्र को हम तक प्रेषित किया है बदायूं वजीरगंज लहरा लाडपुर से होशियार मोहम्मद, शेर मोहम्मद, खुश, खुशनुमा भी, नूरजहां बेगम, संजुरानी और जीशान, आसमी भी और चांदनी भी। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म रॉकी का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

ट्यून किया आपने 100.4 एफएम आकाशवाणी का बरेली केंद्र, सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत मेरे यानी ब्रजेश के साथ। और श्रोताओं, आपके ये खूबसूरत इतने सारे हमारे जो पास जो पहुंचे हैं लेटर्स, फरमाइशी पत्र, ये पत्र हमें भेजा है गंज डुंडवारा से मुनव्वर लल्ला, नसरीन अरबाज, शहबाज, पप्पू, अफसाना, महजबी और आपके सभी साथी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से आप इसी गीत को सुनना चाहते हैं, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित, हैप्पी और दुबिया नेवादा गाजीपुर, प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। आप हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेग सिद्दीकी, रिफाकत, रियाज, समरीन, परवीन, अरिहान, माहिरा नूर और आपके सभी साथी। कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी और फरहान इदरीसी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। बीसलपुर पीलीभीत से ये पत्र हमें भेजा है विमल वर्मा, विनय वर्मा और आपके परिवार के सभी लोगों ने। गैगटा काशी धर्मपुर से फहीम खां सिद्दीकी, साबिका, राम प्रसाद शर्मा हैं बरेली से, दूनेनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कटेरिया और आपके सभी साथी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म ममता का ये गीत लता मंगेशकर और लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है रोशन का।

ट्यून किया है आपने 100.4 एफएम और सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। प्रोग्राम के अगले गीत के लिए ये फरमाइश हम तक पहुंची है वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से। आप हैं प्रेम कमल वाचने, सुशीला, प्रभात, अमरीश, सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक, वेद ऋचा और ऐश्वर्य कमल वाचने। शेरनगर बहेड़ी से इसी गीत की फरमाइश करने वाले हैं लईक अहमद अदरीशी, अशरफ, अतीक, शिफाबी और यासमीन। दौलतबाग मुरादाबाद से पत्र हमें भेजा है जाफर हुसैन, नाइमा, कासिम, सर नदीम, जुनेद अब्बासी। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत, मनमीत, मनविंदर, गोलू काकू और जीएस रामगढ़िया। आप है अहमदपुर के गांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक, कृष्णा और समर फूलमाली। बदायूं शंकरपुर पोस्ट उसावा से ये पत्र हम तक पहुंचा है सुमिंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरजश्री और गुनगुन यादव का। नवाबगंज से इसी गीत की फरमाइश की है नसीम अहमद अंसारी, मेराज मुस्कान, रेहान, अलसिफा और मन्नत। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और आपके सभी साथी। आप हैं लेवई से गुलाबदास मानिसपुरी, रचनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, दंदरेंगी से भागवत वर्मा, गनगोला से दातागंज से ये पत्र लिखा है हमें आलिम खान, नेहा, आलिम, सालिम, आरिफ, आलमशेर, वली, जहूर और मुशी।

खान, बिलासपुर देवरी खुर्द से संतोष तलरेजा, आरती सोनू, कुंवर सिंह गुड्डू और रामदास, बिलासपुर देवरी खुर्द से ही आशा उषा और ज्योति सिंह तलरेजा का पत्र भी आया हम तक। और ये पत्र जो हम पढ़ रहे हैं इसे भेजा है हमें डबो तालाब लोनी से, लिखने वाले हैं रजा अहमद ईशान, आरस और मरियम जहां। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म बाजार का ये गीत बेला सुलाखे की मधुर स्वर में।

आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। प्रोग्राम के अगले गीत के लिए ये पत्र हम तक पहुंचा है बराड़ा जिला अम्बाला से। रवि कुमार, राहुल, रणजीत, प्रियंका, जयप्रकाश, नूर, नमरन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशब्द, राहुल, इसी गीत की फरमाइश हम तक पहुंची है ग्राम पोस्ट बमरौली बीसलपुर से। लिखने वाले हैं राम शरण दुबे, अवधेश कमलेश, सर्वे सुमन सुजाता, काजल, अर्चना सुषमा, अमित अनिकेत और राधिका दुबे। ये पत्र हम तक आया कस्बा मीरगंज से कल्लू भाई, नईम, फहीम, नसीम, दानिश और आदर्श दिवाकर का। बरेली जंक्शन से ये पत्र हमें मिला है गरीब भाई, नासिर, सादिक, विक्की, भारद्वाज, पर वीरेश सिंह चौहान, सोनू मिश्रा, अमान खान, प्रदीप पाल और नमन। अगला पत्र जो हम पढ़ रहे हैं इसे लिखा है हमारे निवेश होता है आप अशरफ खां छावनी पानी टंके पास से, राम प्रसाद शर्मा, अजय शर्मा, मनोरमा, रीता देवी, विनोद वंश और आपके कनिष्क और आपके परिवार के सभी साथी। करोलार मुरादाबाद से ये पत्र हमें भेजने वाले हैं अयूब खान, इरम, सुहेब और नवेद खान। ये अगला पत्र हम तक आया अगले गीत की फरमाइश के लिए वीडियो कॉलोनी करगैना से लिखने वाले हैं बनी लील सागर, भेनी सिंह, धर्मवीर, आशीष, अमर, हितेश, रूबी, रचना, एकता, दिव्या, ममता, ओमवती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। ये पत्र हमें भेजते हैं गंजडुंडवारा से शमशुल कमर, शाहीन कमर और आपके सभी साथी। परिमहल कासगंज से आबाद खान, गजाला खान और सभी सदस्यों का मिला पत्र हमें। ग्यासपुर बीसलपुर से आप हैं आबिद अली बेबी, तबस्सुम, नेहा नाज, इसकी गीत को सुनना चाहा है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। बिरडी से हुकुम करम कर, सुनीता, हार्दिक और तनु करम कर आप हैं। खान रेडियो क्लब जादोपुर से अनीश खान, मुनीश, आरिस, मुनाजिर, परवीन, अस्कारा, दरकशा और साजिया खान।

गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपत पुर चटिया से ओमपाल गंगवार, अनीता और परिवार के सभी सदस्य, नगरिया सुवर्णी से अमन गंगवार, आशा संध्या और छोटेलाल गंगवार, आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म सनी का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, और आपको सुनवा रहे हैं हम कार्यक्रम का ये अंतिम नगमा आप सभी की फरमाइश पर।

0: तो श्रोताओं, इसी नगमे की पेशकश के साथ प्रोग्राम अनुरोध गीत का सफर यहीं तक। आपको कैसा लगा हमारे कार्यक्रम, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजिएगा। हमारा कार्यक्रम में पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 243001। और श्रोताओं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है aapkapatrmila.bareli@gmail.com। फिर से सुन लीजिए, aapkapatrmila.bareli@gmail.com। और अब श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में लगभग 8 बजने को ही हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ के प्रसारण, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ही बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
2: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओं, आज के संक में आपको एक वार्ता सुनवाते हैं जिसका विषय है प्रेमचंद और लखनऊ। वार्ताकार हैं प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित।
3: बात लगभग 100 वर्ष पुरानी है, जब प्रेमचंद और लखनऊ परस्पर जुड़े थे। लखनऊ से प्रेमचंद का संबंध अगस्त 1923 से लेकर जुलाई 1932 तक रहा। वे 1927 से 1933 तक, यानी लगभग 6 वर्ष तक माधुरी के संपादक रहे। उस बीच उन्होंने माधुरी में वैविध्यपूर्ण सामग्री संजोई और कहानी विधा को विशेष महत्व दिया। उसमें कई नए स्तंभ जोड़े, बराबर रंग बिरंगे चित्र छापे। उससे माधुरी की प्रसार संख्या 2000 से बढ़कर 10,000 हो गई। तब प्रेमचंद यहीं लाटूस रोड, हेवेट रोड के तिराहे के पास मारवाड़ी गली के मकान नंबर 14 में रहते थे। तत्कालीन लखनवी साहित्यकारों जैसे रूपनारायण पांडे, चकबस्त, मुनव्वर, पढ़ीस जी, नागर जी, भगवती चरण वर्मा, दुलारे लाल भार्गव, गंगा प्रसाद मिश्र आदि से उनके अच्छे संबंध थे। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां, उमराव जान अदा के लेखक रुसवा तथा इंद्र सभा नाटक के लेखक अमानत की विरासत से काफी कुछ परिचित थे, प्रेरित और प्रभावित थे। प्रेमचंद जी 1923 में गंगा पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ में पहले पहल सहायक के रूप में आए थे। तब ये प्रकाशन संस्था अमीनाबाद पार्क के पास थी। प्रेमचंद जी ने 1930 में काशी से हंस नामक मासिक पत्र और 1932 में जागरण नामक पाक्षिक पत्र का संपादन शुरू किया था। जागरण प्रेस में अत्यधिक घाटा होने के कारण, यानी भयानक अर्थसंकट के कारण, प्रेमचंद को कई बार बाहर जाकर यह आर्थिक व्यवस्था जुटानी पड़ी थी। हिंदी उर्दू कथाकार के रूप में उनकी अपनी एक पहचान बन चुकी थी। लखनऊ में रहते हुए उन्होंने 1923 में निर्मला एवं 1924 में रंगभूमि उपन्यास लिखा था। रतननाथ सरसार के फसाने आजाद का यही उन्होंने आजाद कथा नाम से अनुवाद किया था। उनका रंगभूमि नामक उपन्यास उर्दू में लिखित चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर था और वह यही गंगा पुस्तक माला से प्रकाशित हुआ था। यही रहते 1928 में कायाकल्प का और उर्दू में लिखित तो गोशे आफियत का प्रेमाश्रम नाम से हिंदी रूपांतरण किया था। निष्कर्ष यह है कि उनके अनेक महत्वपूर्ण उपन्यास एवं कहानी संकलन लखनऊ से संबंधित है। गोदान उपन्यास की अधिकांश घटनाएं लखनऊ में केंद्रित हैं। यहाँ राय साहब के कोठी से संबद्ध रहे प्रोफेसर मेहता यही लखनऊ विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर थे। यही डॉक्टर मालती एक संभ्रांत चिकित्सक

मालिक, तनख्वाह और पंडित ओंकार नाथ, नेता और पत्रकार, यानी सब लखनवी। होरी का पुत्र गोबर यही मजदूर आंदोलन चलाता है, मेहता और मालती जनसेवा अभियान चलाते हैं। इसी बीच लखनवी इतिहास से संबंधित प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी नामक एक कहानी लिखी, जो अक्टूबर 1924 की माधुरी में छपी थी। उसमें 1857 का परिवेश है। नवाब वाजिद अली शाह के दो दरबारी मीर और मिर्जा सब कुछ छोड़कर शतरंज के वजीर की रक्षा में घंटों एक आसन बैठे हुए आखिरकार उसके पीछे मर मिटते हैं और उसी बीच नवाब गिरफ्तार हो जाते हैं, यानी वे अपने देशकाल से बेखबर हैं। लखनऊ से ही प्रेमचंद ने 1924 में प्रेम प्रसून तथा प्रेमा या प्रतिज्ञा नामक कहानी संकलन छपवाए। 1956 में प्रेम द्वादशी एवं 1930 में प्रेम पंचमी का प्रकाशन यही गंगा पुस्तकमाला से हुआ। किंतु आश्चर्य कि इसी संस्था से प्रकाशित पत्रिका सुधा में उनकी कोई रचना नहीं छपी। 1933 में उन्होंने करवला नामक नाटक यहीं की जरजमीन से प्रेरित होकर लिखा, पर वह सांप्रदायिक तत्वों को रास नहीं आया। यह स्मरणीय है कि रतन सरकार द्वारा लिखित और बचपन में पढ़े गए फसाना आजाद के आधार पर उन्होंने कथा किस्सा लेखन की ओर अपनी अभिरुचि दिखाई। उनकी एक कथाकृति अग्नि समाधि नवल किशोर प्रेस से 1929 में प्रकाशित हुई थी। लखनऊ में ही प्रेमचंद जी ने 10 अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए साहित्य का उद्देश्य नामक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। इसमें उन्होंने प्रगतिवाद शब्द की आलोचना की थी। माधुरी यानी नवल किशोर प्रेस की नौकरी 1933 में प्रेमचंद ने क्यों छोड़ी, इसके पीछे कई अभिमता है। वो स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था। प्रेमचंद जी गांधीवाद, मार्क्सवाद, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं के समन्वय के हिमायती थे। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के पोषक और कई भारतीय भाषाओं के लेखकों के प्रतिद्वंदी भी थे। शरदचंद ने कहीं कह दिया था कि प्रेमचंद टैगोर से टक्कर ले रहे, इससे लोग आहत हुए थे। प्रेमचंद तब यहां तक मानने लगे थे कि साहित्य में आज घृणा की बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने इस बीच हिंदुओं के कर्मकांडों का इसीलिए मुखर विरोध किया, फलता उन्हें घृणा का प्रचारक कहा गया। उन्होंने पंडित मोटेराम शास्त्री नामक कहानी लिखकर एक जात विशेष की इतनी छीछा लेदर की कि लखनऊ का भद्र समाज काफी कुपित हो गया और प्रेस प्रतिष्ठान भी। उस समय के लखनऊ नगर के एक प्रकांड आचार्य थे शालिग्राम शास्त्री, उन्होंने उस पर कुछ प्रतिक्रिया प्रकट की तो पंडित मोटेराम की डायरी नाम से उसे दोबारा माधुरी में एक महीने बाद छपवाया। फिर यही कहानी पंडित मोटेराम शास्त्री के नैराश्य नाम से समालोचना नामक पत्र में तिबारा छपी और चौथी बार संपादक पंडित मोटेराम शास्त्री नाम से, यानी कुल 4 बार उसे प्रकाशित कराया गया। इससे क्रुद्ध होकर शास्त्री जी ने उन पर और नवल किशोर प्रेस पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। इस विषम परिस्थिति में उन्हें माधुरी से हटना पड़ा। उनकी इस कहानी की पैरोडी बनाते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के तत्कालीन हिंदी शिक्षक बद्रीनाथ भट्ट ने टटोले राम टलास्त्री नाम की कहानी छपवाई और उन्हें प्रकारांतर से कम्युनिस्ट, पेशेवर किस्सागो, इस्लाम परस्त, प्रोपेगेंडिस्ट आदि उपाधियां दी। कफन और सदगद आदि कहानियों की प्रतिक्रिया तो अर्थे तक चलती ही रही। इन्हीं बिंदुओं को लेकर डॉक्टर हेमचंद्र जोशी ने सरस्वती में एक लेखमाला चलाकर उनके सनसनीखेज कथाशिल्प की आलोचना की। माधुरी से मुक्त होकर इन सब का प्रतिवाद करने के लिए प्रेमचंद ने 1933 में काशी से हंस पत्रिका की नई शुरुआत की। उसके आत्मकथांक को लेकर भारत के संपादक नंदूराय वाजपेयी से कई विवाद और वितर्क हुए। अब प्रेमचंद पूर्णकालिक कलमजीवी लेखक बन गए थे। घर परिवार और हंस तथा जागरण, इन दोनों पत्रों का व्यवहार वहन करने के लिए उन्होंने अक्टूबर 1936 यानी मृत्यु पर्यंत दिन रात लेखन कार्य किया। अपनी बीमारी में लखनऊ में इलाज कराया पर निष्फल रहा और 56 वर्ष

0: आठ दिन का जीवन जीकर उन्होंने अमरत्व प्राप्त किया। अपने लेखन काल में वे चुनारगढ़, प्रतापगढ़, बहराइच, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, महोबा, बंबई आदि कई स्थानों में कार्यरत रहे, पर काशी के बाद उनका सर्वाधिक जुड़ाव लखनऊ से रहा। यहां से ही उन्होंने किस्सा गोई और कथा भाषा ली और उसे पराकाष्ठा पर पहुंचाया। यह लखनऊ के लिए भी गौरवास्पद है।
1: प्रेमचंद और लखनऊ, ये वार्ता अभी आप सुन रहे थे। वार्ताकार थे प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं महुआ राज त्रिपाठी की गाई गजलें। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं वसीम बरेलवी की रचना में इस गजल के साथ।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महुआ राज त्रिपाठी की गाई गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट से। सबसे पहले आइए सुनते हैं जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाजों में ये गीत, फिल्म का नाम दावत-ए-इश्क।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: और अब आइए सुनते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म का ये गीत मोहित चौहान और पलक मुछाल की आवाजों में।
3: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम के अंत में सुनिए असरार की आवाज में फैंटम फिल्म का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा

और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी

407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती

चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में

प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अर्पण फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम

0: देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अब्दुल्ला फिल्म का गाना सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत आर डी बर्मन का। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और एनेट की आवाज़ों में सत्ते पे सत्ता फिल्म का गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में क्रांति फिल्म का गाना। गीत संतोष आनंद का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहां भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई

हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इंप्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में यह फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद।

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद

0: एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया, शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।
1: हर हर भागे सबसे आगे, कोई पकड़ ना पाए।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत, फिल्म का नाम कयामत से कयामत तक।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राग झिंझोटी में उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन।